प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: 819 kHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: बुधवार 24 जून रेडियो मॉरिशस पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें। घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 6 बज रहे हैं। समय हुआ है समाचार का। आइए सुनते हैं सुबह का पहला फ्लैश न्यूज रजनी जी से। नमस्कार।
3: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। उस विधेयक से जुड़ी अनिश्चितताएं बढ़ी जिसकी बदौलत यूनाइटेड किंगडम की ओर से मॉरिशस को शागस द्वीप समूह की वापसी पर समझौते को अमल में लाया जा सकेगा। बरतानी प्रधानमंत्री सखर स्टामर द्वारा त्यागपत्र दिए जाने की बात की घोषणा के बाद ऐसी स्थिति बनी। लेखक एवं पुराने विदेश मंत्री जॉन-क्लोड डेलेस्था के अनुसार मॉरिशस को अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के वास्ते सखर स्टामर के उत्तराधिकारी से उम्मीद। इस साल बजट में कोस्टल इरोजन एडाप्टेशन प्रोग्राम के लिए 4 बिलियन रुपए का प्रावधान। 11.5 किलोमीटर के तटीय इलाकों का पुनर्वास किया जाएगा जो देश के 17 प्राथमिकता वाली स्थलों पर किया जाएगा, लेकिन इसके अलावा एक नेशनल शोर लाइन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी प्रोग्राम भी होगा, एक वास्तविक गेम चेंजर। विदेश समाचारों में जर्मनी में ट्रेन सेवाएं ठप, रेडियो सिस्टम में खराबी, पूरे देश में रेल यातायात प्रभावित।

भारत में मॉनसून में की धमाकेदार एंट्री हुई। 13 दिनों का लंबा इंतजार खत्म। आज दिल्ली यूपी में भारी बारिश आंधी का अलर्ट। और फीफा विश्व कप प्रतियोगिता के अंतर्गत खेले गए मैचों के नतीजे इस प्रकार। क्रोएशिया ने पनामा को 1-0 से हराया। पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को पराजित किया 5-0 से, जबकि इंग्लैंड घाना का मैच ड्रॉ रहा 0-0।

0: कल वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बनी हैं। संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए, आपने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में मौसम का हाल।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: मस्करीन्स के दक्षिण में एक काफ़ी ज़ोरदार एंटी साइक्लोन पाया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि सुबह के वक्त आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे और बारिश होती रहेगी, मुख्य रूप से हवाई ढलानों पर और ऊंचाइयों पर। दोपहर बाद में सेंट्रल प्लाटू पर बारिश होती रहेगी, अन्यत्र भी आंशिक रूप से वर्षा होती रहेगी। दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके कुछ इलाकों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकता है। प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र खराब रहेगा, 3 मीटर 50 की ऊंची लहरें उठेंगी, दूर समुद्र में तथा लगून में न जाने की सलाह दी जाती है। तापमान, सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 15 और 17 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 20 और 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 और 21 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 25 एवं 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। शाम 5:39 पर सूर्यास्त है, जबकि 7 PM सूर्योदय।
2: You're listening RM Free Radio. Radio. Radio.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ये RM Free है, परवीज़ा का साथ है। उर्दू दशरियात बनामे सबल खैर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आप तमाम सामीन खैरियत और आफियत से होंगे। रोशनियों, रहमतों और बरकतों से सजी इससे खूबसूरत नशरियात में आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। मज़ीद सामीन, ये वो लम्हात है जब दिल ज़िक्र इलाही से मुनव्वर होते हैं, रूह को सुकून मिलता है और ईमान को ताजगी नसीब होती है। तो आइए मज़ीद सामीन, इससे रूह परवर महफिल का आगाज़ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बाबरकत कलाम से, जो सरापा हिदायत और सरापा नूर है। बग़ौर व बाअदब समात फरमाइए तिलावत कुरान पाक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लोगो अपने परवरदिगार से डरो कि कयामत का जलजला एक हादसा अजीम है। ए मुखातब, जिस दिन तू उसको देखेगा उस दिन ये हाल होगा कि तमाम दूध पिलाने वाली औरतें अपने बच्चों को भूल जाएंगी और तमाम हमल वालियों के हमल गिर पड़ेंगे और लोग तुझको मदहोश नजर आएंगे, हालांकि वो मदहोश नहीं होंगे बल्कि अजाब देखकर मदहोश हो रही होंगे। बेशक अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है।

और बाज लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की शान में इल्म के बगैर झगड़ते और हर शैतान सरकश की पैरवी करते हैं, जिसके बारे में लिख दिया गया है कि जो उसे दोस्त रखेगा तो वो उसको गुमराह कर देगा और दोजख के अजाब का रास्ता दिखाएगा। लोगो, अगर तुमको मरने के बाद जी उठने में कुछ शक हो तो हमने तुमको पहली बार भी तो पैदा किया था, यानी इब्तिदा में मिट्टी से, फिर उससे नुतफा बनाकर, फिर उससे खून का लोथड़ा बनाकर, फिर उससे बोटी बनाकर, जिसकी बनावट कामिल भी होती है और नाकिस भी, ताकि तुम पर अपनी खालिकियत जाहिर कर दें। और हम जिसको चाहते हैं एक मियाद मुकर्रर तक पेट में ठहराए रखते हैं, फिर तुमको बच्चा बनाकर निकालते हैं, फिर तुम जवानी को पहुंचते हो, और बाज कबल अज पीरी मर जाते हैं, और बाज बुढ़ापे की निहायत खराब उम्र की तरफ लौटाए जाते हैं कि बहुत कुछ जानने के बाद बिल्कुल बेइल्म हो जाती हैं। और ऐ देखने वाले, तू देखता है कि एक वक्त में जमीन खुश पड़ी होती है, फिर जब हम उस पर मे बरसाते हैं तो वो शादाब हो जाती और उभरने लगती है और तरह तरह की बारौनक चीजें उगाती है। इन कुदरतों से जाहिर है कि अल्लाह ही कादर मुतलक है जो बरहक है, और ये कि वो मुर्दों को जिंदा कर देता है, और ये कि वो हर चीज पर कुदरत रखता है, और ये कि कयामत आने वाली है उसमें कुछ शक नहीं, और ये कि अल्लाह सब लोगों को जो कब्रों में हैं जिला उठाएगा।

और लोगों में कोई ऐसा भी है जो अल्लाह की शान में बगैर इल्म के और बगैर हिदायत के और बगैर किताब रोशन के झगड़ता है और तकब्बुर से गर्दन मोड़ लेता है ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर दे। उसके लिए दुनिया में जिल्लत है और कयामत के दिन हम उसे अजाब आतश सोजा का मजा चखाएंगे। ऐ सरकश, ये उस कुफ्र की सजा है जो तेरे हाथों ने आगे भेजा है और अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं।

और लोगों में बाज ऐसा भी है जो किनारे पर खड़ा होकर अल्लाह की इबादत करता है, अगर उसको कोई दुनियावी फायदा पहुंचे तो उसके सबब मुतमईन हो जाए, और अगर कोई आफत पड़े तो मुंह के बल लौट जाए, यानी फिर काफिर हो जाए। उसने दुनिया में भी नुकसान उठाया और आखिरत में भी, यही तो साफ नुकसान है। ये अल्लाह के सिवा ऐसी चीज को पुकारता है जो ना उसे नुकसान पहुंचाए और न फायदा दे सके, यही तो परले दर्जे की गुमराही है।

जो शख्स ये गुमान करता हो कि अल्लाह उसको दुनिया और आखिरत में मदद नहीं देगा, तो उसको चाहिए कि ऊपर की तरफ यानी अपने घर की छत में एक रस्सी बांधे, फिर उससे अपना गला घोंट ले, फिर देखे कि आया ये तदबीर उसके गुस्से को दूर कर देती है।

और इसी तरह हमने इस कुरान को उतारा जिसकी तमाम बातें खुली हुई हैं, और ये याद रखो कि अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है।

जो लोग मोमिन यानी मुसलमान हैं और जो यहूदी हैं और सितारा परस्त और ईसाई और मजूसी और मुशरिक, अल्लाह उन सब में कयामत के दिन फैसला कर देगा। बेशक अल्लाह हर चीज से बाखबर है। क्या तुमने नहीं देखा कि जो मखलूक आसमानों में है और जो जमीन में है, और सूरज और चांद और सितारे और पहाड़ और दरख्त और चौपाए और बहुत से इंसान अल्लाह को सजदा करते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जिन पर अजाब साबित हो चुका है और जिस

ये दो फरीक एक दूसरे के दुश्मन अपने परवरदिगार के बारे में झगड़ते हैं तो जो काफिर हैं उनके लिए आग के कपड़े कता किए जाएंगे और उनके सरों पर जलता हुआ पानी डाला जाएगा, उससे उनके पेट के अंदर की चीजें और खालें गल जाएंगी और उनके मारने के लिए लोहे के हथौड़े होंगे। जब वो चाहेंगे कि उस रंजो तकलीफ की वजह से दोजख से निकल जाएं तो फिर उसी में लौटा दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि जलने के अजाब का मजा चखते रहो।

जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे अल्लाह उनको बहिश्तों में दाखिल करेगा जिनके तले नहरें बह रही हैं, वहां उनको सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और मोती, और वहां उनका लिबास रेशमी होगा, और उनको अच्छी बात की तरफ रहनुमाई की गई और खूबियों वाले मालिक की राह बताई गई।

जो लोग काफिर हैं और लोगों को अल्लाह के रास्ते से और मस्जिद हराम से, जिसे हमने लोगों के लिए यकसा इबादतगाह बनाया है, रोकते हैं, खा वो वहां के रहने वाले हों या बाहर से आने वाले, और जो उसमें शरारत से कजरवी और कुफ्र करना चाहे तो उसको हम दर्द देने वाले अजाब का मजा चखाएंगे।

और एक वक्त था जब हमने इब्राहिम को खाने काबा का मकाम बता दिया और इरशाद फरमाया कि मेरे साथ किसी चीज को शरीक न कीजो और तवाफ करने वालों और कयाम करने वालों और रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए मेरे घर को साफ रखा करना और लोगों में हज के लिए ऐलान कर दो कि तुम्हारी तरफ पैदल और दुबले दुबले ऊंटों पर जो दूर दराज रस्तों से चले आते हों सवार होकर चले आएं ताकि अपने फायदे के कामों के लिए हाजिर हों। और कुर्बानी के अय्याम मालूम में मवेशी चौपायों के जबह के वक्त जो अल्लाह ने उनको दिए हैं उन पर अल्लाह का नाम ले। अब उसमें से तुम खुद भी खाओ और खस्ता हाल जरूरतमंद को भी खिलाओ। फिर चाहिए कि लोग अपना मैल कुचैल दूर करें और मन्नतें पूरी करें और उस कदीम घर यानी बैतुल्लाह का तवाफ करें

ये हमारा हुक्म है और जो शख्स अदब की चीजों की जो अल्लाह ने मुकर्रर की हैं ताजीम करे तो ये उसके परवरदिगार के नजदीक उसके हक में बेहतर है। और तुम्हारे लिए मवेशी हलाल कर दिए गए हैं सिवाय उनके जो तुम्हें पढ़कर सुनाए जाती हैं, तो बुतों की पलीदी से बचो और झूठी बात से परहेज करो, सिर्फ एक अल्लाह के होकर और उसके साथ शरीक न ठहरा कर। और जो शख्स किसी को अल्लाह के साथ शरीक मुकर्रर करे तो वो गोया ऐसा है जैसे आसमान से गिर पड़े, फिर उसको परिंदे उचक ले जाएं या हवा किसी दूर की जगह उड़ाकर फेंक दे।

0: खूब।
1: ये हमारा हुक्म है और जो शख्स अदब की चीजों की जो अल्लाह ने मुकर्रर की है ताजीम करे तो ये काम दिलों की परहेजगारी से है।

और हमने हर एक उम्मत के लिए कुर्बानी का तरीक मुकर्रर कर दिया है ताकि जो मवेशी चौपाए अल्लाह ने उनको दिए हैं उनके जबह करने के वक्त उन पर अल्लाह का नाम ले। सो तुम्हारा माबूद एक ही है तो उसी के फरमाबरदार हो जाओ और आजिजी करने वालों को खुशखबरी सुना दो। ये वो लोग हैं कि जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं और जब उन पर मुसीबत पड़ती है तो सब्र करते हैं और नमाज आदाब से पढ़ते हैं और जो माल हमने उनको अता फरमाया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं।

0: और कुर्बानी के ऊंटों को भी हमने तुम्हारे लिए अल्लाह के शायर मुकर्रर किया है, उनमें तुम्हारे लिए फायदे हैं, तो कुर्बानी करने के वक्त कितार बांधकर उन पर अल्लाह का नाम लो, फिर जब पहलू के बल गिर पड़े तो उनमें से खाओ, और कनात से बैठ रहने वालों और सवाल करने वालों को भी खिलाओ। इस तरह हमने उनको तुम्हारे जेरे फरमान कर दिया है ताकि तुम शुक्र करो। अल्लाह तक न उनका गोश्त पहुंचता है और न खून, बल्कि उस तक तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है। इसी तरह अल्लाह ने उनको तुम्हारे जेरे फरमान कर दिया है ताकि इस बात के बदले कि उसने तुमको हिदायत बख्शी है उसे बुजुर्गी से याद करो, और ऐ पैगंबर नेकुकारों को खुशखबरी सुना दो।
1: सदकल्लाहुल अजीम। सामईने कराम, आपने नहायत खुशो खुजू के साथ कलाम इलाही की तिलावत समात फरमाई है। मुहर्रमुल हराम यही वो मुकद्दस महीना है जिसमें हमें अपनी जिंदगियों का जायज़ा लेते हुए क़ुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए। सामईन, कुरान करीम ही वो सर चश्मा हिदायत है जो हर दौर में इंसानियत की रहनुमाई करता है। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक के नूर से अपने दिलों को मुनव्वर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तमाम तारीफ़ें उसी ज़ात अक़दस के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार हैं। समात फरमाइए ये खूबसूरत हम्द।

0: यकीनन तमाम तारीफें उसी रब ज़ुलजलाल के लिए हैं जिसने हमें ईमान इस्लाम और अहले बैते अतहार अलैहिमुल रिद्वान अजमाइन की मोहब्बतें जैसी अजीम नेमतों से नवाजा। ये और एम फ्री हैं, आप हमारा साथ दे रहे हैं उर्दू नशरियात बनामे मसल खैर में दिन के 7 बजे तक। अकीदतमंद सामईन, इसी मुकद्दस महीने में नवासाए रसूल जिगर गोशाए बतूल सैयदुल शहदा हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला और आपके रफ़क़ाए बावफ़ा ने मैदान करबला में अजीम कुर्बानियां पेश करके रहती दुनिया तक हक और सदाकत का परचम सर बुलंद कर दिया। तो आइए मुअज़्ज़िज़ सामईन मज़ीद रोशनी हासिल करते हैं जामा मस्जिद के मुअज़्ज़िज़ ख़तीब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ क़ादरी रज़वी साहब का ये मुख्तसर मगर बसीरत अफरोज़ बयान समाअत फरमाइए।
1: نحمدالله ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ورضي عنه المنان صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم हम्द सना के बाद सामीन मुहतरम आज हमारा उन्वान है, उन्वान गुफ्तगू है अमीरुल मोमिनीन उस्मान इब्ने अफ़ान रदी अल्लाह ताला और उनकी वो अजीम मनकबत वो अजीम फ़ज़ीलत जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। और वो ये है कि आपको जन्नत में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक़ होने का हुज़ूर सलाम के साथ होने का एक इफ्तिखार अजीम और ऑनर अता किया गया।

सो हदीस पाक में है, आरज सैयदना अबू हुरैरा से रावी है कि अन्न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال, हुजूर ने फरमाया, लिकुल नबी रफीक फिल जन्ना, हर नबी का रफीक होता है जन्नत में, व रफीक फीहा, और मेरा रफीक उसमें उस्मान इब्न अफ्फान, उस्मान बिन अफ्फान रदी अल्लाह ताला अन्हु है। इस हदीस की शरह में शारही ने, हदीस ने ये लिखा, अय लिकुल नबीन रफीकुन, अय खासुन, कि हर नबी का एक रफीक होता है, यानी रफीक खास, खास स्पेशल दोस्त और रफीक। व रफीक फीहा आई फिल जन्ना उस्मान, और हुजूर ने फरमाया कि मेरा रफीक उसमें यानी जन्नत में हज़रत उस्मान है। शारी ने हदीस लिखते हैं, वह हुआ ला युनाफी फी कौन गैरी ही ऐदन रफीकन लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये हुजूर का फरमाना कि मेरा जन्नत में रफीक उस्मान है, ये इस बात के मुनाफी नहीं कि हुजूर सलाम का कोई और भी रफीक हो, यानी हुजूर के तौर भी रफीक है। तो हज़रत उस्मान गनी का रफीक होना ये इसके खिलाफ नहीं कि आपको कोई और रफीक हो। फिर तख़सीस की वजह क्या है, तो कहते हैं मा हाजा तख़सीस ज़िक्र ही इशार बताज़ीम ही बताज़ीम मंजलती ही वरफ़ क़द्र ही, इसके बावजूद उनके ज़िक्र की तख़सीस ये उनके शान की ताज़ीम के इजहार के लिए है और उनके मुकाम को बुलंद करने के लिए है कि इतना बुलंद मुकाम है कि अल्लाह जल्ला मजदहू ने उन्हें जन्नत में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रफ़ीक बनाया, इतना अजीम मुकाम है। इसी तरह एक और रिवायत, वो भी सैयदना अबू हुरैरा से है, अन अबी हुरैरा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़िया उस्माना इंद बाबिल मस्जिदी फ़क़ाल या उस्मानु हाज़ा जिब्रीलु अख़बरनी अन्न अल्लाह ताला क़द ज़व्वजका उम्म कल्सूम بمثل صداق رقية على مثل صحبتها, کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے مسجد کے دروازے کے پاس اور فرمایا عثمان یہ جبریل ہیں اور جبریل نے مجھے یہ بتایا کہ اللہ پاک نے آپ کا نکاح ام کلثوم سے کیا اس مہر کے بدلے جو رقیہ کا تھا ان کی صحبت کی مثل پر۔ आपको मालूम है कि हुजूर सलाम की दो साहबजादियाँ यके बाद दीगर एक दूसरे के बाद सैयदना उस्मान बिन अफ़ान रदी अल्लाह अन्हु के निकाह में आई, ये बहुत बड़ा ऑनर है, बहुत बड़ा एहसास है जो अल्लाह

0: पाक ने आपको अता फरमाया, बहुत बड़ा एजाज है जो अल्लाह जल्ल मजदहू ने आपको अता फरमाया। यही वजह है कि आपका टाइटल है जुन्नूरैन। आला हजरत ने फरमाया, हो मुबारक तुम्हें जुन्नूरैन, जोड़ा नूर का। जुन्नूरैन दो नूरों वाले, हुजूर सलाम की एक साहबजादी उम्मे कलसूम, वो भी सरापा नूर, रुकैया भी सरापा नूर। तो अल्लाह पाक ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम की ये दो नूर सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह उन्हों को अता किए, और एक के विसाल के बाद, उसकी इद्दत के इख्तिताम के बाद, हुजूर सलाम ने अपनी दूसरी साहबजादी आपके निकाह में दी। हो सकता है कि आपने जो फरमाया कि हर नबी का रफ़ीक है जन्नत में और मेरा रफ़ीक जन्नत में उस्मान है, उस का सबब ये हो कि आपके निकाह में यके बादी करे एक के विसाल के बाद दूसरा हुजूर इस्लाम का अजीम नूर आया। और इस बाब में फिर आप सहाबा के दरमियान मुनफरिद हुए। तो मुमकिन है कि जन्नत में जो ख़ास रफ़ाकत है हुजूर इस्लाम की, उसका सबब ये दो नूर हों, उम्मे कलसूम और रुकैया, जिसका शरफ आपको अता किया गया। बहरहाल सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का बहुत ऊंचा मुकाम है, बहुत बुलंद मुकाम है। अल्लाह पाक हमें सहाबा के मुकाम को समझने की और उनके अदब की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलाग।
1: कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद हैं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। शामिल मोहतरम, अभी आपने जामा मस्जिद के खतीब आली हज़रत मौलाना मोहम्मद मुफ्ती इसहाक कादरी रज़वी साहब का नहायत ईमान अफरोज़ और फ़िक्र अंगेज़ बयान समाअत फरमाया है। मज़ीद सामीन, वाक़िया करबला इस्लाम का ऐसा रोशन बाब है जो रहती दुनिया तक हक और बातिल के दरमियान फ़र्क वाज़े करता रहेगा। सामईन, हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला ने मैदान करबला में अपने अहल खाना और जानिसार साथियों के साथ अजीम कुर्बानियां पेश करके ये साबित कर दिया कि हक की सरबुलंदी के लिए हर कुर्बानी दी जा सकती है, लेकिन बातिल के सामने सर नहीं झुकाया जा सकता है। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, ना माल गनीमत ना कश्वरे कुशाई।

ए यजीद, तेरा ताज और तख्त दो घड़ी का था, आज भी है दिलों पे हुकूमत हुसैन अलैहिस्सलाम की। शामिल मोहतरम, करबला हमें ये पैगाम देती हैं कि सब्र, इस्तिकामत, वफा, ईसार और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हर आजमाइश को खुंदा पेशानी से कबूल करना चाहिए। सैयदुल शोहदा हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का अजीम किरदार आज भी अहले इस्लाम के लिए मशअले राह है। अल्लाह ताला हमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैते अतहार रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की सीरत तैयबा से रहनुमाई हासिल करते हुए अपनी ज़िंदगियों को क़ुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। या अल्लाह, बहके शहदाए करबला हमें हक को हक समझकर उस पर अमल करने और बातिल को बातिल जानकर

उससे बचने की तौफीक अता फरमा, आमीन। हमें भी अपनी दुआओं में शामिल करें। तकनीकी मदद अंजू की रही है, मशकूर ममनून है हम। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के परवीज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

रस्सी को वातर में थोड़ा सा चेंज करो या थोड़ा सा रोमांटिक हो या पुजी रोमांटिक गीता सह सावरे मना इन टेकन फ्रॉम द मूवी मिटवा आने रस्सी को प्रेम ही अशी भावना है जी दोन जीवांना एका सुंदर बंधनात जोड़ती तर ऐकू या सावरे मना

0: तो सान बान खोए फरी कानूडानी हमें जोई थाता रे उदास रास रोकी राधा जी ने पाहे जा तो कानूडो ने हाथ जाली खेची लावे रमवाने रास हाथ जाली खेची लावे रमवाने रास
1: रमवाने रास
0: ए मारे क्र...

0: मुंबई या गुजराती, आमी मुंबई या गुजराती, अगा मुंबई या गुजराती, अला मुंबई या गुजराती।
1: राम राम करवानू, हरी नाम जपवानू, रेवानू मौजमा ने खावानू जोशमा।

0: सवार ना सूरज ने खेची ने लावे ने चांद ने आखे आखी रात जगावे दुनिया ना बदे ठेकाने ठेकाने मौजे मौज मा
1: गुजराती बोलो
0: खावामा
1: गुजराती
0: गरबामा
1: गुजराती
0: फरवामा
1: गुजराती
0: छापामा
1: गुजराती
0: इटली ना अड्डा पर
1: गुजराती ज गुजराती
0: सेवा भावी ने भलापन
1: गुजराती
0: जुगाड़ मा गुजराती हो नफा मा गुजराती भाई धंधा पानी केवा चाले मोटा भाई
2: शेर बाजार हो के डरबी नो खोड़ो आए जाजू अने दोड़े थोड़ो
0: ज्यार थी मुंबई मा गिरगांव चौपाटी छे
3: त्यार थी ज मुंबई मा वस्या गुजराती छे बॉस
0: सबका भरोसा बच्चे
4: मुंबई का सकाय बोला मुंबई
0: मेरी जान
2: कोणे कयू छे के नेताओ जोईए
0: ना भाई ना शांति जोईए छे
2: शांति जे आपे एवी बाई अपावो
0: कांता बेन ओ कांता बेन
2: प्लीज करे आवो
4: मुंबई हळु हळु बोला मुंबई मुंबई
5: व्हाट अ प्लेस बॉस
4: मुंबई
2: चल चल चल चल मेडू ने तने मम्मी राह जोए मारी भाई पैसा मोकली देजे हं जेस के हां असला विसला
6: Continuous music.

नमस्कार श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका अभिवादन है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन के साथ और एम फ्री रेडियो, और आप सुन रहे हैं भक्ति में शक्ति कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में साथ देने के लिए मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाऊंगी 11:30 बजे तक। बस हम यही आशा करते हैं कि आप लोग भी साथ निभाएंगे। श्रोताओं, ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। भक्ति का मार्ग आसान अवश्य नहीं होता, बल्कि जो इस रास्ते पर चल पड़ता है उसे हर दर्द में भी एक सीख नज़र आती है। और कहते हैं ना, भक्ति मनुष्य को सिर्फ झुकना नहीं बल्कि हर हाल में मजबूत रहना सिखाती है। चलिए इस कार्यक्रम को हम आरंभ करते हैं एक गणेश वंदना से।

ग्यारह बजकर 13 मिनट हुए हैं। श्रोताओं, एक गांव, एक छोटे से गांव, एक गरीब भक्त रहता था, जहाँ क्षमा कीजिए, एक छोटे से गांव में एक गरीब भक्त रहता था। उसके पास ना ज़्यादा धन था ना सुख सुविधा, पर उसके दिल में प्रभु के लिए असीम प्रेम था। हर सुबह वो मंदिर जाता, हाथ जोर जोर कर कहता, हे प्रभु, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं, केवल मेरा आशीर्वाद और मेरी भक्ति है। लोग उस पर हंसते थे, कहते थे कि बिना धन के भक्ति का मतलब, पर भक्त अपने रास्ते से नहीं हटा। एक दिन गांव में बहुत बड़ा संकट आया, फसल खराब हो गई, लोग परेशान हो गए। सबने मिलकर प्रार्थना की, पर मन में डर था। उस भक्त ने केवल आंखें बंद करके कहा, प्रभु, तू ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। कुछ दिन बाद अचानक बारिश हुई, जमीन फिर से हरी भरी हो गई और गांव में सुख लौट आया। तब लोगों ने समझा कि भक्ति ना शोर मांगती है ना दिखावा, वो केवल सच्चे विश्वास से जीती है। और जो हृदय सच्चे भक्ति से भरा हो, वहां प्रभु अपनी कृपा जरूर बरसाता है।

11:21 हुए हैं। श्रोताओं, आपने साथ दिया इस खूबसूरत कार्यक्रम में, बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यही समाप्त हो चला और उषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन।

0: श्री सुंदर संक्षिप्त समाचार। आपसे रजनी जी नमस्कार।
1: नमस्कार, श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज दिन के 11:30 बजे राष्ट्रीय सभा के कार्य जारी रखे गए हैं। कल बजट पर

बहसों के दूसरे दिन पर 19 लोगों के वक्तव्य हुए और आज तीसरे दिन पर 9 लोगों का हस्तक्षेप होना है। राष्ट्रसभा में आज भी बहस जारी है। आपको बता दें कि 11:30 बजे के बाद जब राष्ट्रसभा के कार्य शुरू हुए तो प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन, विपक्षी नेता का प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन श्रम मंत्री के लिए संबोधित था और अपने जवाब में श्रम मंत्री ने जवाब दिया कि एक कार्रवाई चलाई जाने वाली थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं बजट से पूर्व, क्योंकि इससे पहले जो कदम उठाए गए थे, जो इवैल्यूएशन किया गया था, उससे कुछ खास नतीजा नहीं निकला है। ईडीबी ने पिछले 12 जून को एक फिर से एक कार्रवाई चलाई थी और श्रम मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ओर से उसकी मदद की भी मांग की गई थी एक तकनीकी अध्ययन के लिए। मॉरिशस में विदेशी कामगारों के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों से संबंधित मंत्री रेजा उत्तम ने यह भी बताया कि मॉरिशस में 80% विदेशी कामगार हैं और वे कई अलग अलग सेक्टरों में काम कर रहे हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, और उनके मंत्रालय में ऐसे लोगों के नाम हैं 6,931 कामगार हैं जो अनियमित स्थिति में रह रहे हैं। और पुलिस से ये भी खबर प्राप्त है कि मॉरिशस पुलिस फोर्स की ओर से देश के कई इलाकों में नियमित कार्रवाइयां चलाई गई जिसके अंतर्गत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। असल में 1 जनवरी 2026 से 15 जून 2026 तक पुलिस ने कुल 428 विदेशियों को हिरासत में लिया जो गैर कानूनी रूप से मॉरिशस में रह रहे थे। याद दिलाया जाता है कि नॉन सिटीजन एम्प्लॉयमेंट एक्ट के तहत एक वैलिड वर्क परमिट के बिना किसी विदेशी को काम पर रखना अपराध है और इसके लिए 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है और साथ में 5 वर्षों की जेल की सजा भी हो सकती है। बढ़ते हैं विदेशी समाचारों की ओर। युद्ध विराम करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के बाद संयुक्त राष्ट्र की इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO ने हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे 11,000 से अधिक नाविकों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर एक ऑपरेशन शुरू किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक IMO के महासचिव ने कहा कि ऑपरेशन ईरान, ओमान, इस इलाके के दूसरे तटीय देशों, अमेरिका और मैरिटाइम इंडस्ट्री के साथ मिलकर किया जा रहा है। यूरोप में जून 2026 में रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है। फ्रांस में 40 से ज्यादा लोग गर्मी से बचने के लिए नदियों, तालाबों में नहाने गए और डूब गए। कई देशों में 40 डिग्री से ज्यादा तापमान दर्ज है। उधर भारत में मुंबई में मानसून की पहली बारिश से सड़कें, रेलवे ट्रैक और सबवे जलमग्न हो गए जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। IMD ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सेंट्रल रेलवे ने बताया कि मुंबई लोकल की ट्रांस हार्बर लाइन पर ट्रैक खराब होने की घटना के कारण अब तक 24 ट्रेनें रद्द कर दी गई। और फुटबॉल विश्व कप के चलते आज ग्रुप ए, बी और सी की टीम मैदान पर उतर रही है। आज रात कनाडा का मुकाबला होगा स्विट्जरलैंड के साथ, मेक्सिको खेलेगा चेक के साथ और ब्राजील खेलेगा स्कॉटलैंड के साथ। संक्षिप्त समाचार ये बस समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। रामारोज शामुनी में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती चंद्रावती दुली जो सीता नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के दो बजे उनके बेटे श्री सुनील प्रवीण दुली के घर रामारोड शामुनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कांवागोपाल शामुनी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM Avenue Flamboyant Isidore Rose में 63 साल के 63 years old के श्री आनंदेव जोवाता जो मुंशी नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे उनके भाई हरिदेव सोवाता के घर अवेन्यू फ्लैम्बोयंट इज़िडोर रोज़ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM
रोथ्रोयाल बनाके में, रोथ्रोयाल बनाके में 101 आठ साल की 101 years old की श्रीमती धनमंत्या भिनिक, श्रीमती धनमंत्या भिनिक पैदाची नाम सिपोल जो चंपा नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे उनके घर रोथ्रोयाल बनाके

गई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बना के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 3 PM। और शमे मात्या क्लेमेंस यामे 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड के श्री सुरेश राम कलावन जो दानेश नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है, उनकी अर्थी आज दिन के

0: टुडे एट 1:30 PM शोक मिडविन सभी परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: You're listening RM Free Radio.

0: RM3 Radio.
1: सुहाना सफर। सुहाना सफर कार्यक्रम के जितने भी हमारे प्यारे प्यारे श्रोता हैं उन सभी का मैं वेदिता स्वागत करती हूँ। दिन के 12:13 हुए हैं और हम आ गए हैं आपके लिए खूबसूरत यादों का सफ़र बनाने के लिए, जहां खूबसूरत यादों का सफ़र तय करेंगे हम और आप यहां पर हमारा जो प्रोग्राम है। चलिए, अगर आप कॉल करना चाहते हैं 4028-0707 पर आप कॉल कर ही सकते हैं, लेकिन मैसेज करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर तो 5250-6200 पर कर सकते हैं। बाकी आप लोग चाहे तो हमारे टिकटॉक के साथ भी लाइव जुड़ सकते हैं। हमारा टिकटॉक इस समय लाइव है, तो मैं आपका वहाँ पर इंतज़ार करती हूँ। अभी के लिए

0: सुहाना सफर।
1: स्वागत है आप सबों का, वेलकम। ये है आपका सुहाना सफ़र, और सुहाना सफ़र प्रोग्राम आपको पता ही है, यहाँ पर हम चलाते हैं सिर्फ पुराने गाने। सो जो लोग ये सोच कर आते हैं कि भाई नए गाने की फरमाइश करेंगे, प्लीज़ डोंट डू इट, यहाँ पर सिर्फ पुराने गाने चलाते हैं। चलो तो यहाँ पर वेलकम करती हूँ मैं कवि किशन जी का, जो साथ दे रही हैं। और आयशा उड़ती उड़ती आई, कहती है मेरी पैरट कैसी है? बिल्कुल वैसी है जैसे आप छोड़ के गई थी लेकिन आप उम्मीद करती हूँ लंच कर लिया होगा, नहीं किया होगा तब बुना पीछी। चलिए इसके साथ एजे का स्वागत करते हैं। अजय नमस्कार, स्वागत है आपका। अनिल राजन आपका भी वेलकम है। हेलो ट्रैवल, कैसे हो आप? चलो तो इसी के साथ बाकी जो हमारे दोस्त हैं हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टिकटॉक पे हमें लाइव जुड़ सकते हैं हमारे साथ। कोई डेडिकेशन है तो वहाँ पर आप हमसे ज़रूर गाना जो है डेडिकेट करना चाहते हैं किसी को तो कर सकते हैं। रेशमा रामकिशन आपका भी मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम में। दुनिया के किसी भी कोने से आप हमें सुन रहे हैं, आपका वेलकम, आपका स्वागत है। हाँ, जब मैसेज भेजो तो बता देना कहाँ से सुन रहे हो। वो क्या है ना कि हम गजनी के बहन सजनी हैं, भूल जाते हैं। तो ऐसा करते हैं, अभी के लिए जो नेक्स्ट गाना होगा डेडिकेट करते हैं उनके लिए जो गाड़ी चला रहे हैं और वो लोग जो आज थोड़ा अकेला अकेला फील कर रहे हैं। लीना जी स्वागत है, नमस्कार आपका। तो जो लोग अकेला फील करते हैं, हेलो खान कैसे हो जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जाहिद निसार थैंक यू। जेशनी खंथन आपका भी हम वेलकम करते हैं, वेलकम नमस्कार। एंड अभी एजे कहते हैं मैं घर पे हूँ, घर पे सुन रहा हूँ, वेरी गुड। सुनो और अभी के लिए गाना भी गुनगुनाते चलो।

सुहाना सफर, सुहाना सफर। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, इसलिए मैं दोस्ती करती नहीं हूँ दुख से मैं सिर्फ खुश रहती हूँ और बस सुख मेरे आसपास रहता है, दुख तो आसपास आता ही नहीं है। देखो इतनी खुशी है मेरे पास, इतना प्यार है मेरे पास, सारे के सारे टिकटॉक पे निसार है, तो इतने सारे जब अच्छे अच्छे दोस्त हैं तो दुख की क्या ज़रूरत है। अच्छे अच्छे तो दोस्त हैं हमारे पास, है ना, हमें दुख की कोई वो नहीं है, लालचा नहीं है, हम अपने सुख से ही खुशी है। ठीक है जी, तो चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट गाना जो होगा अपनी प्यारी सी पूनम जी के नाम डेडिकेट करेंगे, जो कल यहाँ पर थी 12 से 2, और अभी वो हमें सुन रही हैं, वो हमारे टिकटॉक में लाइव हैं, तो उनको बहुत सारा प्यार। और जब भी आती कहती पहले पुच्ची दो दीदी, पुच्ची दे।

दे तो उनको बहुत पुच्चियाँ बड़ी पसंद है, तो चलो उनके लिए बहुत सारी पुच्चियाँ देते हैं, जादू की झपियाँ देते हैं। नेक्स्ट जो गाना होगा हम तो खीर कल्याणी हरी मनीता सुबीता जो क्यूपिप से हैं, शैलेंद्र और एक पूनम है, कहते उनके बेटे नील निखिल निवान के लिए चला दी, तो नील नितिन मुकेश रख देते तो ज़्यादा अच्छा होता ना, मैं भूलती नहीं हूँ नाम, आपको पता है मैं भूल जाती हूँ, तो चलो पूनम जी नहीं नहीं उनके नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है अब, चलो ठीक है मैं इनसे इनके साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर लूँगी। नेक्स्ट गाना अनिल जी आपके लिए, और हमारे साथ हैं वी आर वी मी गीता फ्रॉम होलैंड। हेलो होलैंड वालों आवाज़ आ रही है, हेलो 1 2 1 2 माइक टेस्टिंग होलैंड वालों आवाज़ आ रही है, चलो आ गई होगी। कविता अनु जी का आज बर्थडे है तो उनको हमारी ओर से बहुत सारा प्यार है, और उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में जो आपका जो स्पेशल डे है जो आपका बर्थडे है वो ऐसे लोगों के साथ शेयर करें, ऐसे लोगों के साथ सेलिब्रेट करें जो आपके दिल के करीब हो, जो आपको बहुत प्यार करते हैं। एंड आप हमारे साथ हमारे टिकटॉक पे लाइव है, इसका मतलब ये है कि हम भी आपके दिल के बहुत करीब हैं। तो कविता जी जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएँ, बहुत बहुत प्यार हम सब की ओर से, सभी हमारे टिकटॉक फ्रेंड्स की तरफ से, रेडियो मनोरंजन के सभी हमारे लिसनर्स की तरफ से बहुत सारा प्यार। खान साहब क्वेट से हमें सुन रहे हैं, हेलो जी कैसे हो, होलैंड में वैसे काफी गर्मी है ना गीता जी।

सुहाना सफर सुहाना सफर रात का समा झूमे चंद्रमा तन मेरा नाचे रे जैसे बिजुरिया। वैसे सिर्फ रात में ही मन करता है या दिन में भी आपका मन करता है कि हम नाचें गाएं झूमें और अपनी सारी टेंशन सारी परेशानियों को भुला दें। हमारा भी मन करता है कि हम बैठें किसी से बात करें और किसी से अपने दिल का हाल कहें, किसी को ये बताएं कि भाई ज़िंदगी हमारी खूबसूरत है क्योंकि आप हमारी लाइफ में हो। हाँ हाँ हाँ ये सब भी होता है, कभी कभी ज़रूरी होता है ये सारी चीज़ें क्योंकि पता है ज़िंदगी में हमेशा ही कहती हूँ कि बड़ी छोटी सी है ये ज़िंदगी और ऐसी ज़िंदगी में जहाँ प्यार ना हो वहाँ पे कैसी ज़िंदगी है ना। तो ऐसा करते हैं यहाँ पर प्यार के कुछ सपने हम लेकर आए हैं, कुछ ख्वाब आप लेकर आइएगा, साथ में मिलकर एक दूसरे के साथ अपने सपने का हम क्या करें लेन देन करते हैं। नेक्स्ट गाना हमारा तेज सुनातन के लिए होगा। तरुण थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राधा जी राधे राधे कैसे हो। अभी गाना सुनाया था राहे मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, बोला कुछ भी कह लो गाने में सच्चाई तो है। हाँ है, बहुत ज़्यादा है, पर क्या करें। एक सच्चाई ये भी है कि इंसान चाहे तो कभी भी खुश हो सकता है। हमारे पास फैसले हमारे हाथ में होते हैं, एक में चीनी एक में नमक है ना। कुछ लोगों को ज़्यादा चीनी चाहिए, कुछ लोगों को ज़्यादा नमक मिल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीनी हो जाए तो डायबिटीज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा नमक हो जाए तो बीपी हाई हो जाता है। इसीलिए नमक और चीनी का अगर सही अगर आप मात्रा में लो ना तो ज़िंदगी जो है खूबसूरत बन जाती है। तो लाइफ में कुछ भी आए बस प्यार से आगे बढ़ते रहो, हमें क्या चाहिए। चले तो यहाँ पर मिस्टर नुरैदीन बुराही कहते हैं कि फ्रांस में बहुत गर्मी है। मुझे पता है हमारे यहाँ जब इतनी गर्मी हो रही थी तो आपके यहाँ बर्फ़ पड़ रहे थे है ना, गर्मा गर्म चाय पी रहे थे। अब वही गर्मा गर्म चाय फ्रांस से निकल कर मॉरिशस में आ गया क्योंकि यहाँ पर हमें सर्दी लग रही है और जो गर्मी थी यहाँ या गर्मी तो आपके यहाँ पहुँच गई है। तो चलो आप को यही कहूँगी कि दिमाग ठंडा रखना, ठीक है, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, पानी पीते रहना चाहिए और अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखो। तो हमारे साथ रेडियो मनोरंजन पर जुड़े रहो। ओके मिस्टर ब्राही। एंड चलिए अमृता बुलक हमारे साथ हैं फ्रॉम फ्रांस, सो आपका भी वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में। वी हैव साहिल कवीना जंकिया, वी हैव चांद खान, सोनम फ्रॉम लंडन यूके, हे विशाल आपका भी स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। चलिए इसी के साथ जो अगला गाना होगा आप सभी हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स के नाम

0: हमारा इस तरह से और मिलना, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता।
1: कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम जैसे मिलते आए हैं मिलते रहेंगे।
0: फिर भी जरीन, आखिर वो तुम्हारे डैडी हैं, तुम्हारे लिए जरूर कुछ और सोच रखा होगा।
1: सोचने दो।
0: बुरा मत मानना जरीन, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़े। और फिर यह भी तो सच है कि मैं एक मामूली घर का लड़का हूं।
1: फिरोज, तुम मुझे

0: प्यार करते हो।
1: लेकिन जरीन, सिर्फ प्यार से तो सब कुछ नहीं होता। तुम बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारे डैडी
0: तुम मुझे प्यार करते हो।
1: फिर मेरे कॉलेज का यही आखिरी साल है, बीए के बाद और पढ़ भी नहीं पाऊंगा, पता नहीं कब कैसी नौकरी मिले। और
0: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो?
1: प्यार तो करता हूँ जरीन, बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन
0: प्यार करते हो ना?
1: पर जरीन तुम
2: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे,

0: तुमसे मिला था प्यार कुछ अच्छे नसीब थे। वैसे ज़रूरी नहीं कि प्यार जो है वो किसी एक इंसान के साथ मिले, प्यार जो है दोस्तों के साथ भी तो मिलता है।
1: सुहाना सफर
0: 12:40 हुए हैं। चलिए अच्छी अच्छी बातों के साथ ही हम यहाँ पर कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं और साथ में आपके कुछ मैसेजेस। गजवी से रुखैया हमारे साथ हैं और उनके निफ्यू जासिम का आज बर्थडे है, सो उनको बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो भाई, उनको बहुत सारा प्यार है। यहाँ पर वर्षा हमारे साथ जुड़ी हुई रेनियन आइलैंड से कहती हैं, थोड़ी फैमिली के लिए नेक्स्ट गाना ओके स्वीट हार्ट चला देंगे। फिर आपका स्वागत है। अनिल जी नमस्कार। माधुरी जी कैसी हैं, एक दो तीन करते हुए आ गई। चलिए भाई, हमारे साथ फिल्मी भक्त भी जुड़े हुए हैं। अब उन्होंने नाम तो नहीं लिखा, बस लिखा फिल्मी भक्त, तो हमारे जैसी फिल्मी

होंगे, थोड़ा डायलॉग वालोग मारेंगे तो थोड़ा हम भी मारेंगे, ठीक है। नीलिमा जी नमस्कार, अनिल राजन कुंजन आपका भी हम स्वागत करते हैं प्रोग्राम में, कैसे हैं आप? सोनम जी गुड मॉर्निंग, और यहाँ पर परी आ गई है, कैसे हो परी, उड़ती हुई आ गई। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस। बीना जी कैसे हो मेरी जान, अच्छी हो? और चुलबुल की बुलबुल, नहीं मैंने बोला मैं हूँ गजनी की बहन सजनी, तो आपने मुझे चुलबुल की बुलबुल भी बता दिया, चलो अच्छा है। सलोनी गयादीन नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। शिवरानी सुब्रन नमस्कार, खतीबा मंगर कैसे हैं आप? कहते हैं फिनिक्स में बारिश ही बारिश हो रही है। ओ हो हो, बारिश का मज़ा तभी आता है जब पकोड़े होते हैं साथ में और उसके साथ होती हैं वो कोरिएंडर की चटनी, क्या कहते हो? आ जाए शाम को, प्रोग्राम के बाद आते हैं। खान साहब कैसे हैं आप? तो उन्होंने भी गाने की फरमाइश कर दी। चलो ठीक है, कोशिश करते हैं अभी। नीलिमा कहती है ऐसे मौसम में तो गाने का मन कर रहा है, तो ये जो बहाना है गाना गाने का, विंटर में आपको यही गर्म रखता है, तो कोई बात नहीं, हम यहीं पे गर्मा गर्म गाने आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। डॉक्टर अंजुम आपका भी हम वेलकम करते हैं, सलाम आपको। और यहाँ पर चलिए जी, गीतों के इस सफ़र में मनीता जी जुड़ी हुई हैं, उन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है। मैं ढूंढने की कोशिश करूँगी, अभी क्या है ना कि मेरा अभी बहुत लंबा, अभी बहुत सारे लोग हैं, मुझे 50 मैसेजेस भेजने हैं, हो सकता है कि मैं भूल जाऊँ, बाद में याद दिलाना। और ऐसा करते हैं डांस विद किम, डांस विद किम, अगर आप हमें हमारे साथ डांस करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना अगर आप हमें अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं तो हम तो डांस करने के लिए एकदम रेडी हैं जी। चलो तो आपके साथ भी डांस कर लेंगे। रागिनी जी नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोग्राम में, और यहाँ पर हम वेलकम करते हैं दादी सीता, और साथ में है देवानीश और श्वेता। ओके थैंक यू सो मच किम एंड वीर सिंह, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। और साथ में यहाँ पर तरुण तरुण कहते हैं बात करो, बात करो, मैं तो कर ही रही हूँ। अच्छा जरीन, हाँ जरीन ने तो बात की, और बेचारा जरीन जब गा रही थी तो मुझे लगा कि फिरोज़ गाना गाएंगे, लेकिन वो तो बात ही कर रहे थे, हमें भी गुस्सा आ रहा था, मैंने बोला क्या यार गा रही है लड़की, गा रहे तो गाओ, हमें देखो हम तो कभी भी शुरू हो जाते हैं वही। सरोज जी आपका प्रोग्राम में स्वागत है। इंदु जी नमस्कार, कैसी हैं आप?

0: जी हम तो बोलने के लिए ही यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब हम नहीं बोलेंगे तो मैसेज छाएगा कैसे, है ना?
1: सुहाना सफर।
0: चलिए जी, सुहाना सफर में नेक्स्ट जो हमारा गाना आ रहा है वो माया रामदोस जी के लिए, स्वागत है आपका। साथ में धर्मन और गीता हमें फिजी आइलैंड से सुन रहे हैं। फिजी वालों कैसे हो? फिजी आइलैंड के बहुत सारे लिसनर्स हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहते हैं, बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, चलो जी, वर्षा जी और हर्षा जी आप दोनों के लिए गाना होगा। आज ना मेरा मन थोड़ा सा मिड वीक तक पहुंच गए हैं, ना उदासी ना खुशी, दोनों मिक्स होता है, है ना? तो ऐसा करते हैं कि इसको मिक्स ही रखते हैं, और ये जो टूटे हुए खामों के गाने आप मांग रहे हैं मैं कोशिश करूंगी, अगर मिले तो चलाऊंगी, वरना आपके दुख को दूर करके थोड़ा खुशी में उसको बदल दूंगी, क्या बोलते हो? गविन तिलक नमस्कार, स्वागत आपका, और साथ में स्वागत करते हैं हम आप लोगों का, और यहाँ पर है वीना फ्रॉम फ्रांस। वीना जी कैसे हो? शाहिद इकबाल खान कहते हैं हेलो स्वीट कज़िन, हेलो स्वीट ब्रदर, कैसे हो? सब बढ़िया, सब ठीक, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर एक मैसेज आया है, मेरे दोस्त रश्मा के लिए गाना बजा दीजिए। ठीक है, रश्मा के लिए नेक्स्ट गाना, और पूनम संभू के लिए भी नेक्स्ट गाना। साथ में यहाँ पर हम गाना डेडिकेट करते हैं आपके लिए, इंदिरा रामरेखा कैसे हो? एंड मुझसे पूछा हाउ यू फीलिंग, आज मैं बड़े नॉटी मूड में हूँ, और आप बताइए आप कैसे मूड में हो? तो रामरेखा, इंदिरा और शांत फ्रॉम पॉइंट कैनुनी। ऑलराइट जी, यहाँ पर निर्मला नहीदा चमन हमारे साथ हैं जी, वेलकम। सुभाष चांद, अंजी आर्मुगम, वी हैव चिप और यहाँ पर हम निर्मला नहीदा चमन जी का स्वागत करते हुए गाना आपके लिए। एजे कहते हैं गर्मा गर्म चाय पकौड़े के साथ आज वेदू का गर्मा गर्म प्रोग्राम सुनेंगे, बिल्कुल इतना गर्म होगा ज़रा संभल के। अर्चना डांडा हाय, शी इज़ फ्रॉम न्यूजीलैंड एक्चुअली, और मुझे याद है क्योंकि न्यूजीलैंड से मुझे लगता है सिर्फ दो ही लोग हैं जो हमें मैसेज भेजते हैं, तो उनमें से आप हैं, पहले तो आप ही ने भेजा था, सो थैंक यू सो मच। धनुष भावना आपका भी स्वागत करते हैं। रागिनी जी वेलकम, और साथ में यहाँ पर हम वेलकम करेंगे आपका हमारे इस प्रोग्राम में। वैसे आप हैं मनोज मिलिंग, मुझे नहीं पता कहाँ है ये, शायद आपको पता होगा, लेकिन थैंक यू सो मच है। एंड वी हैव अंजू, हेलो अंजू, हेलो इंदु, हेलो मिस्टर विशाल।
2: RM3 Radio।
0: चलिए भाई, यहाँ पर कुछ बारिश आपके लिए। अरुण है फिजी से और वो भी हमें सुन रहे हैं, थैंक यू। चलो भाई, फिजी के बहुत सारे दोस्त हैं, नालिनी गुलाम, और साथ में यहाँ पर हमारे और भी दोस्त जुड़ गए हैं, तो जगदम्बी SSS की जय हो, थैंक यू मिस्टर विशाल। एंड यहाँ पर गाना होगा आपके लिए,

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: चलिए जी, यहाँ पर हंस भी हमारे साथ हैं और वर्षा में हर्षा का मन समोसे पकोड़े खाने का हो गया, गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय करें। फाजी वेलकम, अरुण, रेशमा, ज्योति, चमन, आपका स्वागत है। और साथ में जो लोग हमारे अभी ड्राइव कर रहे हैं उनके लिए भी गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे। और यहाँ पर एक गाना होगा आपके लिए, और गीता दी भी हमारे साथ हैं, तो इस गाने के साथ बढ़ते हैं समाचारों की ओर।

0: चली सुंदर संक्षिप्त समाचार आपसे विधि निर्मा नमस्कार
1: नमस्कार निर्मणि सभी सुनने वालों को नमस्कार बजट पर चर्चा के तीसरे दिन आज नौ सांसदों को राज्यसभा में अपनी बात रखनी है लेकिन इससे पहले आज सुबह 11:30 बजे श्रम मंत्री रिजाउद्दीन ने सदन में अपनी बात रखी क्योंकि विपक्ष के नेता का प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन उनको संबोधित था। पिछले साल के बजट में फास्ट ट्रैक वर्क परमिट प्रणाली शुरू करने से पहले क्या श्रमिकों की कमी का कोई मूल्यांकन किया गया था? मंत्री के अनुसार नहीं, क्योंकि ये प्रणाली अभी तक लागू ही नहीं हुई है। टेंडर प्रक्रिया का पहला चरण उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं दे सका, इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड ने 12 जून को फिर से टेंडर जारी किया है। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि मॉरिशस में विदेशी श्रमिकों के सामाजिक आर्थिक प्रभाव पर तकनीकी अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से सहायता मांगी गई है। रिजाउद्दीन ने यह भी जानकारी दी कि मॉरिशस में 80% विदेशी श्रम शक्ति मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण क्षेत्रों में कार्यरत हैं। उनके मंत्रालय के अनुसार

0: वर्तमान में 6,921 श्रमिक अनियमित स्थिति में हैं। कल बजट बहस के दूसरे दिन 18 सांसदों ने अपनी बात रखी, जहां विपक्ष की सांसद जोआना बेरांजे ने सोवरेन फ्यूचर फंड के गठन का प्रस्ताव रखा। वहीं पर्यटन मंत्री किशोर जुवाल ने इस बजट की दिशा की सराहना की। दूसरी ओर लेबर पार्टी के सांसद हविराज बिचुक ने सरकार द्वारा किए जा रहे फिस्कल कंसोलिडेशन के प्रयासों पर जोर दिया। परिवहन मंत्री ने अपने संबोधन में वाहन मालिकों द्वारा बहुप्रतीक्षित स्पष्टीकरण दिए हैं। उस्मान माउमेद ने स्पष्ट किया कि बजट में घोषित वार्षिक शुल्क केवल नई पर्सनलाइज्ड नंबर प्लेटों पर ही लागू होगा, अतः मौजूदा पर्सनलाइज्ड प्लेट या पुरानी प्लेटों के धारकों को इन वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। मंत्री ने ये भी जानकारी दी कि पिछले साल के बजट में घोषित की गई नंबर प्लेटों की नई श्रृंखला से अब तक सरकारी खजाने में 55 मिलियन रुपए जमा हो चुके हैं। इन नई प्लेटों की ऑनलाइन बिक्री 17 नवंबर 2025 को शुरू हुई थी। और विदेश में इंग्लैंड और वेल्स के कुछ हिस्सों में अत्यधिक गर्मी के लिए रेड वार्निंग जारी की जाएगी, जो गुरुवार रात 9 बजे तक प्रभावी रहेगी। ये चेतावनी का सबसे गंभीर स्तर है, जिसका अर्थ है कि मौसम जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकता है। प्रभावित क्षेत्रों में लंदन, मिडलैंड्स के कुछ हिस्से, दक्षिण पूर्व वेल्स और दक्षिणी इंग्लैंड शामिल हैं। इंग्लैंड और वेल्स के अधिकांश हिस्सों में पहले से ही एम्बर वार्निंग लागू है। दक्षिणी इंग्लैंड में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। रारुद बनाकर ने 101 साल की 101 years old की श्रीमती दनमतिया भिनिक पैदाइशी नाम सिपुल और जो चंपा नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके घर रारुद बनाकर से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:30 PM। नंबर 27 सिटी बिस्क्यूस फ्लैक में 88 साल की 88 years old की श्रीमती सुभावती सिंह गुलाम पैदाइशी नाम ज्योति और जो बुलफाम वेंसित नाम से भी जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके बेटे रविन सिंह गुलाम के घर नंबर 27 सिटी बिस्क्यूस फ्लैक से उठाकर कौंडमास की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:30 PM। नंबर 20 शाटू दो स्ट्रीट थ्रोंगबर्ग पोटली में 65 साल की 65 years old की श्रीमती रागिनी रामलाल पैदाइशी नाम तिलक और जो नंदी नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज शाम चार बजे उनके पति श्री देवलाल रामलाल के घर नंबर 20 शातुदो स्ट्रीट थोंगबाव पोटली से उठाकर थोंगबाव की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:04 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: खाना सफर खाना सफर।
1: चलिए जी, स्वागत करती हूँ मैं आपका एक बार फिर हमारे प्रोग्राम में जो कि है सुहाना सफ़र। दिन के 1:10 हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारे दोस्त हैं जो टिकटॉक में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि दीपक बिहारी, विहाव सूर्या कहते हैं फिजी में तो अभी हमारा गुड इवनिंग हो रहा है, आपका गुड आफ्टरनून हुआ है। हाँ, टाइम का थोड़ा सा है ना। चलो भाई, वैसे भी आपका हम वेलकम करते हैं प्रोग्राम में, और शाम के टाइम में ऐसे पुराने गाने सुनने का मज़ा ही कुछ और होता है। एंड वी हैव तारिक खयाम फ्रॉम जर्मनी, हाय, थैंक यू सो मच। आपको भी संजय गणेश हमारे साथ हैं। वी हैव सरस्वती, अंजनी कर्पन, प्रीति और लीला के लिए गाना मांग रही है। वैसे भी कर्सी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, हेलो। एंड वी हैव मीर फ्रॉम पाकिस्तान कराची, आपका हम सलाम, आपका हम स्वागत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। रेड मैक्स हैं फ्रॉम श्रीलंका, हेलो श्रृंगा वालो, कैसे हो। संध्या रिव्या जो गाँव पहुँचे हैं। वी हैव मिमी, करुणा, माला दीनदयाल, अविसान जो इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो नेक्स्ट गाना हमारा होगा वो हम करते हैं आपके नाम। और स्मिता हमारे साथ हैं, कैसे हो भाई। हमारा तो यही है, बस खुश रहो और लोगों को खुश करो, इसके अलावा हमारी लाइफ में और कुछ है ही नहीं। गंगा दिन मनीष, हेलो, कैसे हो आप। प्रतिमा, आपका स्वागत करती हूँ मैं प्रोग्राम में। एंड स्वस्ति कुमार सिंह, आपका भी हम वेलकम करते हैं। वैदेही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। चलिए इसी के साथ अभी जो नेक्स्ट गाना हम डेडिकेट करेंगे आपके लिए, फिल्म का नाम है हरे राम हरे कृष्णा। लता जी के साथ अपनी आवाज मिला रही हैं किशोर कुमार, और ये जो गाना है, चलिए भाई प्यार से इसको हम भी गाएंगे आपके साथ।

देखो भाई प्रोग्राम है सुहाना सफर और यहाँ पे हमारा सफर सुहाना तब होता है जब हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़े रहते हैं और यहाँ पर हम नेक्स्ट जो गाना होगा आपके नाम डेडिकेट करेंगे लवना थैंक यू सो मच और साथ में यहाँ पर किसी ने कहा आप हंसते हुए हमें माधुरी दीक्षित लगती हैं तो वही मैं पूछ रही थी रोते हुए कैसे नज़र आती हूँ वो भी बताते चलो चलो बता देना और यहाँ पर हमारे साथ तरुण कहते हैं महबूबा हाँ जी महबूबा के लिए गाना हम चलाएंगे और दिलरुबा के लिए भी क्योंकि दिलरुबा यूएसए से हमें सुन रही हैं एंड उन्होंने कहा कि किसी ने प्यार से मुझे ये नाम दे दिया तो बस यही नाम यूज़ करती हूँ बहुत अच्छा किया आपने लेकिन ऐसा नहीं है ना कि हर कोई गाएगा दिलरुबा दिल पे तो सितम तो नहीं करती ना आप नहीं करती तो ठीक है यहाँ पर सलूजा कहती हैं उनकी मॉम उमिरा सुकन के लिए गाना जो गाँव गुप रहती हैं विनेश आपका स्वागत है बी सोनी जय श्री आपका भी और संजू हमारे साथ मिलान से जुड़े हुए हैं तो मिलान से हैं तो यहाँ पे मिलन हो रहा है हमारा रेडियो मनोरंजन आर एम टू में थैंक यू अर्जन सिंह कैसे हो और तैयब भोला आपका भी हम वेलकम करते वैसे पाकिस्तान से और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे इस प्रोग्राम को सुनते हैं मैं बता रही थी ना आपको कि हमारी जो सखी हैं हमारी जो फ्रेंड हैं नाजिया वो पाकिस्तान से हैं और उनसे बहुत बातें होती हैं पाकिस्तान की बहुत सारी बातें बताती हैं हमें तो चलिए अभी आप हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं थैंक यू सो मच अभी के लिए क्या है कि हम जो अगला गाना होगा हाँ जी तरुण जी थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट अगला गाना जो है हम डेडिकेट करते हैं उन दोस्तों के लिए जो इस समय इस बारिश के मौसम में बारिश का मज़ा ले रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हैं

सुहाना सफर, सुहाना सफर। दिन के 1:27 हुए हैं, आप विनीता का साथ दे रहे हैं। चलो जी, तो यहाँ पर हम लोग आपके साथ कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी गाने हैं उनमें से कोई ना कोई गाना आपके दिल तक ज़रूर पहुँचे और आपको वो गाना पसंद आए। तो यहाँ पर नेक्स्ट गाना रिहा की तरफ से उनके दोस्तों के लिए, विक एंड आयशा के नाम, और साथ में यही गाना जो है हम डेडिकेट करेंगे आपके लिए, और गाना है अंबिका नीर के लिए। और साथ में हमारे कौन हैं, श्यामा महराली, विहावर रेखा और निशा भवानी कहती हैं कि 19 को हमारा बर्थडे था, 55 ईयर्स के हो गए हम। अरे बाप, कंग्रेचुलेशंस आपको, हैप्पी बर्थडे। इंदिरा की तरफ से राजेश प्रकाश के लिए गाना, और वैसे अंबिका की तरफ से उनके पति पहान के लिए गाना होगा। विहावर किंग, काजल, अंदिनी, सुख साकुन, उनकी बेटी दीक्षा के लिए जो कैनेडा में हमें सुन रही है, हेलो कैनेडा वालों, जाग गए। चलो बिंता और कविता हिमा के नाम भी हम डेडिकेट करते हैं ये प्यारा सा गाना। उम्मीद करती हूँ कि इस गाने को आप हमारे साथ सुनेंगे और गाएंगे भी।

0: You're listening RM3 Radio.
1: चलिए जी, ये गाना हम संजनी और निशा के नाम डेडिकेट करेंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं।

0: लवली सॉन्ग आपके लिए हर जाए फिल्म से लेकर आए हैं। आप सुन रहे हैं विदिता के साथ रेडियो मनोरंजन पर प्रोग्राम सुहाना सफर।
1: सुहाना सफर
0: चलिए तो सुहाना सफर में

अभी जो नेक्स्ट हमारा गाना होगा वो आशा उबिलक के नाम डेडिकेट करेंगे इंदिरा की तरफ से शाम के लिए, और वेलकम करते हैं अकरम का, साथ में है कुसकुस एंड बेबो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एंड थैंक यू सो मच बेबो। अभी फ़िलहाल के लिए जो गाना हम आपके लिए लेकर आए हैं ये बहुत ही प्यारा सा गाना है, और ये फिल्म आई मिलन की बेला फिल्म से लिया गया है। पीछे मीनू आपका भी हम वेलकम करते हैं हमारे प्रोग्राम में।

0: एंड यस, चलिए जिंदगी का बहाना आपने कहा और यहाँ पर अनीता पर तो हमारे साथ जुड़ गई हैं।
1: RM Free Radio, Radio, Radio.
0: प्यार की बातें हो रही है तो प्यारा सा गाना आपके लिए। फिल्म का नाम है जूली और गाना जो है उन हमारे तमाम लिसनर्स के लिए जो हमें सुन रहे हैं लेकिन मौका नहीं मिलता उनको हमें मैसेज भेजने का। तो यहाँ पर स्नेहा लोबीन है, उनकी ये दादी साधना और साथ में है इमरित और दादा मुकेश शैलान माटी से, उनके लिए भेज रहे हैं प्यार। चलिए नेक्स्ट गाना करते हैं आपके नाम और वहीं पे हमारे साथ जो लोग अभी टिकटॉक के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए।

0: दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए. हाँ प्यार हो जाए ठीक है, लेकिन प्यार को निभाना भी तो आना चाहिए. फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी यश और ईशा की हो रही है. ज्योति की तरफ से भेज रहे हैं हम बहुत बहुत सारा प्यार उनके लिए.
1: सुहाना सफर.
0: ये गाना हम अंजलि चितियार के नाम भी डेडिकेट करना चाहेंगे और साथ में हमारे और भी बहुत सारे दोस्त हैं, चलिए उनका वेलकम करते हैं. विहा बिंदा, नारायण, ज्योति, अनिल मंगरू और मिनिस्ट्री में काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए रिहा की तरफ से गाना होगा. विहा लक्षिता, केशनी कुमार, पवन हमारे साथ हैं, सल्लू खान, सबकी जान क्या बात है, थैंक यू सो मच. और यहाँ पर हमारे साथ विश्वनाथ प्रयाग जी जो हैं कहते हैं गुड मॉर्निंग, लव योर म्यूज़िक, थैंक यू सो मच. हमारा तो आफ्टरनून हो गया, आपका मॉर्निंग अभी शुरू हुआ है, तो ट्रस्ट मी बहुत बढ़िया होने वाला है. मंजुला कॉलेज सर आपका स्वागत है. अरुणा, और गाना होगा आपके सिस्टर इन लॉ कुसुम के लिए एंड उनको हैप्पी हैप्पी बर्थडे. चलो मोहिनी हमारे साथ हैं, उनके लिए गाना डेडिकेट करते हैं. और वी हैव दानी जगरू फ्रॉम गुडलैंड्स और साथ में जो लोग अभी हमारे जुड़े हैं उनके लिए भी गाना होगा, यानी कि ईशिका की तरफ से उनके बॉयफ्रेंड अक्षय तेंगर के लिए जो कि हैं फ्रॉम कौंजियाबल. अब चलिए देखते हैं किसकी किस्मत में क्या है. फिल्म है आप तो ऐसे न थे. बिल्कुल, वक्त के साथ इंसान बदलता है, कभी बदलना पड़ता है. वृंदा इटली से हमारे साथ जुड़ी हैं, इटली में जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं अभी, हेलो टू यू.

देखे किसको कौन मिलता है। चलते चलते यहाँ पर देविका सनीचर को हैप्पी बर्थडे गंगाराम फैमिली की ओर से पूजा का स्वागत, करुणा दोमा का स्वागत है। और चलिए भाई हम भी 840 वोट का यहाँ झटका देके आपको निकल लेते हैं। आपसे मुलाकात करेंगे अब हम कल 12 बजे, भूलिएगा नहीं, आप ही के प्रोग्राम में जो कि है सुहाना सफर। और यहाँ पर अब जाने का समय हो गया है, बहुत सारा प्यार आपके लिए, आपसे मिलेंगे कल। जगदीप सिंह स्वागत है।

0: Center, 95.5. North, South, 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio.
2: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। एक बार फिर आपसे विधिमान नमस्कार।
3: नमस्कार नीलमणि, सभी को नमस्कार। बजट पर चर्चा का आज तीसरा दिन है। आज सुबह 11:30 श्रम मंत्री गिजाउद्दीन ने सदन में अपनी बात रखी। उन्होंने विपक्ष नेता के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का जवाब दिया। पिछले साल के बजट में फास्ट ट्रैक वर्क परमिट प्रणाली शुरू करने से पहले क्या श्रमिकों की कमी का कोई मूल्यांकन किया गया था? मंत्री के अनुसार नहीं, क्योंकि ये प्रणाली अभी तक लागू ही नहीं हुई है। टेंडर प्रक्रिया का पहला चरण उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं दे सका, इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड ने 12 जून को फिर से टेंडर जारी किया है। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि मॉरिशस में विदेशी श्रमिकों के सामाजिक आर्थिक प्रभाव पर तकनीकी अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से सहायता मांगी गई है। गिजाउद्दीन ने यह भी जानकारी दी कि मॉरिशस में 80% विदेशी श्रम शक्ति मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण क्षेत्रों में कार्यरत हैं। उनके मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में 6,921 श्रमिक अनियमित स्थिति में हैं। कल बजट बहस के दूसरे दिन 18 सांसदों ने अपनी बात रखी, जहां विपक्ष के सांसद जुआना बेगौशे ने सॉवरेन फ्यूचर फंड के गठन का प्रस्ताव रखा। वहीं पर्यटन मंत्री किशोर जुवाल ने इस बजट की दिशा की सराहना की। दूसरी ओर लेबर पार्टी के सांसद रविराज बिचुक ने सरकार द्वारा लिए किए जा रहे फिस्कल कंसोलिडेशन के प्रयासों पर जोर दिया। परिवहन मंत्री ने अपने संबोधन में वाहन मालिकों द्वारा बहुप्रतीक्षित स्पष्टीकरण दिए हैं। उस्मान महमूद ने स्पष्ट किया कि बजट में घोषित वार्षिक शुल्क केवल नई पर्सनलाइज्ड नंबर प्लेटों पर ही लागू होगा, अतः मौजूदा पर्सनलाइज्ड प्लेट या पुरानी प्लेटों के धारकों

0: को इन वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। मंत्री ने ये भी जानकारी दी कि पिछले साल के बजट में घोषित की गई नंबर प्लेटों की नई श्रृंखला से अब तक सरकारी खजाने में 55 मिलियन रुपए जमा हो चुके हैं। इन नई प्लेटों की ऑनलाइन बिक्री 17 नवंबर 2025 को शुरू हुई थी। और विदेश में पश्चिमी यूरोप का एक बड़ा हिस्सा भीषण गर्मी की लहर का सामना कर रहा है, जिसने कई देशों में तापमान के पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और फ्रांस में हजारों लोगों की बिजली गुल हो गई है। उधर इटली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को मिलान और रोम सहित 16 शहरों में रेड हीट वेव अलर्ट घोषित किया है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। La Chapelle Ardente et Jensen sur la route Bobasemé, 78 salle qui 78 years old, qui Sri Devan Swambar, jo Dayanand naam se bhi jane jate the, ki mrityu ho gayi hai, unki arthi आज दिन के पौने तीन बजे उनकी अर्थी आज दिन के पौने तीन बजे लाशा पहला दौते दिन संस्रा रोड बोबासा से उठाकर बॉम्बो की शमशान भूमि ली जाए जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट क्वार्टर टू थ्री। नंबर 20 शातू दो स्ट्रीट थोंगबा पोटली में 65 साल की 65 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती रागिनी रामलाल पैदाइशी नाम तिलक और जो नंदी नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज शाम 4 बजे उनके पति श्री देवलाल रामलाल के घर नंबर 20 शतुद्ध स्ट्रीट थोंगबा पोटली से उठाकर थोंगबा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। नंबर 27 सिटी बिस्क्यूस फ्लैक में 88 साल की 88 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुभावती सुगुलाम पैदाशी नाम ज्योति और जोबल फार्म वेंसित नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुपहर 3 बजे उनके बेटे रवीन सुगुलाम के घर नंबर 27 सिटी बिस्क्यूस फ्लैक से उठाकर कौंडमास की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: RM3 Radio, Radio, Radio.
3: धरोहर के सरोवर साप्ताहिक प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से द आवा भोजपुरी सीखा धरोहर के सरोवर संगे।
4: नमस्ते, धरोहर के सरोवर कार्यक्रम में आप सब लोग के स्वागत बा। हमें अरविंद साथ में हमनी के तकनीकी सहयोगी संजू तो कुकी आज हमनी के कार्यक्रम तैयार करे में हमनी के सहयोग दुआ थुआ बहुत स्वागत बात लोग के। और जैसे जनबे करेला हमने के जो कार्यक्रम है धरोहर के सरोवर ई मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और महात्मा गांधी संस्थान के भोजपुरी लोक विभाग दिने से तैयार करल जात बा। तो लोग के बोली रजा फिर से बोला थी जा कि मॉरिशस में भोजपुरी के पढ़ाई होता कहाँ पर ही होता तो लोग के बताए ला जा। देखा अभी हम के बैठका लोग में लड़का लोग के भोजपुरी सिखावल जात बा और हमनी महात्मा गांधी संस्थान देने से कोशिश कर लजा कि जो सामग्री चाहेला उस सामग्री तो लोग के तो लोग तक सकब जा पहुंचाई अये जाहे जा परी अध्यापक लोग अध्यापिका लोग तो लोग के सकब जा इस सामग्री दे तो अपन लड़का लोग के सकब जा सुनाए सकब जा पढ़ाए ताकि तनी तनी तनी लोग भोजपुरी सीखबे करी। अब ये देखा हमारे हाथ में भी एगो पुस्तक चलाल। ये पुस्तक के नाम है भोजपुरी टीचर्स हैंडबुक स्टैंडर्ड वन। तो स्टैंडर्ड वन यानी ग्रेड वन के लड़का लोग खातिर ई पुस्तक तैयार करल गल बा जो तो लोग के लड़का लोग खातिर बहुत काम आए। ई चलते हम धन्यवाद देव ई सब टीम के जो लोग ई पुस्तक तैयार करे में हमने के सहयोग दिल हुन जा जैसे कोऑर्डिनेटर हम और दाऊ सिंह जी रहलन जय गणेश हमी के पैनल में रहलन जा डॉक्टर मिसिस भगत राम याद गौतमी डॉक्टर हेमराज सुंदर डॉक्टर लाल बिहारी जयचंद डॉक्टर संध्या आंचराज फिर साथ में श्रीमती जिंगन योगेश्वरी लोडा ब्रिजलाल जी रहल चंद्रदेव ओबिलक लाल धन सिबुआ जी रहलन जा सब मिल के एक पुस्तक तैयार कर रहल बा। और एक में जो उद्देश्य बा कि लड़का लोग के धला भोजपुरी से अवगत कराए के अब एक में जो पहल का पाठ ही जो बा चंदा मामा जनबे करेला चंदा

मामा दूर के पुआ पकावे गुड़ के तू खैबा थाली में हमरा देबा प्याली में प्याली गल टूट मामा गल रूट प्याली लेलन औरू मामा ऐलन दौर एगो गीत बा साथ में एगो लोरी भी बा इत जनबे करेला रे चंदा मामा आरे आव पारे आव नदी आ किनारे आव सोने के कतोरिया।

तैयार कर ले जा एक ऑडियो जो लड़का लोग कैसे बजा सिखाए सुनाए और एक कैसे बजा संजो कराओके खाली ओकर म्यूजिक रहे ओकर संगीत रही त लड़का लोग सकेंजा गाय तैसे वार्षिक उत्सव रही कोनो ऐसा कार्यक्रम रही त सगबजा ई लड़का लोग के ई सुनाए ई गवाए त ई आज हमी के कार्यक्रम लगभग ई पर केंद्रित करब जा कि कौन ची सकब जा हमी अपन लड़का लोग के पढ़ाए जब भोजपुरी पढ़ावत है जा कार्यक्रम के आगे बढ़ाब जा गीत सुनब जा फिर मुलाकात हुई फिर से।

0: RM3 Radio.
1: अभी चर्चा करा जा भोजपुरी पर हाई के लड़का लोग के खास तौर पर कम उम्र के लड़का लोग के तो ये जो पुस्तक महात्मा गांधी संस्थान में तैयार हो बा एकर में एक दो कहानी भी बा सिंह और चूहा के कहानी साथ साथ में एक दो कविता एक दो एगो सुन ला जाए जा लड़का लोग के धला जब बताए खोजबा शरीर के अलग अलग अंग कोची है तो एक में एगो बा चलक हिले सुन सुन तक ऐसे होला सुन सुन सुन कान से सुन तई जब लड़का लोग के जब ई बोलबा दोहराए के तो लोग के बोलबा लोग के कान पकड़े के तो लोग जानी कि कान माने हमने के कान फिर बोलबा देख देख देख कुछ से देख संजू कुछ से देखबा आंख से देख देख देख देख आंख से देख बोल बोल बोल मुंह से बोल गिन गिन गिन कुछ से गिनबा उंगली से कैलकुलेटरी से नहीं गिन गिन गिन उंगली से गिन दे दे दे हाथ से दे चल चल चल गोर से चल तो ई सब लड़का लोग जानी गोर को छी है हाथ को छी है उंगली को छी है मुंह को छी है आंख को छी है नाक को छी है तो ऐसे लड़का लोग सकेंदा सीखे थे कविता बा ई पुस्तक में हयो में वो खेल के वो गीत बा हाथ ल हाथ द ई सकबा जा लड़का लोग की धला लोग के अलग अलग तीन चार गो लड़का लोग रही लोग के बुलबुल के हाथ लेके से हाथ ल हाथ द आवा घेरा बनावा आवा घेरा बनावा घेरा माने इसे गोल करके तो घेरा शब्द जान जी अंजा आवा घेरा बनाए बनावा नाच गावा खुशी मनावा हाथ खोला हाथ छोरा जोर जोर से ताली बजावा देखो खेल हो गल लड़का लोग की बोलबा आवा हाथ में हाथ आवा घेरा बनावा नाच गावा खुशी मनावा हाथ खेला हाथ खोला हाथ छोरा जोर जोर से ताली बजावा इसे अंके कुनल हिरीलाल के वो गीत याद चलाल ताली मार लड़का लोग खुशी रह लाए गीत ताली मार तो ई हमने याद चर्चा कर थी जा ई पुस्तक पर जो लड़का लोग खातिन बनावल गलबा भोजपुरी के एकर में चंगन मैंगन के गीत भी बाजाने ला चंगन मैंगन पानी भरे पानी नहीं बा भला

0: अब बाम्बू में डिग्री डाले पानी नहीं बा, चंगन मेंगन पानी भरे पानी नहीं बा।
1: धरोहर के सरोवर साप्ताहिक प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से, तो आओ भोजपुरी सीखा धरोहर के सरोवर संगे।

इंस्टीट्यूट देने से तैयार करल गल और जब हम के ई पुस्तक तैयार करल गल लैका लोग के त एकर में एक गीत शामिल करल गल ई इरादा से कि ई गीत आप लैका लोग के सुनई बजा एकर में ढेर कुछ सकी हुई धला लैका लोग के जे खुजत हुआ पानी के महत्व के प्रति सतर्क करके त है गीत वा सब सुनाए और खेल खेल में बहुत कुछ सकी हुई तम के धरोहर के सरोवर कार्यक्रम में भर सक कोशिश करब जाकि लैका लोग खातिर नौजवान लोग खातिर तनी तनी भोजपुरी से संबंधित बहुत कुछ अंते रहब जा त इसने महात्मा गांधी संस्थान में ई एगो पुस्तक तैयार करल गल बा मॉरिशस के भोजपुरी कविता संग्रह एन एंथ्रोपोलॉजी ऑफ भोजपुरी पोएम्स ऑफ मॉरिशस गैल हलाइकर में से एक दुगो कविता ले रहे जा आज भी एक दुगो कविता ले जा प्रसिद्ध कवि मॉरिशस के जो महात्मा गांधी संस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर रहलन डॉक्टर हेमराज सुंदर और जो हम के भोजपुरी पैनल में भी रहलन उनकर तीन गो कविता है पुस्तक में है कविता संग्रह में सुनिए जाए कविता कविता के शीर्षक है बोल बोल के भोजपुरी आली लोग को सब चिनवा बोले भोजपुरी आली लोग को सब चिनवा बोले भोजपुरी ना त उ लोग के दुकान ना चली ये तो सच बात बा आली लोग को दुगो चिनवा वो लोग भी भोजपुरी बोलत रंजा नहीं बोलते लोग के बुटीक नहीं चलत फ्रीमैन फ्री में सिखलक ई बोली फ्रीमैन नागांव के चर्चा करत हुन फ्रीमैन फ्री में सिखलक ई बोली जीरो से हीरो बनलन गा गा के गीत भोजपुरी माने पहले उकरा ढेर कोई नहीं जानत लन ई गीत जब गैलन तब बहुत ही लोकप्रिय होइलन डॉक्टर हेमराज सुंदर आगे लिखले हवन सोना रंभा हरी सब घूमलन जा देश परदेश गा गा के गीत भोजपुरी रेडियो टीवी हो या पॉलिटिकल रैली सब में सुने के मिलत बा भोजपुरी बोली बोल बोल के ही भोजपुरी बोली मिलल बा हमनी के आजादी बड़ी सुंदर कविता ई डॉक्टर हेमराज सुंदर लिखले हुवन ई कविता संग्रह में उनकर एगो और कविता बा तू कौन खेत के मूली चिनुआ बोले भोजपुरी मौला बोले भोजपुरी क्रिश्चियन बोले भोजपुरी हिंदू बोले भोजपुरी सबके सब बोले भोजपुरी तू काहे बोले ले नई भोजपुरी तू कौन खेत के मूली बहुत सुंदर बा और एगो एगो भोजपुरी शनिका डॉक्टर हेमराज सुंदर के भोजपुरी कविता सब कोई सुनलक न कोई थपरी बजेलक न कोई देलक दाद बांदर का जानी भला अदरक के स्वाद हेमराज सुंदर जी के लिखल ई तीन गो कविता और साथ में एगो शनिका त देखला कितना सुंदर सुंदर कविता बनेला भोजपुरी संगे भोजपुरी साहित्य ही के लेबा त मॉरिशस में ई बहुत ही लोकप्रिय बा वैसे हमनी के जो लैका लोग सर्टिफिकेट इन भोजपुरी स्टडीज करेलन जा या महात्मा गांधी संस्थान में वो लोग के दुगो मौजूल है एगो भोजपुरी साहित्य के इतिहास और एगो मॉरिशसीय भोजपुरी साहित्य कार्यक्रम के आगे बढ़ा जा

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: प्रेमेन नागा बहुत ही लोकप्रिय भोजपुरी गायक भोजपुरी में गीत गए हूँ बहुत बड़ा बात है लाली लाली कान प्लौतल सीमा में मकई भोजपुरी के वो खूबसूरती ई भी है जे उ दूसर शब्द के अपन शब्द बना लेवेला एकरा जैसे बोला से को पिजिन बोला जाए एकरा एगो धलब भाषा के जब वो खिचड़ी बनेला तो एक दुगो शब्द चलावेला इधर अब जैसे प्लौतल प्लौतल शब्द जनबे करेला प्लौतल बोला प्लांटे के और ई प्लांटे शब्द से निकलल बा टू प्लांट इन अंग्रेजी में एकरा बोला जा तो भोजपुरी प्लौतल बना दिलक दम्बोर दम्बोर दम्बोर दम्बोर

0: एगो बात बोल रहे कि मोताई के दम्बोर दम्बोर पीमा प्लौ तलबा भोजपुरी बतियानी परिकर में ऐसा ढेर शब्द बा जो क्रियोल भाषा से आल बा पर उकरा भोजपुरी में मिला दे ले जा यह इ भाषा के खूबसूरती और धरोहर के सरोवर कार्यक्रम में जन्मे करेला हमने भोजपुरी के कोनो न कोनो चीज देके आए ले जा तो लोग के वो कविता के रूप में हो वो कहानी के रूप में हो जैसे भी चला इ लगे हाथ एगो छोटा सुन भोजपुरी किस्सा सुन ले जा
1: RM3 Radio.
2: एगो देश में एगो राजा रहल उ राजा के सात गो रानी रहल धन दौलत बहुत रहल ओकर एको बाल बच्चा नहीं रहल त जब आवे दान देवे सब भिकमंगा लोग के बात बोली दान दे के का करब हमरा सात गो रानी बा एको बाल बच्चा नहीं बा भीख मंगवा लोग के बड़ी चोट लगल ओकर दिल दुखागल हमनी गरीब दुखिया आदमी भीख मांग के जिही लास तब ओ भीख मंगवा वन में गल साधु के खोजे जब साधु सुनलक बात ऐसे बा कौन दिशा में ओ रजुआ बा हम रजुआ के जाय भेंट करे तब साधु आल आके जय मनैलक सब रानी लोग निकलल तब राजा के बोलन स उ आल बा ओकरा दान देवे के साधु के बाद बोले लगल कि हमरा घर में बाल बच्चा नहीं बा हम दान देके कौन ची करब तब साधु बोललक नहीं तर कासे हुआ कोनो चिंता के बात नहीं बा बाल बच्चा होई तब बोललक जा तोहर बगीचा में एगो गाछी बा आम फरल बा जा अमवा तोड़ के ले अन्य राजा जा के अमवा तोड़ के अनलक तब साधु बोललक है अमवा ले के सातो रानी के दे के कि उ बाट के खा ले सातो रानी के आम मिलल खाए की ई में छ गो रानी निमन से अमवा खैलन स अपन में बाट लेलन स छोटकी रानी के नई मिलल तब पूछलक अमुआ कहाँ बा उ लोग बोलन सा हमनी खा लेली सा लापो फेकल बा घूरा में गांव में सर्द के मौसम में आग जलावे खातिर इकट्ठा करल गल खर पत्ता सालते छोटकी रानी जाके घूरा में से उठा के बैठ के उ लापो खैलक अब साधु बाबा ता चल गल इतना बोल के अब नई आवब तोहर महल संतान चल आए त अब भारी गोर से हो गल छोटकी रानी राजा दूर में काम काज करेला राजपात चलावेला अब सोना के और चांदी के घंटी टंगावल गल और बजावल गल जमे जब बाबा होई त दौड़ल आए राजा हकासल प्यासल दौड़ल आए राजा कि हमर रानी के बाबा होई तब उनकर छो रनिया बहुत दुख देवे लगलन सा छोटकी रानी पूछलक कि बाबा कैसे होई उ लोग बोलन सा कि ओखरी मुसर में मुरिया ढुकैब त बाबा हो जाए छोटकी रानी के तब एगो बेटा और बेटी होल ई छो गो रानी लड़कवन के मरमिट में भर के ले जा के घूरा में फेंक दिलन सा त एगो ईंट एगो पत्थर उठा के रमास के आन के लपेट के रख दिलन सा और घंटा बजा दिलन सा अब घंटा बजल राजा दौरल आए तब बोलन सा तोहर रानी छोटकी रानी के एगो ईट पत्थर होल बा तब राजा बोले उफ ईट पत्थर होल बा ओकर सब बार मुंडली कर द और ओके विदा कर द चिराई लखेदे के धान कारो में होइजे मरई में रही तब छोटकी रानी कौवा हकनी बन गल चिराई के लेखा दे और होजे खाई हुई के ले जा के देवत रहलन सा तब एगो कुम्हार और कुम्हारिन अइलन सा माटी खोने माटी खोदलन सा त देखत वन सा दू गो लड़का घूरा में रोवता

उठा पुठा के ले गयलन स तब पोसे लगलन स माँ बाप उ लोग हो गयलन स कुम्हार और कुम्हारिन पोसते पोसते धरल होइलन स सात आठ नौ बरिस अब सीमा में खेलत होवन स लैकवन तब सीमा पर है छो गो रानी लोग पासे होत रहलन स तब छोकरिया बोललक सुपली मौनी चाउर फटके तब रनियन लोग गारी देलन स कि सुपली मौनी चाउर फटके कब तब लैकवन बोलन स तरानी के ईंट पत्थर बियाला उ लोग के ई बात बड़ी करा लगल जान गयलन स कि ई लोग छोटकी रानी के लैका हवन स तब अब जाके खटवास फटवास लेलन स न खात हवन स न पियत हवन स त अब राजा पूछता का भल कोनो चीज लेबा काहे नहीं खात हो जा हमनी नहीं चाही बोलन स हमनी नहीं चाही कुम्हार और कुम्हारिन लगे दू गो लैका बा ओकर करेजा निकाल के आन देबा त ओकर से नेहा के अच्छा हो जाब स तब राजा कुम्हार कुम्हारिन लगे सिपाही के भेजलन बोललक जल्दी से लैका लेके आय के तब लैका लेके अइलन स राजा बोललक हमरा चाही दुनो लैका तू लोग जा जा अब जल्लाद के बोललक जा ई लोग के लैकवन के मार के करेजा आन के छौ गोरानी के दे देवे के जल्लाद लोग लैकवन के लेके गयलन स जान मारे दूर नय ले गयलन स जहाँ राजा के तखत बा सामना सामने में जान मारे के जमे लौकी कहाँ मार के तोपल गयल बा तब एगो बाएं औरु एगो दाएं और लैकवन के सुतैलन स त दोनों के जान मार के उ लोग के करेजा लियान के देलन स रानी लोग उ पानी से नहैलन स त राम राम कर के उठलन स छो रानी अच्छा हो गयलन स त अब हुआ जहाँ लैकवन के गारल गयल बा दोनों एक एक गो फूल गयलन स अब हुआ जहाँ लैकवन के गारल गर रहल दोनों एक एक गो फूल हो गयलन स ऐसन महकता गमकता दूर ले रोज राजा आय ताके बैठी तब बहुत सुंदर फूल के गमक आवी सब सिपाही लोग के भेजलक खोजे के कि कहाँ से ई फूल के गमक आवता जाके तोड़ के आने के अब तुरे गयलन स अब गयलन स फूल तुरे तब फूलवा अब दोनों बतियाता

गांव के जितना आदमी बा सब के राजा बोललक फूल आने की, जे आनी आधा राजपात ओके दे देवब। तब सब कोई गांव में के फूल लोरे जाता। तब कुम्हार और कुम्हारिन गए।

राजा के ऐसे बुझाल कि ओकर गोर भीरी लगे अइलन स, जैसे बुझाता कि गोदी में लेलक लैकवन के त लैकवन उड़ गइलन स, तब चल गइलन स। तब राजा बोले, जा सिपाही लोग कौवा हकनी के बोला के आने के। तब कौवा हकनी बोले, काहे हमके बुलावत वन स। त राजा बोले, बा तोहरा हाली से आवे के। तब राजा लगे गल। त राजा ओके बोललक, तोहरा हाली से आवे के जा फूलवा लोरे, फूलवा गमता, फूलवा लोर के ले आना। अब गल कौवा हकनी फूल लोरे।

दारे पाते अपन माँ के गोदी में समा गयलन स। तब हौजे से राजा बंबू कनात तनैलक अपन घर महल तक ले। सभा लोगन अयलक, सब आलम जुट गए और देखलक। अब सात परात के तवा बंधाल उ लोग के माँ के छाती पर कि ओकरे लड़का होवन स कि नहीं। नहीं होय त जानाई, उ होय त छतिया परे ओकर दुधवा उ तवा के पेड़ से कर के लड़कवन के मुंह में जाए। तब दुधवा उ पार कर के धनाधन लड़कवन पीलन स। तब राजा पतियाल कि ओकरे लड़का होवन स। तब कौवा हकनी अपन महल में गयल। तब राजा जल्लाद के बोलक, तब छओ रानी के बार मुंड के दही उझिल के घर में से निकाल देलक। साधु के देवल फल रहल, त छओ रानी मुआ दिलन स। त कहाँ मरी साधु जानता कि का होकी। जय राम जी की।

धरोहर के सरोवर कार्यक्रम सुनत हुआ जा महात्मा गांधी संस्थान और एमबीसी के मिलल जुलल सहयोग से तैयारी कार्यक्रम आज हमें अरविंद और साथ साथ में हमने के सहयोगी संजू साथ देवत हुआ न त भोजपुरी के ई प्रक्रिया में आज फिर से इतो लोग के हमने के जो स्वर्गीय दीमराला मोहित जी के पुस्तक बाग वो शब्द कोश तैयार कर ले हुआ हीरा मोती भोजपुरी हिंदी अंग्रेजी शब्द कोश एकर में से एक दुगो शब्द लुअब जा और आप जनब इस शब्द के अर्थ कौन सी है तो अ से ही शुरू कर ले जा अ तो एकर में एगो शब्द आलबा अंकलक अंकलक अंकलक यानी कलंक लगाए के दोषी ठहराए के एक्विजेशन कबो कोई बोले अंगना जात है शौचालय जाना शौचालय संजू कबू कोई बोली अंग्रता अंग्रता कौन सी अर्थ निकलेगा हमर गोर अंग्रता दुखाता हाँ दुखाता अंग्रता तो टू मच पेन दुखाता ई डॉक्टर लोग के इस शब्द चाहना बोले के डॉक्टर नर्स लोग के कहे कि कब हमी के दादा दादी लोग जालन जा कबू अस्पताल में डिस्पेंसरी में तब बोली रंजा ले हमार गोर अंग्रता बीता डॉक्टर बेटा जानी अंग्र तब न जानी कुछ करी नहीं तो जी नहीं जानी गोर कुछ तो कपार में लगी दवाई दे दे को कपार की तो जरूरी है ये सब जो भोजपुरी शब्द है डॉक्टर लोग के नर्स लोग के चहला जाने की अंग्रता ई सुन लो ही अंचितले में अंचितले में टूथ स्वीट हाँ अच्छा बोललक अंचितले में माने झट से एकाएक सडनली अंचितले में वो होता से निकल गल हाली से निकल गल अंगोरा अंगोरा यानी फायरबॉल फुटबॉल में कब बोल जाए ना कब एगो टीम एगो दूसर टीम के ऊपर पर चार पांच को गोल डालता तो बोल जा अंगोरा फेंकदबा अंगोरा फेंकदबा अंजोर अंजोर अंजोर शब्द जन भी कहला फजीर के बोला जा अंजोर होगल उजाला होगल लाइट अंजोरिया अंजोरिया चांद के जो प्रकाश बा मून लाइट अंजोरिया रात वो बोले जा ऐसा रात जहां पर चांद के ऊपर प्रकाश मिलेगा अंजोरिया अंटी अंटी यानी समाएगा विल इट एंटर एकर में और एक दो शब्द लेव जा अंटकल

अटक गल टू ब्लॉक या फिर अटक गल बुझ सक अटक गल ओकर गला में मच्छी के कंटा अटक गल मच्छी के कंटा मच्छी के कंटा हो कबे राजा कंटा हो जुन हाउ ए जो नहीं खा जला क्रियोली में क्या बोले जाओ करा हाँ ओकर पीकां मच्छी के पीकां मच्छी के कंटा गला में अटक गल फिर एगो और शब्द ले जा अनबन अनबन बा यानी दूजना में अनबन मान एक दूजा के बात नहीं मानत हो जा अन के बन अन के बन कोई के नाम हम अन के बन कब कोई इधर उधर बचियाला तो ओकर नाम डाल दिया जा अन के बन हम जानी ना एक जना के ओकर नाम अन के बन अभी सुनत हुई तो ओकरा नमस्ते बोल दिला प्यार से बोलन जा ओकरा प्यार से अंड भंड कर दिलक यानी तहस नहस अन भन या फिर ई भी बोला वो अन भन बचाता अनभन बचाता अनभन माने वो कोनो मतलब नहीं नॉनसेंस बचाता अनभन बचाता ई शब्द सुने अंदर अंदर ते देखो बोले जा घर के अंदर बाऊ तो आरो को अर्थ अंदर दूसर का अर्थ जाने ला अंदर एगो अंदर तहा जिसे घर के अंदर बा हाँ जी बाहर के उकर उका विलोम है अंदर और भोजपुरी में उगो अर्थ अंदर के अंदर महकता जब कोनो चीज सर जला तो कैसे महकेला अंदर अंदर महकेला अंदर हाँ दुर्गंध बैड स्मेल अवे और अंतराल अंतराल यानी मध्यांतर इंटरवल कोई बेला वो अंटी करता अंटी यानी जानबूझ के कुछ करता अंधरा अंधरा हाँ अंधरा एगो जो न जो कि नहीं रोकेला अंधार तो जन्म कहला अंधार जब रात के अंधकार होला तो अंधार अंधुआ अंधुआ हरबरी में होला हरबरी में होना टेक क्विकली अंधेरिया अंधेरिया अंधेरिया अंधेरिया लुग अर्थ व्यर्थ विदाउट रीजन या फिर अंधेरिया रात ऐसे अकज बकज अकज बकज एकरा एकरा दुगो अर्थ में कब्जा ले जे कोई बोली अकज बकज नहीं खाइए जो चीज आई खाते नहीं जाइए इधर उधर की चीजें अकज बकज या फिर भी कब्जा बोले अकज बकज बचाता तो वही नहीं था कुछ बचाता अकज बकज बचाता अगबका गई ले अगबका गई ले यानी नहीं जाना था कुछ हो नई आशा करत हल कि ओकर संगे ई हो तो अगबकागल तनिको नहीं जानता कुछ करी और वह अकेले दुकेले अकेले दुकेले अकेले दुकेले माने अपने अखा अखा अखा मॉरिशस जाने लंजा कि धरोहर के सरोवर कार्यक्रम के तैयार करे में हमने के संजू भाई सहायता देवे लंजा अखा होल अखियान अखियान निरखना टू एडमायर अगरम बगरम अगरम बगरम है हम सुन ले हैं चचा लोग के दादा लोग के शब्द के प्रयोग करे अगरम बगरम तरह तरह के अगरम बगरम के खाए के हजार खल बा अगरम बगरम के अगरम बगरम के बुला ले बा धला चौथारी में बोले बोले 20 जना आई तो ऊ एक 20 आदमी आन दिलक अगरम बगरम के लगे चला

अंग्रता यानी बहुत दुलार से बिगाड़ना, अंग्राता, अगमजानी, इधर कोई है अगमजानी, फोटेला जो नागे से बोले बोले हाई होई हाउ होई, अगमजानी, अगाड़ी अगाड़ी आगे आगे, अग्यालबा उ तो अग्यालबा आग उगलता, अग्यालबा माने टू बी एंग्री क्रोधित होना, अगोरे के अगोरे देखे के साथ बैठना, अटक गल ये बोली सा नहीं अटक गए, अट ये बहुत प्रयोग हुलवाई जब धला कुछ नहीं जान तो कोच करवा तो अट नहीं कर सीधे काम पे आओ, वो कर संगे अट नहीं कर लग, फिर अदब से यानी इज्जत से अदब से, अधीन में यानी वश में उकर अधीन में चलालबा, उ छोकरा उ छोकरी के अधीन में चलालबा, अंडर वन्स थंब, अन के कन बना देलक यानी उकरा बिगाड़ देलक। तेकरे संगे धरोहर के सरोवर कार्यक्रम के जा परी पूरा करब जा, सब कोई के धन्यवाद दुआ जा जितना कोई हम के कार्यक्रम सुनला जा और उ सीखला जा बहुत कुछ, हमने के सहयोगी संजू के धन्यवाद, फिर मिलब जाए गो नवा कार्यक्रम लेके धरोहर के सरोवर, तबले भोजपुरी बोलते रहिया, भोजपुरी सीखते रहिया। RM3 Radio.

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है विधिमा, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को नमस्कार। आज सुबह राष्ट्रसभा में एक संवेदनशील विषय पर चर्चा की गई, वो था विदेशी श्रम शक्ति और श्रमिकों की कमी। विपक्ष नेता जोली शोंगा द्वारा पेश किया गया PNQ विदेशी श्रमिकों की भर्ती को सुविधाजनक बनाने के लिए बचत उपायों पर केंद्रित रहा, ये सवाल श्रम मंत्री रिजाउद्दीन को संबोधित किया गया। विपक्ष ने ये जानना चाहा कि क्या सरकार ने इस नई फास्ट ट्रैक वर्क परमिट प्रणाली की घोषणा करने से पहले किसी प्रभाव अध्ययन का सहारा लिया था। अपने जवाब में रिजाउद्दीन ने बताया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड की फास्ट ट्रैक सेवा अभी शुरू नहीं हुई है। पहले प्रयास के विफल रहने के बाद 12 जून को एक नया टेंडर जारी किया गया है। मंत्री ने आगे कहा कि मॉरिशस में विदेशी श्रमिकों के सामाजिक आर्थिक प्रभाव पर अध्ययन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की विशेषज्ञता मांगी गई है। साल की शुरुआत से पुलिस ने पूरे देश पर 49 अभियान चलाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अवैध रूप से रह रहे 428 विदेशियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 400 को पहले ही स्वदेश वापस भेजा जा चुका है। श्रम मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अवैध रूप से विदेशी श्रमिकों को काम पर रखने के लिए किसी भी नियोक्ता पर मुकदमा नहीं चलाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान कानून मंत्रालय को प्रशासनिक दंड लगाने की अनुमति नहीं देता है और इसके लिए विधायी संशोधन की आवश्यकता होगी। इस समस्या से निपटने के लिए मंत्रालय ने अब वर्क परमिट के लिए किसी भी नए आवेदन या रिन्यूअल की जांच करने से इनकार कर दिया है, यदि नियोक्ता ने उन कम से कम 90% श्रमिकों की स्थिति को नियमित नहीं किया है जिनके परमिट की अवधि समाप्त हो चुकी है। मंत्री के अनुसार ये कदम पहले ही परिणाम देने लगा है, विशेष रूप से कपड़ा और निर्माण सेक्टरों में। परिवहन मंत्री ने अपने संबोधन में वाहन मालिकों द्वारा बहुप्रतीक्षित स्पष्टीकरण दिए हैं। उस्मान माउमेर ने स्पष्ट किया कि बजट में घोषित वार्षिक शुल्क केवल नई पर्सनलाइज्ड नंबर प्लेटों पर ही लागू होगा। और विदेश में अमेरिका और ईरान ने परमाणु निगरानी

0: ने सहित कई मुद्दों पर परस्पर विरोधी बयान दिए हैं, जबकि वार्ताकार 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौता करने के लिए जोर दे रहे हैं। अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि अंतिम समझौता होने के बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में टोल्स नहीं वसूल पाएगा। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई। थोड़ी देर में शोक समाचार। नंबर 20 शाटे दो स्ट्रीट थोंगबा पोर्ट लुई में 65 साल की 65 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती रागिनी रामलाल पैदाइशी नाम तिलक और जो नंदी नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज शाम 4 बजे उनके पति श्री देवलाल रामलाल के घर नंबर 20 शाटे दो स्ट्रीट थोंगबा पोर्ट लुई से उठाकर थोंगबा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन विस आफ्टरनून एट 4 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: बुधवार का दिन है, 24 तारीख जून महीना, और आज की चर्चा कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पर इस वक्त हम सीधे प्रसारित हो रहे हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बताते, MBC के तीसरे चैनल पर आप इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख पाएंगे और MBC के रेडियो मॉरिशस फेसबुक पेज पर भी आप इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण फॉलो कर पाएंगे। मैं हूँ रत्ना, आप पहुंची हूँ आज के इस कार्यक्रम को लेकर। आप सभी का हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में, जैसे कि हम सभी जानते हैं, ठंड ने बिल्कुल जोर पकड़ लिया है और ठंड के मौसम में बहुत सारी बीमारियों के साथ हम अपने शरीर के साथ अब बिल्कुल स्वस्थ रहने के लिए पूरी तरह से हम जूझते हैं। और इसी के समय हम टीकाकरण पर बहुत ज़्यादा बल देते हैं, बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, और स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए जाते हैं जहाँ पर टीकाकरण के लिए बहुत ही लोगों को प्रेरित किया जाता है। इसी पर आज का ये कार्यक्रम हम आधारित रखेंगे, कितने प्रकार के टीके होते हैं और किस बीमारी को कौन सा टीका लगना बहुत ही ज़रूरी है। इस पर आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर बसावन, डॉक्टर दाऊशंकर पांगे बसावन, जो हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। डॉक्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू।
0: और आज के इस कार्यक्रम में बिल्कुल हम बल देंगे टीकाकरण पर। तो टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है?
1: टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य लोगों को गंभीर और जानलेवा बीमारियों से बचाना है। टीके शरीर को पहले से तैयार कर देता है, और ताकि जब कोई वायरस आते हैं शरीर में या बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करते हैं
0: जी,
1: तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको जल्दी से पहचान कर उसका मुकाबला कर सकते हैं। इसी बीमारी होने का खतरा और उसी गंभीरता को दोनों कम करने के लिए
0: टीके लगाए जाते हैं। तो डॉक्टर जी, जब हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो इम्यून और टीकाकरण, ये दोनों, क्योंकि इम्यूनाइजेशन में भी हम टीकाकरण पर बल देते हैं, तो इम्यूनिटी और टीकाकरण, इसमें क्या संबंध है?
1: इम्यूनिटी शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली है।
0: अच्छा।
1: टीकाकरण इस इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है और शरीर को बीमारियों के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार करती है। इसीलिए टीकाकरण को इम्यूनिटी बढ़ाने का और एक सुरक्षित और प्रभावित माध्यम माना जाता है।
0: अच्छा।
1: मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक सोल्जर है, जब वो जंग पर जाते हैं, तो अगर वो खाली हाथ जाते हैं तो उसका मरने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो खाली हाथ हैं।
0: सही।
1: और लेकिन

अगर हम उसको तलवार देते हैं तो तलवार के साथ जब वो जाता है तो उसका मरने का चांस कम हो जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर में हमारे जो सोल्डियर हैं वो हमारे इम्यूनिटी हैं, और जो वैक्सीन है वो हमारे बॉडी

0: पूरी तरह से, और वो एक तरह से उसको कवच पहनाया कह सकते हैं कि हाँ। जिस तरह से वो तैयार कर रहा है ताकि हमारा शरीर उन बॉडीज के साथ लड़ सके।
1: हाँ।
0: बिल्कुल। और डॉक्टर जी, आजकल देखा गया है कि ऐसी बहुत सारी बीमारी है जो अब एग्जिस्ट नहीं करती, अब इरेडिकेट हो चुकी है, पर फिर भी उसके लिए टीकेकरण लगाए जाते हैं, यानी टीकेकरण के अभियान किए जाते हैं, तो इसका क्या क्या महत्व है?
1: जो बीमारी हैं हमारे देश में नहीं हो सकते हैं, पर अन्य देशों में हो सकता है, और जब अंतरराष्ट्रीय पर जाते हैं वहाँ पर ये बीमारी हो सकती है, तो कोई भी समय ये रोग ये बीमारी वापस आ सकती है, तो हमको ये सावधान रहना है। टीकाकरण करके हम इम्यूनिटी, यानी कि देश का इम्यूनिटी करते हैं,
0: मतलब तो, उनको सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश में है कि हाँ, वो अब हमारे कंट्री में फिर से ना आए। इसीलिए वो अभियान चलाए जाते हैं, और मतलब आपको वो टीके लगाना बहुत ज़रूरी, बहुत अनिवार्य हो जाता है। और जैसे हम कह सकते हैं कि हर वर्ष टीकाकरण लगाए जाते हैं, और जब बच्चों की बात आती है तो जन्म के समय 5 साल के बच्चों में कौन कौन से टीके लगवाने बहुत ही अनिवार्य हैं?
1: जन्म से लेकर 5 साल तक बच्चों में तरह वैक्सीन करते हैं, ओरल वैक्सीन है और वैक्सीन जो सुई
0: हाँ।
1: ये भी हैं, वो हैं BCG, हेपाटाइटिस बी, पोलियो, रोटा वायरस, न्यूमोकोकल मेजुला रूबेला, और बूस्टर वैक्सीन भी दिए जाते हैं। ये सब एक कैलेंडर से होता है, एक रिपोर्ट से होता है, जब बच्चे का एक कार्ड होता है, उस कार्ड में सभी वैक्सीन का कब कब करना है ये सब तैयार करके उसको
0: दिया जाता है,
1: इसके पेरेंट को दिया जाता है। तो फिर पेरेंट ये कार्ड लेकर जाते हैं जो डिस्पेंसरी हैं या सेंटर के पास जाते हैं
0: जी।
1: वहाँ पर अपने बच्चों का टीकाकरण करते हैं, और ज़रूरी है कि वो समय तक अच्छा, ये क्योंकि कुछ डोजेस हैं जो हम लगाते हैं, और फिर उसका बूस्टर डोज 3 महीने के बाद देना चाहिए या 2 साल के बाद, तो ये सब इस रिपोर्ट कार्ड में
0: दर्ज होता है,
1: दर्ज होता है।
0: अच्छा।
1: और जाकर कर देती हैं।
0: बिल्कुल। तो डॉक्टर जी, कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कोई बच्चों को बुखार आ जाता है, और जब वो टीकाकरण मतलब उनको उस दिन टीका लगाना है, उस दिन वे जाते हैं और उस दिन वो टीका नहीं लगा पाते, तो ऐसे में माता पिता को क्या करना चाहिए? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बुखार के समय टीके नहीं लगवाए जाते, तो अगर वो स्किप हो जाता है, जैसे आप बता रहे हो कि वो रिपोर्ट कार्ड के अनुसार ही वो लगाना चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि अगर वो डेट स्किप हो गई तो क्या करना चाहिए?
1: ये घबराने की बात नहीं है, जो माता पिता उसके बच्चों का टीकाकरण अच्छे समय पर नहीं किए तो क्या करना चाहिए? फिर से डिस्पेंसरी हैं, मेडिक्लिनिक हैं, जो भी हेल्थ सेंटर्स
0: जहाँ पर आप करते हैं अपना टीका जी
1: वहाँ पर जाइए और उनको बोलिए कि ये उसका ये इसीलिए ये रिपोर्ट कार्ड
0: रखना बहुत ज़रूरी है।
1: तो जब रिपोर्ट कार्ड डॉक्टर को देंगे तो वो देखेंगे कि कौन सी वैक्सीन नहीं हुआ है, किस वैक्सीन नहीं हुआ है, और रात्रापाज वैक्सीन करते हैं जो नहीं किया वो करेंगे, और इसके द्वारा बच्चों का कोई ये वैक्सीन कर सकते हैं बच्चों को, और इम्यूनिटी बढ़ाएगी जैसे
0: बिल्कुल। डॉक्टर जी, अभी थोड़ी देर पहले आप पोलियो की बात करें, तो पोलियो के बारे में हमें थोड़ा सा ज्यादा बताएं, पोलियो क्या है और इसे समाप्त करने का कैसे, मतलब इसका इतना महत्वपूर्ण, इतना बल क्यों दिया जा रहा है?

0: पोलियो एक वायरल बीमारी है जो परमानेंट पैरालिसिस का कारण है। टीकाकरण दुनिया भर में हम पोलियो के लिए करते हैं और ये पोलियो रोटरी क्लब जो सब देशों में है ये इसका एक एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। जब तक पोलियो पूरी तरह समाप्त नहीं होता तो रोटरी ने एक ऑफ लिया, जैसे जो भी हम
1: एक प्रण लिया मान लो, हाँ,
0: जो भी जैसे मैं रोटरी पंपलेमूस में हूँ और जो भी रोटरी क्लब है मॉरिशस में और अन्य देशों में
1: जी,
0: सब क्या करते हैं, एक फंड होता है, एक फंड होता है जो जहां हम पैसे रखते हैं,
1: एक फंड रेजिंग होता है,
0: फंड रेजिंग होता है और उसको पोलियो प्लस में डालते हैं। जब पोलियो प्लस में डालते हैं तो ये फंड ट्रिपल हो जाते हैं, जैसे कि 2-1। अगर हम 10 रुपया डालते हैं तो वो 30 रुपया हो जाएगा वैक्सीन बनाने में
1: मदद करेगा।
0: ये मदद करेगा और यहाँ जब हम पोलियो के देखते हैं तो पहले से लगभग 350,000 केसेस थे, अभी 125।
1: ये आप मॉरिशस के आंकड़े की बात बता रहे हैं या विश्व भर?
0: विश्व भर में।
1: अच्छा,
0: विश्व भर में जब हम देखते हैं चाइल्ड हेल्थ, तो विश्व भर में ये पोलियो एक तरह की बीमारी है कि सिर्फ 2 देशों में अभी एंडेमिक है।
1: अच्छा,
0: सारे पूरे
1: विश्व से ये
0: एराडिकेट हो गया।
1: ओके,
0: एराडिकेट हो गया।
1: हाँ हाँ।
0: और ये एराडिकेशन के बाद फिर भी पोलियो, देखो मॉरिशस में जब हम बच्चों के लिए बात कर रहे हैं उसका वैक्सीन, तो पोलियो वैक्सीन करते हैं, पोलियो एक ओरल वैक्सीन भी है।
1: अच्छा, जो मतलब ड्रॉप्स देते हैं
0: तो ये सब इम्यूनिटी देता है और पोलियो बचाने के लिए। तो आजकल 99% का मामला से कम हो गया है,
1: मतलब बहुत ही हद तक उसे कम समाप्त कर दिया गया है,
0: कम हो गया है ये सब एंड पोलियो नाउ रोटरी के माध्यम से किया गया है,
1: उनके सहयोग से, रोटरी क्लब जो काम कर रहा है स्पेशली पोलियो को खत्म करने का, जो उन्होंने प्रण लिया है। और ये विश्व भर में जितने भी रोटरी क्लब्स हैं ये सभी ओर उन्होंने इस अभियान को जारी रखा है। और जब हम पोलियो की बात करते हैं तो पोलियो के मामले में दुनिया में बहुत कम ये हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें बहुत ही ज़्यादा इसको सतर्क रहना है इस बात को लेकर। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि वो रिटर्न हो डॉक्टर जी, कभी ऐसा हो सकता है कि ये वापस आए?
0: जब तक दुनिया का आखिरी पोलियो मामला समाप्त नहीं होता
1: तब तक
0: चांस है कि ये वापस से फिर आए। तो अगर हम देखते हैं जो 2 देश में हैं वहाँ पॉवर्टी प्रॉब्लम्स हैं, जो पॉवर्टी का और जंग का प्रॉब्लम है, इसीलिए कठिन होता है। अभी ईरान का जंग हो रहे हैं
1: जी,
0: तो उसका चांस है उसका फैलने के लिए, क्योंकि जो जहां कम सैनिटरी है, कम
1: प्रिकॉशंस
0: हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो वहां पर ये फैल सकता है। और अगर वो फैल सकता है
1: तो फिर वो बढ़ भी सकता है,
0: बढ़ भी सकता है और अन्य दूसरे देशों में भी जा सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तरह से ये एक बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो हम कहते हैं ना कि अगर किसी को लग जाए तो उसे ठीक करना, पूरी तरह से ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल, नामुमकिन सा लगता है। और

0: इसीलिए रोटरी क्लब जो है वो बहुत मेहनत कर रहा है इसे पूरी तरह से जड़ से उखाड़ने के लिए। और जैसे डॉक्टर जी ने भी बताया कि अब केवल 1500 1,500,000 मामले पूरे विश्व भर में,
1: जैसे 100 वेंसैंक,
0: अच्छा यानी 125
1: है। हाँ, हाँ. अभी का स्टैटिस्टिक 3,50,000 से
0: घटकर
1: 125 हो गया है,
0: मतलब 1.5-1.75 लाख तक मामले अभी भी है। और इसे जड़ से मिटाने के लिए बहुत सारे ऐसे अभियान किए जा रहे हैं, पर जैसे डॉक्टर जी बता रहे हैं कि कुछ देश यानी लगभग 2 देश ऐसे हैं जहां पर ये पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सका है, और इसीलिए ये बिल्कुल एक गंभीर समस्या है। चलिए इसी के साथ, जैसे अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर जी बता रहे थे बिल्कुल जो हम पहले के समय में काटजोन या काट अभी तो काट और कौतूहूज मैं समझती हूँ जो बच्चों के कार्ड होते हैं जहाँ पर जो एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है जहाँ पर वैक्सीनेशन के सारे डेट्स को लिखा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बड़े हो गए अब तो वैक्सीनेशन लगाना नहीं है, पर डॉक्टर जी कई बार ऐसा होता है कि वो कार्ड यहाँ वहाँ अगर गुम जाए, क्या वो कार्ड को रखना और पूरी तरह से संभाल कर रखना बाई दी एंड तक वो अनिवार्य है, ज़रूरी है?
1: ये बहुत ज़रूरी है कार्ड का अच्छी तरह से रखना। क्यों ये कार्ड उसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये कार्ड में सारे रिकॉर्ड होते हैं, सारे वैक्सीन का रिकॉर्ड होते हैं
0: जी।
1: और देखो जब हम भविष्य जाते हैं पढ़ाई करने के लिए तो हमको भी ये वैक्सीन जो किया है ये सब वो पूछते हैं,
0: एक रिकॉर्ड होता है,
1: रिकॉर्ड होता है तो वो पूछते हैं अगर ये वैक्सीन किया। 2 तरह के होते हैं, एक बच्चों के लिए और दूसरे जो यात्रा पर जाते हैं, जो विदेश पर जाते हैं। तो हम देखते हैं जो कंट्री हैं, डिफरेंट कंट्री हैं, उसका डिफरेंट रिक्वायरमेंट है।
0: बिल्कुल
1: रिक्वायरमेंट हैं, जो जैसे एक कंट्री येलो फीवर हेपेटाइटिस बी, दूसरे कंट्री एक दूसरे बीमारी के लिए उसका इम्यूनिटी, क्योंकि वहाँ ये बीमारी है
0: इसीलिए उसके लिए एक एंटीकोर तैयार करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे डॉक्टर जी अभी तो हम बच्चों की बात कर रहे हैं, फिलहाल बच्चों में कई बार ऐसा होता है कि वैक्सीनेशन लगा देने के बाद हल्का सा बुखार आता है, हाथ में सूजन आ जाती है, क्या ये नॉर्मल है? और अगर ऐसी कोई समस्या होती है तो माता पिता को क्या करना चाहिए?
1: हल्का बुखार, इंजेक्शन वाले जगह पर दर्द होना, ये बात संकेत नहीं है, ये मामूली बात है, क्योंकि थोड़ा ये होता है। ये क्योंकि ये एक बात है कि शरीर एक रिएक्शन कर रहे हैं, ये देखे ये वहाँ पर एक फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, हमको उनको डिटेक्ट करना है। तो ये सब हमारे इम्यूनिटी काम करता है उसको चेक करने के लिए। तो जब चेक करते हैं तो वो बोलते हैं ओके, क्योंकि ये सब हमारे मेकानिज्म, हमारे होल बॉडी का मेकानिज्म है। जब हमको बुखार आती है एक साइन है, जैसे अभी के लिए हम चेक करते हैं कैसे हैं, पर अगर हम देखते हैं हमारे एंसेस्टर्स, ये उसका ट्रिगर था, ओके अभी के लिए ये बीमार है तो कुछ दवाई देना है। तो ये सब होता है, तो पेरेंट्स को
0: घबराने की कोई बात नहीं
1: है,
0: क्योंकि कई बार जैसे मान लीजिए जो पेरेंट्स पहली बार पेरेंट्स बने हैं या पहले बेबी के साथ, डेफिनेटली हर अभिभावक अभी हर माता पिता को ये टेंशन हो जाती है कि बच्चे को बुखार बहुत तेज हो चुका है, और खासकर वैक्सीनेशन के बाद कई बार ऐसे हो जाता है कि पैनिक वाली सिचुएशन आ जाती है कि अब इसमें क्या करना चाहिए। तो क्या डॉक्टर को दिखाना आवश्यक हो जाता है, या ऐसा कुछ, ऐसा कोई सिचुएशन जहाँ पर कोई वो पैनिक डेवलप ना हो?
1: यदि टीका लगाने के बाद बहुत तेज बुखार होते हैं, ओके तेज बुखार यानी कि लाओ 38
0: हाँ बिल्कुल 39-40 तक पहुंच जाता है जी, जाते

0: है, अगर वो सांस लेने से दिक्कत होता है, अगर गंभीर एलर्जी होता है, तो या ये तीनों मामले में
1: उसको
0: डॉक्टर को तुरंत जाकर दिखाना है, जो भी सबसे करीब है उसको जाकर देखना है, क्योंकि ये रिएक्शन जैसे सांस लेने से दिक्कत होता है, ये सब एक गंभीर अच्छा नहीं है। हमको देखना है कि क्या
1: रिएक्शन हुआ है, क्या प्रॉब्लम आई है। तो ये जो तीन बातें आपने बताई कि अगर कोई एलर्जी होती है, कोई सांस लेने में दिक्कत हो रही है और बुखार हद से ज़्यादा तेज़ है, तो बेशक ऐसे मामले में आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए लेते हैं एक गीत का ब्रेक, और आज हम टीकाकरण पर बात कर रहे हैं। जैसे अभी हमने बात की बच्चों के टीकाकरण के विषय में, अब हम बात करेंगे बड़े बुजुर्गों के टीकाकरण के विषय में। तो ज़रूर आप हमारा साथ दीजिए, आज की चर्चा कार्यक्रम को जारी रखते हैं एक गीत के बाद।

0: आज की चर्चा का कार्यक्रम आप सुन पा रहे हैं इस वक्त रेडियो मॉरिशस पर एमबीसी के तीसरे चैनल पर। इसका सीधा प्रसारण और एमबीसी के रेडियो मॉरिशस फेसबुक पेज पर भी आप इसे फॉलो कर पा रहे हैं। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। इस वक्त तकनीक पर हमारे साथ बने हुए हैं फैजान, साथ है हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट उरूसा और हमारी प्रोड्यूसर शीतल लुबिन। और इसी के साथ आज हम बात कर रहे हैं टीकाकरण पर। जी हाँ, टीकाकरण का अभियान बहुत ही हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इसे बहुत ही ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाता है, अवगत कराया जाता है। और इसी के साथ टीकाकरण कई सारे ऐसे केंद्रों में भी लगाया जाता है। और जब हम बच्चों की बात करते हैं, साथ ही साथ अभी बड़े बुज़ुर्गों की बात करते हैं, तो बड़े बुज़ुर्गों के लिए भी ये प्रावधान किया जाता है कि विंटर सीज़न आने से पहले, यानी बस ठंड शुरू होने से पहले टीकाकरण के लिए बहुत ही उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर जी से कि डॉक्टर, अभी जैसे वयस्क और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको टीका लगाना क्यों आवश्यक हो जाता है?
1: बस बड़े बुजुर्गों से क्यों बोलते हैं ना, समय के साथ साथ इम्यूनिटी भी कम हो सकती है। कुछ बीमारियों बुजुर्गों में अधिक गंभीर हो सकती हैं, इसीलिए उनके लिए भी कुछ टीका बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ये एंटी फ्लू वैक्सीन होते हैं,
0: एंटीग्रिप जिसे कहते हैं,
1: क्योंकि बुजुर्गों में कुछ कुछ बीमारी अधिक होती हैं, जैसे कि फ्लू होता है, तो इसीलिए एंटीग्रिप वैक्सीन कैंपेन जो मॉरिशस में हुआ वो मई और जून के
0: अंतराल में,
1: कुमोसमा लिवेया,
0: हाँ, जैसे शुरुआत में विंटर सीजन की शुरुआत में लगाया जाता है।
1: और बाकी वैक्सीन जो हैं वो इमरजेंसी रूप में देते हैं। तो हमको ये फ्लू वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन, टेटानस बूस्टर और कोविड-19 बूस्टर दे सकते हैं
0: जी।
1: पर ये डिपेंड करता है क्योंकि लोग एक साल में एक वैक्सीन करते हैं वो ठीक है,
0: बिल्कुल।
1: पर ज्यादा वैक्सीन करने से they don't like it।
0: तो और कई बुजुर्गों का ऐसा

0: टेटनस बूस्टर और COVID-19 बूस्टर दे सकते हैं
1: जी।
0: पर ये डिपेंड करता है क्योंकि लोग एक एक साल में एक वैक्सीन करते हैं वो ठीक है
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: पर ज्यादा वैक्सीन करने से वो नहीं they don't like it
1: तो और कई बुजुर्गों का ऐसा
0: इसमें हमको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये वैक्सीन क्या है
1: और क्यों लगाना चाहिए
0: ये सब जैसे एंटी फ्लू वैक्सीन जो हम देते हैं वो लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन है तो लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन जैसे हम पहले एक्सप्लेन किया हम ये बीमारी वायरस को लेते हैं उसके अंदर को न्यूट्रलाइज करके एक डोज में इंजेक्शन बनाते हैं ये इंजेक्शन हम शरीर में डालते हैं तो शरीर में ये वायरस एटेन्यूएटेड है तो इनएक्टिवेटेड है तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है मल्टीप्लेट नहीं कर सकता है तो जब ये वैक्सीन शरीर में डालते हैं हमारे सिस्टम इम्यूनिटी सिस्टम जैसे हमारे सोल्डियर
1: हाँ जी
0: वो जाता है और पहचान लेता है
1: डिटेक्ट कर लेता है
0: कि ये फॉरेन बॉडी हमारे लिए अच्छा नहीं है तो हमको उसको मारना है तो एंटीबॉडीज बनाते हैं जैसे सोल्जर का तलवार
1: बिल्कुल
0: तो इसके साथ जब हम देखते हैं तो ये इम्यूनिटी एंटीबॉडी जो बनाते हैं बॉडी में एक मेमोरी होता है मेमोरी इस सेल होता है जो जब ये बीमारी का असली बीमारी को हमें हो जाता है तो क्या होता है बॉडी ये वही बीमारी है ना जो
1: आया था
0: तो ये
1: तब उसे तैयार करता है मतलब शरीर को और मजबूत बना देता है
0: तो इससे जब हम बुजुर्गों के साथ ये एक्सप्लेन करते हैं ये क्या है जो हम दे रहे हैं तो फिर वो ज्यादा
1: उन्हें समझ में आता है और उसके लिए वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो डॉक्टर जी ये जो फ्लू का इंजेक्शन है या औंची ग्रिप का जो इंजेक्शन है वो किस उम्र वालों को ज्यादातर दिया जाता है मतलब जो जो बड़े बुजुर्ग हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं कि किस उम्र वालों को ये लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है
0: अगर हम देखते हैं तो मॉरीशस का मामा हर साल हम इन्फ्लुएंजा का कैंपेन करते हैं और कैंपेन से 60 एंड अबव
1: यानी जो 50-60 साल से ऊपर के जो है उनके लिए जरूरी है
0: उनके लिए
1: पर जो लोग 50 के और 60 के बीच में है क्या उन्हें भी लगाया जाता है ये?
0: हाँ जैसे कि प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट होते हैं वो भी जरूरी है क्योंकि बच्चे के लिए उसको प्रोटेक्शन मदर
1: और
0: बच्चे के लिए दोनों माँ और बच्चों के लिए दोनों उसका सुरक्षा होना है और जो भी डिजेबल भी हैं जो घूम फिर नहीं सकते हैं तो वो भी इम्यूनिटी उसका इम्यूनिटी कम होता है तो उसको भी टीकाकरण एंटी फ्लू वैक्सीन का जरूरी है
1: और ये जो डोजेज है मतलब एक बार जब आपने औंची ग्रिप का इंजेक्शन लगाया तो ये कितने समय के बाद उन्हें दोबारा से लगाना चाहिए
0: हम एक साल में एक बार करते हैं
1: अच्छा मतलब उसका कवर हो जाता है एक साल के लिए पूरा
0: क्योंकि अगर हम देखते हैं ये डिजीज को देखते हैं बीमारी को देखते हैं ये वायरस क्या होता है जब विंटर आता है विंटर का सीजन जुकाम का सीजन ना
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो इसीलिए विंटर के पहले मई और जून में हम टीकाकरण करते हैं जब टीकाकरण करते हैं हम बचते हैं बीमारी से पर हो भी सकता है पर उसका रिजल्ट कम है उसका जो शरीर फाइट करता है बीमारी को गंभीर नहीं बनाता है तो फ्लू वैक्सीन के लिए जब हम एक साल करते हैं तो नेक्स्ट साल मई और जून में ही होता है।
1: अच्छा।
0: क्योंकि ये वायरस क्या होते हैं, वो डिफरेंट तरह के स्ट्रेन में

0: इवॉल्व करते हैं. जैसे कि आज इस साल के वैक्सीन है, नेक्स्ट साल के डिफरेंट होगा.
1: मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वातावरण चेंज हो रहा है, तो उसमें वो
0: इवॉल्व करते हैं. तो सेम वैक्सीन नहीं है.
1: अच्छा, मतलब फिर हर बार अगला मतलब
0: लैबोरेटरी में काम करते हैं, जैसे ये वैक्सीन बनाते हैं
1: जी.
0: वो इवोल्यूशन, वायरस का इवोल्यूशन प्रेडिक्ट कर देखते हैं कि कैसे इवॉल्व करते हैं,
1: उसके अनुसार ही
0: उसके
1: वो अनुसार वैक्सीनेशन तैयार किया जाता
0: हाँ.
1: है. और जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे गर्भवती महिलाओं में भी टीका लगाया जाता है. वैसे देखा गया है कि गर्भवती महिलाओं को हर पाँचवें और आठवें या सातवें महीने में उन्हें टेटनस का भी इंजेक्शन लगाया जाता है, तो ये किसके लिए होता है, इसे लगाना क्यों ज़रूरी होता है?
0: ये माँ को बचाने के लिए और बच्चे को भी सुरक्षित रखने के लिए है. टेटानिस डिफ्टेरिया भी है और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी है.
1: अच्छा.
0: ये तीनों हम गर्भवती महिलाओं के लिए करते हैं. जब हम देखते हैं टेटानिस, जब हम हमको चोट लगता है तो टेटानिस वैक्सीन होता है जो भी डिस्पेंसरी है. और टेटानिस वैक्सीन 2 साल के लिए शरीर में अच्छा है, 2 साल का इम्यूनिटी देता है.
1: अच्छा, मतलब उसका डोज उतने दिनों तक आपके शरीर में एंटीकोर बना के रखता है.
0: और 2 साल के बाद जब चोट होते हैं तब उसको फिर से करना है. तो गर्भवती महिलाओं के ये टिटानस का ये डोज जो देता है वो उसको बचाने के लिए और बच्चों को
1: एक तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए शील्ड बनाकर रखता है. और जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप यात्रा के बारे में बता रहे थे, तो इस पर आप थोड़ा सा और हमें दे सकते हैं इन्फॉर्मेशन कि मतलब यात्रा पर जाने से पहले कई सारे लोग कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है, मुझे ये लगाना ज़रूरी नहीं है. तो अगर मान लीजिए अगर किसी ने इंजेक्शन ना लगाया या वैक्सीनेशन नहीं किया तो क्या सारी संभावनाएँ उत्पन्न हो सकती, क्या प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं?
0: ये निर्भर होता है कि किस देश में आप जा रहे हैं. कुछ देशों में येलो फीवर, हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी या टाइफाइड का टीकाकरण की आवश्यकता है.
1: अच्छा.
0: तो ये ओब्लिगेटरी है कुछ देशों में, क्योंकि वहां पर ये बीमारी है.
1: Okay.
0: तो जब हम वीज़ा लगाते हैं, ये सब करते हैं, वो बोलते हैं हमको कि ये वैक्सीन करना है. यात्रा से पहले डॉक्टर की सलाह लेना उचित है. मॉरिशस में ये प्रोसीजर वैक्सीनेशन सेंटर जो पोलवी में म्यूचुअल एड बिल्डिंग में होता है और क्लिनिक में जो प्राइवेट क्लिनिक होता है वो वहाँ भी पर जा सकते हैं. वहाँ पर जाइए उसको या उसको फोन करें, सलाह लीजिए कि आप किस देश में जा रहे हैं
1: कौन सा इंजेक्शन आपको लगाना चाहिए.
0: वो बताएंगे आपको कौन कौन सा इंजेक्शन लगाना है और कितने समय से कि पहले ये जाने के पहले कितने समय जाने के पहले से ये टीकाकरण करना है. मैं एक मेरा ओपिनियन, इन माय ओपिनियन, जाने के पहले लगभग 3-4 महीने से पहले या उससे अधिक फोन करिए. आप इंफॉर्मेशन ढूंढिए, ले लीजिए कि मैं इस देश में जा रहा हूँ या रही हूँ, तो मुझे कौन सी टीका लगाना चाहिए और क्या क्या उसका ये समय जो है, क्योंकि कुछ टीका एक हफ्ते के बाद काम करते हैं, एक हफ्ते के बाद सही है, कुछ टीका नहीं है, कुछ टीका दो डोज होना चाहिए.
1: अच्छा, मतलब एक

0: एक टीका नहीं, उसके कंप्लीट दो राउंड होने चाहिए, तब जाकर उसका असर शुरू होता है।
1: तब उसका असर बॉडी को, इम्यूनिटी को मजबूत कर देता है। जैसे हम जाते हैं विदेश, वहाँ पर जो भी हैं जो इस बीमारी के साथ हैं, तो हम इस जगह पर जाते हैं तो हमको पता नहीं है कहाँ ये बीमारी है, कहाँ नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: और जो देश हैं जो अंडर डेवलप्ड देश जो हैं, वहाँ जब हम जाते हैं तो बहुत सी ये जैसे हेपेटाइटिस ए भी बोला है, ये बहुत होता है जो
0: बड़ी मात्रा में पाया जाता है,
1: सैनिटेशन ये सब। तो हम होटल में रहते हैं
0: पर फिर भी
1: हम लोगों से मिलते हैं,
0: बिल्कुल उनका कांटेक्ट में है,
1: कांटेक्ट में है। तो अगर ये हेपेटाइटिस उसको मिलता है और वो कुछ उसका असर नहीं है, ये भी होता है कि कार्य
0: में हम
1: कार्य होते हैं, तो हम देखते हैं लोगों को वो कुछ सिम्टम नहीं है, कुछ बड़ बीमारी उसके साथ है, तो ये भी होता है। तो अगर हम इस
0: कांटेक्ट में आते हैं
1: तो हमको ये बीमारी हो सकता है,
0: लगने के चांसेस पूरे रहते हैं,
1: चांसेस। इसीलिए पहले बोलते हैं ना प्रिकॉशन,
0: जी बिल्कुल, हमें अपने आप को तैयार रखना है कि इस बीमारी से हमें बिल्कुल अगर कांटेक्ट में आते भी हैं तो वो बीमारी आपको असर नहीं करेगी। और डॉक्टर जी मान लीजिए, मतलब जब बाहर जाते हैं, यूजुअली जब हम टीकाकरण करवाते हैं बच्चों को, वैक्सीनेशन करवाते हैं, तो उसमें भी उम्र होती है कि एक सर्टन उम्र के मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको लगाना ज़रूरी नहीं है, पर एक सर्टन एज के बाद लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है?
1: ये क्यों होता है, क्योंकि बच्चे में जब छोटे हैं तो उसका कैंपेन जो जैसे रिपोर्ट कार्ड जैसे वो कुछ कुछ टीका लगाते हैं, तो इससे वो सब टीका करते हैं
0: जी,
1: उसका इम्यूनिटी होता है इस जो भी बीमारी है। और फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये डिफरेंट हैं, क्योंकि ये इम्यूनिटी जब हम बच्चे थे तो अभी से टिक नहीं,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो जब देखते हैं बड़े बड़े लोग में, तो वो कुछ जैसे येलो फीवर है, जैसे हेपेटाइटिस है, ये सब इम्यूनिटी बूस्टर देना चाहिए।
0: ओके।
1: जो हम बच्चे में वैक्सीनेशन की, जब हम बड़े हो जाते हैं तो
0: उसे ये बूस्ट करना है।
1: ये बूस्ट करने से क्या होता है, ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है।
0: सही बात।
1: क्योंकि हम जो विदेश जाते हैं तो वहाँ एक्सपोजर है,
0: बिल्कुल,
1: तो इस एक्सपोजर से हमको सावधान रहना है। तो सावधान रहने से क्या, प्रोटेक्शन होना चाहिए
0: क्योंकि आप कहीं पर भी जा सकते हो और ये सारी चीज़ें हैं वो दिखाई नहीं देती है आपको, कब कहाँ पर इसका असर हो जाए ये पता नहीं होता, इसीलिए आपको अपनी तरह से पूरी तैयारी दिखानी है। डॉक्टर जी मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि जब COVID-19 आया था, COVID-19 के बाद एक बहुत ही बड़ा अभियान चलाया गया था, कैंपेन्स चलाए गए थे टीकाकरण के लिए, और ये बहुत ज़रूरी था सभी के लिए, क्योंकि एक तरह से हम विश्व भर में एक ऐसे युद्ध से मतलब जूझ रहे थे जहां पर बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। पर हम कह सकते हैं कि COVID-19 के बाद वैक्सीनेशन पर जो इंसानों का जो विश्वास है वो थोड़ा डामाडोल हुआ, क्योंकि अब वैक्सीनेशन करवाने के लिए भी लोग बहुत सोचते हैं कि कहीं ये उसका दुष्प्रभाव उनके शरीर पर ना पड़े। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: कोविड के दौरान लोगों ने टीकों का महत्व समझा, क्योंकि ये कैंपेन जो हुआ वो मॉरिशस में सिर्फ नहीं,
0: पूरे दुनिया में, बिल्कुल।
1: साथ ही कुछ गलत जानकारियों से लोगों उसका उस पर डाउट किया। पर जब हम कोविड वैक्सीन को एक तरह से देखते हैं, वो जो साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे महिलाओं में उसका पीरियड डिसबैलेंस होते हैं, जो साइड इफेक्ट किया, इसी ये

0: ये वो घब
1: एक घबराहट,
0: घबराहट
1: बिल्कुल
0: होती
1: एक डर,
0: है, एक डर होते हैं। तो सही वैज्ञानिक जानकारी पहुंचना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब कोविड को देखते हैं तो वैक्सीन एक, जैसे कोविड हुआ 3 महीने के बाद वैक्सीन शुरू हो गई थी, तो अगर हम देखते हैं एक वैक्सीन को अच्छी तरह से तैयार करके ये सालों लग जाते हैं, पर हमारे पास वक्त टाइम नहीं
1: बिल्कुल
0: था,
1: बिल्कुल
0: तो इसीलिए कुछ कुछ साइड इफेक्ट हुए। पर ये मेरा सोच है कि अभी, क्योंकि ये वैक्सीन हम जो डेवलप जो वैज्ञानिकों डेवलप करते हैं
1: बिल्कुल
0: वो इवोल्यूशन के द्वारा है,
1: बिल्कुल
0: और कोविड एक ऐसा बीमारी थी कि वो जल्दी इवॉल्व कर रहा था।
1: बहुत ही जल्दी
0: एक
1: से
0: स्ट्रेन का वैक्सीन किया, दूसरे स्ट्रेन हो
1: इवॉल्व
0: गया,
1: हो गया बिल्कुल
0: इवॉल्व
1: एक
0: हो
1: एक हाँ
0: गया,
1: जी बिल्कुल
0: तो इसीलिए बहुत लोगों का जान चली गई इसके साथ, क्योंकि एक स्ट्रेन एक देश में था, एक दूसरे देश में दूसरा स्ट्रेन था, और हम टीकाकरण
1: और एक
0: करते
1: बिल्कुल
0: थे,
1: एक एक तरह से
0: तो
1: देखा जाए तो पैनिक का एक बहुत बड़ा सिचुएशन बना हुआ था
0: ये एक मिली मिलो था।
1: बिल्कुल
0: जैसे हम देखते हैं कोविड का ये एक मिली मिलो था, क्योंकि एक स्ट्रेन का वैक्सीन तैयार हुआ, दूसरे स्ट्रेन आ गया, और दूसरे स्ट्रेन
1: तैयार होते होते
0: तैयार
1: मतलब अब
0: होते
1: तीसरी या चौथी बार हम लोग को ये असर
0: हाँ,
1: तीसरी वेव चौथी वेव आती गई ऐसे ही
0: तो इसीलिए लोगों ये टीकाकरण पर विश्वास थोड़ा
1: थोड़ा सा डामाडोल हुआ बिल्कुल। मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी, आपसे कहना चाहूंगी कि हमारे जो श्रोता हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि टीकाकरण क्यों आवश्यक है, इस पर बल थोड़ा देते हुए आप हमारे श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: मेरा संदेश है कि टीकाकरण एक सुरक्षित, प्रभावित और जीवन बचाने का उपाय है ना? अपने बच्चों और परिवार के सभी सदस्यों को का टीकाकरण समय पर करवाइए। सही जानकारी पर भरोसा कीजिए और अफवाहों से बचाइए, क्योंकि गलत, जब हम टिकटॉक देखते हैं जो भी
1: जो गलत
0: है,
1: अफवाहें हैं उससे हमें बचना है
0: तो इससे हमें बचना है।
1: बिल्कुल
0: तो सही वैज्ञानिकों जो भी प्रोग्राम हैं, जहाँ डॉक्टर आते हैं, कुछ स्पीच करते हैं, वहाँ से जानकारी लेते हैं वैज्ञानिकों
1: और
0: से।
1: कई कई बार ऐसा होता है कि मन में आपके सवाल आए तो सही इंसान से आप वो सवाल पूछें, ऐसा ना हो कि आप जो जानकार व्यक्ति नहीं है आप उनसे सवाल पूछते हैं और आपको गलत
0: हाँ
1: धारणाओं से पाला पड़ता है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि जब कैंपेन्स चलाए जाते हैं या आपके सेंटरों में जब डॉक्टर्स आते हैं वर्कशॉप्स हैंडल करते हैं वहाँ पर आप जाकर ये सवाल पूछ सकते हैं, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो मैं समझती हूँ डॉक्टर उसका सही जवाब आपको दे सकते हैं। तो
0: और एक अंत में मैं बोलना चाहता हूँ,
1: जी
0: एक स्वस्थ मॉरिशस और एक स्वस्थ दुनिया के लिए हम सब मिलकर योगदान दें।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: टीका लगवाइए, सुरक्षित रहिए।
1: बहुत बड़ी बात कही डॉक्टर जी आपने, और बिल्कुल टीका आपके सुरक्षा के लिए बनाया गया है और बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो आए दिन बहुत मेहनत कर रहे हैं ऐसे टीके बनाने के लिए जिससे कि हम अपने शरीर को सुरक्षित रख सके और आने वाले जो बीमारी जो इवॉल्व होती जा रही है दिन ब दिन उसके लिए हम अपने शरीर को तैयार कर सके। तो इसके लिए डॉक्टर बसावन को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, साथ ही साथ हमारी तकनीक पर हमारा सहयोग दिया फैजान ने और साथ ही साथ उरुसा और शीतल लुबिन जो हमारी प्रोड्यूसर रही, साथ ही साथ हमारे जितने भी दर्शक जितने भी श्रोता इस वक्त टीवी और रेडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और बेशक आने वाले दिनों में ऐसे ही कार्यक्रमों को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।
2: आज की

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें विधिमा से आपको नमस्कार
1: नमस्कार परी सभी सुनने वालों को नमस्कार आज सुबह राष्ट्रसभा में एक संवेदनशील विषय पर चर्चा की गई वो था विदेशी श्रम शक्ति और श्रमिकों की कमी विपक्ष नेता जोली जोंगा द्वारा पेश किया गया पीएनक्यू विदेशी श्रमिकों की भर्ती को सुविधाजनक बनाने के लिए बजट कदमों पर केंद्रित रहा ये सवाल श्रम मंत्री रेसा उतिम को संबोधित किया गया विपक्ष ने ये जानना चाहा कि क्या सरकार ने इस नई फास्ट ट्रैक वर्क परमिट प्रणाली की घोषणा करने से पहले किसी प्रभाव अध्ययन का सहारा लिया था अपने जवाब में रेजा उतिम ने बताया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड की फर्स्ट ट्रैक सेवा अभी शुरू नहीं हुई है पहले प्रयास के विफल रहने के बाद 12 जून को एक नया टेंडर जारी किया गया है मंत्री ने आगे कहा कि मॉरिशस में विदेशी श्रमिकों के सामाजिक आर्थिक प्रभाव पर अध्ययन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की विशेषज्ञता मांगी गई है साल की शुरुआत से पुलिस ने पूरे देश पर 49 अभियान चलाए हैं जिसके परिणाम स्वरूप अवैध रूप से रह रहे 428 विदेशियों को गिरफ्तार किया गया है इनमें से 400 को पहले ही स्वदेश वापस भेजा जा चुका है श्रम मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अवैध रूप से विदेशी श्रमिकों को काम पर रखने के लिए किसी भी नियोक्ता पर मुकदमा नहीं चलाया गया है उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान कानून मंत्रालय को प्रशासनिक दंड लगाने की अनुमति नहीं देता है और इसके लिए विधायी संशोधन की आवश्यकता होगी परिवहन मंत्री ने अपने संबोधन में कल वाहन मालिकों द्वारा बहुप्रतीक्षित स्पष्टीकरण दिए उस्मान माउमेद ने स्पष्ट किया कि बजट में घोषित वार्षिक शुल्क केवल नई पर्सनलाइज नंबर प्लेटों पर ही लागू होगा और विदेश में चीन के आपातकालीन प्रबंधन अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि चीन में अत्यधिक मौसम की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं जो ऐतिहासिक पैटर्न को तोड़ रही हैं और बाढ़ नियंत्रण प्रयासों के लिए नई चुनौतियां पेश कर रही हैं विशेष रूप से उत्तरी क्षेत्रों में पूर्वानुमान बताते हैं कि इस साल मुख्य बाढ़ के मौसम के दौरान अत्यधिक मौसम की घटनाओं के औसत से अधिक रहने की संभावना है सोमवार रात से बुधवार तक

0: दक्षिण पश्चिमी चीन यांगसी नदी के दक्षिण के क्षेत्रों और दक्षिण चीन के पश्चिमी हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: Continuous music.

सो वेल दोस्तों, दिल से दिल मिलाने का वक्त तो आ गया है। RN3 रेडियो मनोरंजन में हूं परी आपके साथ, आपका पसंदीदा प्रोग्राम जहां पर लेकर आए हैं कुछ ब्यूटीफुल 90s के ट्रैक्स, कुछ गाने ऐसे जो याद दिलाते हैं 90s के उस दौर की। और दिन भर की थकान के बाद अब वापस आप जा रहे हैं शायद घर, या फिर इस वक्त घर से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहां कहीं से भी आपने ट्यून इन किया है, मिलने वाला है आपको खूबसूरत गानों का साथ। और उन्हीं गानों की लिस्ट में शामिल होता हुआ ये गाना कुमार सानू अनुराधा पौडवाल की आवाजें। फिल्म है सूर्यवंशम, एक गाना ऐसा जो बहुत ही प्यारा है, हमारे सभी दोस्तों के नाम जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं। चलिए दोपहर का ये वक्त बना रहे हैं खास विद सम ब्यूटीफुल मेलोडीज, परी का साथ शाम के 5 बजे तक।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: तो वो था जगजीत सिंह की आवाज़ में एक बहुत ही प्यारा सा गाना आप सभी के लिए. यहाँ पर 4:20 हो रहे हैं बुधवार की दोपहर, जहाँ पर म्यूज़िक बन रहा है आपका कंपेनियन. ड्राइव करते हुए या फिर आराम फरमाते हुए जहाँ कहीं से भी आपने ट्यून इन किया है, कुछ प्यारे गाने आपके लिए चलने वाले हैं. दिल से मिले दिल प्रोग्राम, मैं हूँ परी आपके साथ ठीक 5 तक निभाऊंगी आपका साथ. अभी के लिए उदित नारायण, अलका याग्निक की आवाज़ें, मन फिल्म का ये गाना आप सभी के लिए.

तो जी हाँ दोस्तों, दिल से तो दिल मिल गए हैं और इन गानों को सुनकर शायद आपके दिल भी थोड़े से आज ज्यादा धड़कने लगे हैं। जैसे हम कहते हैं म्यूजिक इज अ हीलर और म्यूजिक हमेशा हमारे जज्बातों को समझ ही जाता है। चाहे आपका मूड कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन गुड म्यूजिक हमेशा मूड को सेट कर ही देता है। मे बी इट हैज बीन अ डिफिकल्ट डे आपके लिए, या फिर आज मूड कुछ ऐसे ही ठीक नहीं है, लेकिन व्हेन यू हियर अ गुड ट्रैक, एक गुड सॉन्ग, तो लगता है कि बस सब कुछ ठीक ठाक है। लाइफ में गुनगुनाते रहना चाहिए दोस्तों, बिकॉज जिंदगी तो मिलती है एक बार। अभी के लिए तो ये गाना आप सभी के लिए जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं, शान की आवाज़ और जितने भी हमारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, मैं हूँ परी आपके साथ ऑन रेडियो मनोरंजन। दिल से मिले दिल प्रोग्राम आपके लिए अभी से लेकर शाम के 5 बजे तक।

और चलिए दोस्तों, इस अगले गीत के साथ वक्त हो चला है कि मैं पहरी लूँ आपसे अलविदा। और जाती जाती रेखा जी यहाँ पर हमारा साथ दे रही हैं, डेडिकेटिंग गाना फोबेरा अंश पोबोंजे से हमारा साथ दे रहे हैं आप, और साथ देने के लिए शुक्रिया। अगला गाना और इसी गाने के साथ मैं आपसे लूँगी विदा। मुलाकात होगी जल्द आपकी और मेरी ऑन द वेव्स ऑफ RM3 रेडियो मनोरंजन। तब तक के लिए ये गाना आपके नाम और आपकी और रेडियो मनोरंजन की दोस्ती के नाम।

0: यस्मिन् देशे न सम्मानु न वृत्तिर्न च बांधवाः न च विद्यागमोऽप्यस्ति वासस्तत्र न कारयेत्। अर्थात जिस देश में सम्मान न हो, जहाँ कोई आजीविका न मिले, जहाँ अपना कोई भाई बंधु न रहता हो और जहाँ विद्या अध्ययन संभव न हो, ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। कहने का यह तात्पर्य है कि यदि जहाँ हम निवास कर रहे हैं वहाँ की स्थिति अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी हो जाए तो वहाँ पर सम्मान और न्याय की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहाँ हमें धनार्जन के लिए नौकरी न मिले और जहाँ पर हमारे अपने सगे संबंधी न हो या कोई हितैषी न हो या फिर शिक्षा या विद्या प्राप्ति का कोई माध्यम या साधन न हो, ऐसी जगह को अनुचित मानकर तुरंत उसे छोड़ देना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, एक बार फिर अनकही एक कहानी नामक कार्यक्रम में विश्वानंद आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। अपनी स्वरचित कहानी लेकर प्रोफेसर राजशेखर भी हमसे जुड़ गए हैं, उनका भी हृदय से अभिवादन करते हैं। तो देर न करते हुए चलिए सुनते हैं एक अनकही कहानी प्रोफेसर राज की जुबानी।
1: आपका हार्दिक आभार गुरु विश्वा। नमस्कार प्रिय श्रोतागण, रेडियो की इन मधुर तरंगों पर गुरु विश्वा के साथ मैं प्रोफेसर राज आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम अनकही एक कहानी में। भारत की धरती केवल ऋषियों, मुनियों और महापुरुषों की जन्मभूमि ही नहीं रही है, बल्कि यह ऐसे महान चिंतकों की कर्मभूमि भी रही है जिन्होंने अपने ज्ञान और दूरदर्शिता से इतिहास की दिशा बदल दी। ऐसे ही एक महान व्यक्ति थे आचार्य चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। वे केवल एक शिक्षक या राजनीतिज्ञ नहीं थे, बल्कि राष्ट्र निर्माण के महान शिल्पी थे। कहा जाता है कि जब उन्होंने मगध के नंद शासक के अत्याचार, अन्याय और अहंकार को देखा तो उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक इस अन्यायी शासन का अंत नहीं होगा तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। अपने अदम्य साहस, तीक्ष्ण बुद्धि और अटूट संकल्प के बल पर उन्होंने एक साधारण

0: कारण बालक चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया और उसे भारत का सम्राट बनाकर एक सशक्त और संगठित साम्राज्य की स्थापना की। हाँ श्रोतागण, आज की हमारी अनकही कहानी आचार्य चाणक्य के जीवन और उनके अद्भुत संकल्प की है। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि ज्ञानवान व्यक्ति की शक्ति उसकी तलवार में नहीं बल्कि उसकी दूरदृष्टि, नीति और धैर्य में निहित होती है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज अनकही एक कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक शिक्षक ने अपने संकल्प और राष्ट्र प्रेम के बल पर इतिहास को बदल दिया। तो कहानी इस प्रकार शुरू होती है। मगध का एक छोटा सा गांव कुसुमपुर, फूस की एक जर्जर झोपड़ी के बाहर विद्वान ब्राह्मण चाणक्य और एक सिद्ध ज्योतिषी महात्मा बैठे हैं। पास ही बालक विष्णुगुप्त, जो बाद में चाणक्य कहलाता है, खेल रहा है। वह जैसे ही हंसता है उसके मुख में जन्म से निकले दो अग्रदंत चमक उठते हैं। साधु उसके चेहरे को देखकर चौंक जाते हैं और विस्मय और अचरज से वे बोल पड़ते हैं, हे ब्राह्मण चाणक्य, इस बालक के मुख को ध्यान से देखो। इसके मुख में जन्म से विद्यमान ये दांत और इसकी हस्तरेखाएं कोई साधारण योग नहीं है। यह कोई सामान्य बालक नहीं मालूम पड़ता है। साधु की बात सुनकर चाणक्य के पिता चाणक्य हाथ जोड़कर संकोचवश बोल पड़ते हैं,
1: महात्मा, मैं तो एक दरिद्र और संतोषी ब्राह्मण हूं। आप इस अबोध के मुखमंडल में ऐसा क्या देख रहे हैं जो आपके चेहरे पर इतना विस्मय है?
0: चाणक्य की बात सुनकर साधु गंभीर हो जाते हैं और फिर ओजस्वी स्वर में कहते हैं, चाणक्य, विधाता का लेख सुनो। तुम्हारा यह पुत्र बड़ा होकर एक विशाल साम्राज्य का अधिपति बनेगा। इसके कदमों में अखंड भूमि का राज वैभव होगा। यह राजा बनेगा, चाणक्य, राजा चाणक्य। साधु के जाने के बाद चाणक्य का चेहरा प्रसन्न होने के बजाय गहरे भय और चिंता से घिर जाता है। वे कुटिया में व्याकुलता से टहलने लगते हैं और स्वयं ही अपने ही मन भयभीत स्वर में वे कहते हैं,
1: नहीं, यह भविष्यवाणी मेरे कुल के लिए विनाशकारी है। यदि मगध के क्रूर और विलासी राजा घनानंद को इस बात की भनक भी लग गई तो वह मेरे बालक को जीवित नहीं छोड़ेगा। सत्ता के लोभ में राजा किसी का सगा नहीं होता।
0: ममता और भय के वशीभूत होकर चाणक्य तुरंत आगे बढ़ते हैं और पास पड़ा एक पत्थर उठाकर बालक विष्णुगुप्त के वे दोनों जन्मजात दांत तोड़ देते हैं। बालक दर्द से रो पड़ता है। तभी वहां पर वही साधु पुनः आता है और यह देखकर अस्तब्ध रह जाता है। क्रोध से फिर भविष्यवाणी करता है, यह तुमने क्या अनर्थ किया चाणक्य? तुमने भयवश इसके दांत तो तोड़ दिए पर इसके भाग्य की शिरोरेखा तुम नहीं बदल सकते। तुमने इसे राजा बनने से तो रोक दिया, परंतु अब यह राजाओं का राजा, राज निर्माता बनेगा। यह स्वयं सिंहासन पर नहीं बैठेगा बल्कि सम्राटों को अपनी उंगलियों पर नचाएगा। चाणक्य विधाता के इस खेल को समझकर स्तब्ध रह जाते हैं और बालक अश्रु पोंछते हुए दृढ़ता से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से क्षितिज की ओर देखने लगता है। समय बीतता जाता है और एक दिन पाटलिपुत्र का भव्य राज दरबार सजा है। चारों ओर विलासिता का माहौल है। मगध सम्राट घनानंद मदिरा के नशे में चूर हैं।

तभी तक्षशिला के प्रखर आचार्य चाणक्य, जो अब बड़े हट्टे कट्ठे और जवान हो गए हैं, राष्ट्र रक्षा की चिंता लिए दानशाला के प्रधान आसन पर आकर बैठ जाते हैं।

0: है। ठहरो, इस कुरूप सांवले और बदसूरत ब्राह्मण को हमारे इस प्रतिष्ठित दान आसन पर बैठने का दुस्साहस किसने दिया? ये दरिद्र भिक्षुक, तुरंत खड़ा हो और हमारी आंखों के सामने से दूर हो जा। घनानंद की बात सुनकर चाणक अत्यंत शांत हैं, परंतु उनके चेहरे की चमक फीकी नहीं पड़ी है। वे ओजस्वी स्वर में घनानंद को संबोधित करते हुए कहते हैं,
1: राजन, राजा का सम्मान उसके रूप या वस्त्रों से नहीं, बल्कि उसके न्याय और प्रजापालक होने से होता है। मैं यहां भिक्षा मांगने नहीं, बल्कि तक्षशिला के आचार्य के रूप में तुम्हें यह राष्ट्र चेतावनी देने आया हूं कि पश्चिम से यवन आक्रांता सिकंदर भारत की सीमाओं की ओर बढ़ रहा है। अपनी विलासिता त्यागो और संपूर्ण आर्यावर्त की रक्षा के लिए जागृत हो जाओ। राजन, जागृत हो जाओ।
0: चाणक्य की सलाह सुनकर घनानंद क्रोध से कांपने लगता है और सिंहासन से उठकर चिल्ला पड़ता है, मूर्ख ब्राह्मण, तू एक अदनासा भिक्षुक होकर मगध के सम्राट को उपदेश देता है? तेरी इतनी धृष्टता! सैनिकों, इसकी शिखा पकड़कर इसे घसीटते हुए महल से बाहर फेंक दो, यही मेरा आदेश है। और ध्यान रखो, आगे से यह काला ब्राह्मण मुझे कभी ना दिखे। क्रूर सैनिक आगे बढ़ते हैं और वे सैनिक भला घनानंद जैसे क्रूर राजा की आज्ञा को कैसे टाल सकते थे? वह सैनिक चाणक्य को धक्का देता है। इस आपाधापी में चाणक्य की शिखा खुल जाती है और बाल बिखर जाते हैं। वहां पर उपस्थित पूरा दरबार सन्नाटे में डूब जाता है। चाणक्य की आंखों से क्रोध की ज्वाला फूट पड़ती है। अपनी खुली शिखा को हवा में लहराते हुए, सिंह की तरह गर्जना करते हुए, घनानंद की ओर उंगली करते हुए चाणक्य चेतावनी भरे स्वर में कहता है,
1: घनानंद सुन, तूने अपनी सत्ता के अहंकार में केवल एक शिक्षक का नहीं, बल्कि संपूर्ण जान और राष्ट्र अस्मिता का अपमान किया है। याद रख, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। मैं विष्णुगुप्त आज इस भरी सभा में प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक तेरे इस दंभी और अत्याचारी नंद वंश का समूल नाश करके मगध की भूमि को मुक्त नहीं कर दूंगा, तब तक अपनी शिखा में गांठ नहीं बांधूंगा।
0: और इस प्रतिज्ञा के साथ चाणक्य तीव्र कदमों से राजसभा से बाहर निकल जाते हैं और घनानंद भय और क्रोध के मिले जुले सन्नाटे में उन्हें देखता रह जाता है।

0: प्रिय श्रोतागण, फिर चाणक्य के जीवन की कहानी उतार चढ़ाव के साथ इस प्रकार आगे बढ़ती है। घनानंद के अपमान के बाद और कठिन परिस्थितियों में एक दिन विंध्याचल के घने जंगल में तक्षशिला से निकले आचार्य चाणक्य गहरे विचार में डूबे जा रहे हैं। तभी उनकी दृष्टि कुछ चरवाहे बालकों पर पड़ती है, जो राजकीलम अर्थात राजा का खेल खेल रहे हैं। एक 12 वर्ष का तेजस्वी बालक पत्थरों के ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठा है और पूरी न्यायप्रियता और निडरता से अन्य बालकों की विवाद सुलझा रहा है। अचानक चाणक्य की आंखें उन पर पड़ती हैं और चाणक्य अपने अनुभव से भांप लेता है कि कहीं यही बालक तो इस अखंड भारत का भविष्य तो नहीं है, और स्वयं से अंदर ही अंदर अपनी एक मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए कह उठता है,
1: अद्भुत, इस बालक की आंखों में एक न्यायप्रिय सम्राट बनने का तेज है। इसके हाव भाव और निर्णय लेने की क्षमता साधारण नहीं है। यही बालक मगध का भाग्य बदलेगा और नंदवंश का अंत करेगा।
0: और यह सोचकर चाणक्य उस बालक के पास जाते हैं। बालक उन्हें देखकर तुरंत अपने पत्थर के सिंहासन से उतरता है और आचार्य को आदर पूर्वक अपना शीश झुकाते हुए नमस्कार करता है। और वह बालक कहता है, प्रणाम आचार्य, मेरा नाम चंद्रगुप्त है। आपकी वेशभूषा और आंखों की गंभीरता बताती है कि आप किसी महान मार्ग की खोज में हैं। क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं आचार्य?
1: हां चंद्रगुप्त, मैं इस त्रस्त राष्ट्र के लिए एक योग्य भाग्य विधाता की खोज में हूं। मुझे बताओ, यदि तुम्हें किसी अत्यंत शक्तिशाली और विषैले शत्रु को सदा के लिए समाप्त करना हो तो तुम क्या करोगी?
0: चाणक्य की गंभीर बातों को सुनकर चंद्रगुप्त स्वयं सोच में पड़ जाता है कि आचार्य मुझसे किस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन उसे एहसास होता है कि आचार्य की बातें बहुत गंभीर हैं। तुरंत वह वीरता से अपनी लकड़ी की तलवार उठाते हुए कहता है, आचार्य, मैं अपनी तलवार उठाऊंगा और शत्रु के अहंकार की सारी टहनियां और पत्ते काट दूंगा। चंद्रगुप्त की बात सुनकर चाणक्य हंसने लगते हैं और पास खड़े एक कटीली झाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं,
1: नहीं चंद्रगुप्त, यही तुम्हारी आयु की भूल है। तलवार से कटी टहनियां कुछ समय बाद दोबारा उग आती है। मेरी कूट नीति का मूल पाठ सुनो। यदि किसी विषैले पेड़ को समूल नष्ट करना हो तो उसकी टहनियां मत काटो, बल्कि उसकी जड़ में मट्ठा अर्थात छाछ या मीठा डाल दो। मीठे कि लालच में चींटियां वहां आएंगी और उसकी जड़ को भीतर से खाकर खोखला कर देंगी, जिससे वह पेड़ स्वतः ही नष्ट हो जाएगा और कभी दोबारा फिर

0: सिर नहीं उठा पाएगा। इसी तरह शत्रु पर सीधा वार करने के बजाय उसकी शक्ति के स्रोतों अर्थात मित्रों, खजाने और आंतरिक व्यवस्था को अपनी कूटनीति से खोखला कर देना चाहिए। दुश्मन को हमेशा जड़ से समाप्त करना चाहिए चंद्रगुप्त, जड़ से समाप्त।
1: चाणक्य महान आचार्य, तक्षशिला का गुरु, एक गंभीर शिक्षक जो पूरे देश की दिशा को बदलना चाहता है। उनकी इतनी गंभीर बातें सुनकर चंद्रगुप्त विस्मय से और श्रद्धा से घुटनों के बल बैठ जाता है और अपना शीश झुकाते हुए कहता है, अद्भुत नीति आचार्य, अद्भुत, आज से आप ही मेरे गुरु हैं, मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। मैं अखंड भारत के निर्माण के लिए समर्पित हूँ आचार्य, समर्पित हूँ। मैं इस नंद के अन्यायी शासक का अंत करना चाहता हूँ। आप मुझे इसके लिए शिक्षित करें आचार्य, शिक्षित करें। समय का पहिया घूमता जाता है और समय के साथ साथ चंद्रगुप्त अब वीर योद्धा बन चुका है। पंजाब की सीमा में ब्यास नदी के तट पर एक गुप्त शिविर में आचार्य चाणक्य और युवा चंद्रगुप्त मौर्य कूटनीति का मानचित्र देख रहे हैं। बाहर यूनानी आक्रमणकर्ता सिकंदर की विशाल सेना की हलचल सुनाई दे रही है। चिंतित स्वर में चंद्रगुप्त आचार्य को संबोधित करते हुए कहते हैं, आचार्य, सिकंदर की विश्व विजेता सेना हमारी सीमाओं पर खड़ी है। मगध को मुक्त कराने से पहले हमें इस विदेशी संकट को टालना होगा, परंतु हमारी छोटी सी गुप्त सेना इस महासागर जैसी सेना का सामना कैसे करेगी आचार्य, कैसे करेगी? चाणक्य चंद्रगुप्त को चिंतित देखकर तीक्ष्ण और शांत मुस्कान के साथ नीति की बात करते हैं।
0: चंद्रगुप्त, तुम फिर भूल रहे हो, जहां शस्त्र काम न आए वहां शास्त्र और कूटनीति मार्ग प्रशस्त करती है। याद रखो, वृक्ष की जड़ वाली हमारी नीति। हम सिकंदर की सेना पर सीधा प्रहार नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जड़ों पर आघात करेंगे।
1: जड़ों पर आघात करेंगे आचार्य? वह कैसे आचार्य, कृपया हमें बताएं।
0: यवन सैनिक वर्षों से अपने घर से दूर है और थक चुके हैं। उनकी इसी कमजोरी को उनका भय बना दो। हमारे गुप्तचरों के माध्यम से यवन शिविरों में यह बात फैला दो कि भारत देवों की भूमि है और व्यास नदी को पार करने का प्रयास करने वाले सैनिकों पर देवताओं का भयंकर प्रकोप होता है। साथ ही उनके भोजन और जल स्रोतों में धीमा विष मिला दो, जिससे वे बीमार पड़ने लगे।
1: चाणक्य की बात और सलाह को चंद्रगुप्त स्वीकार करता है और गुरु की आज्ञा को वह सिकंदर के शिविर में पालन करता है। कूटनीति काम कर जाती है। कुछ समय बाद यवन सेना में हाहाकार मच जाता है। देवों के प्रकोप के डर और बीमारी से घबराकर सिकंदर के सैनिक ब्यास नदी पार करने से मना कर देते हैं और सिकंदर को पीछे हटना पड़ता है। गुरु की कूटनीति काम आने पर चंद्रगुप्त उत्साह से कह उठता है, अद्भुत आचार्य, अद्भुत, सिकंदर की सेना वापस लौट गई आचार्य। अब आर्यावर्त का एक बड़ा संकट टल गया है। अब आगे गुरुदेव क्या आज्ञा है?
0: रणनीति का पहला चरण पूरा हुआ चंद्रगुप्त, अब समय आ गया है

0: मगध की अत्याचारी जरों को हिलाने का। घनानंद की प्रजा उसके भारी करों से त्रस्त है। हम इस जन असंतोष को क्रांति की अग्नि में बदलेंगे। घनानंद के पूर्व आमात्य शक्तार को अपने साथ मिलाकर हम नंद साम्राज्य के खजाने और गुप्त सैन्य रहस्यों को भीतर से खोखला कर देंगे।
1: चंद्रगुप्त की सेना पाटलिपुत्र पर आक्रमण करती है। कूटनीति के कारण घनानंद के अपने ही लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। भीषण युद्ध में चंद्रगुप्त की तलवार घनानंद का अंत कर देती है। चाणक्य अपनी प्रतिज्ञा पूरी होने पर गर्व से अपनी खुली शिखा को देखते हैं और मंत्रोच्चार के साथ अपनी शिखा में पुनः गांठ बांधते हुए कहते हैं,
0: अधर्म का समूल नाश हुआ। मगध की भूमि आज अत्याचारी के रक्त से पवित्र और स्वतंत्र हुई।
1: घनानंद के अंत के बाद पाटलिपुत्र का मुख्य राज दरबार अब सजा हुआ है। चारों ओर मंगल शंखनाद हो रहा है, पुष्प वर्षा हो रही है। ऋषि मुनि, अमात्य और अपार प्रजाजन उपस्थित हैं। सिंहासन के समक्ष आचार्य चाणक्य और युवा चंद्रगुप्त खड़े हैं। चाणक्य वैदिक मंत्रोच्चार के साथ चंद्रगुप्त के मस्तक पर राज तिलक लगाते हैं और उसे अखंड भारत का सम्राट घोषित करते हैं। और वहां पर खड़ी प्रजा एक स्वर में हर्ष ध्वनि करते हुए कहती है, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जय, राष्ट्रगुरु आचार्य चाणक्य की जय। और सिंहासन पर बैठने से पूर्व आचार्य चाणक्य के चरण स्पर्श करते हुए अत्यंत विनम्र स्वर में चंद्रगुप्त कह उठता है, प्रणाम आचार्य, आज आपकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। यह विशाल मौर्य साम्राज्य और यह वैभवशाली सिंहासन केवल आपकी कूटनीति और मार्गदर्शन की देन है। अब आप मुझे राजा के परम कर्तव्य और प्रजा हित की नीति का उपदेश दें, ताकि मैं इस उत्तरदायित्व को न्यायपूर्वक निभा सकूं। राजसभा के मध्य आकर अपने गंभीर और ओजस्वी स्वर में संपूर्ण सभा को संबोधित करते हुए चाणक्य कहते हैं,
0: उठो सम्राट चंद्रगुप्त, सुनो। सिंहासन कोई भोग विलास की वस्तु नहीं, बल्कि कोटि कोटि प्रजा के संरक्षण का अत्यंत गुरुतर दायित्व है। मेरी इस मूल नीति को अपने हृदय में सदा के लिए अंकित कर लो। प्रजा सुखे सुखम राज्यः, प्रजानाम चहिते हितम्। आत्मप्रियम हितम् राज्यः, प्रजानाम तु प्रियम हितम्। अर्थात प्रजा के सुख में ही राजा का वास्तविक सुख निहित है और प्रजा के कल्याण में ही राजा का परम कल्याण है। राजा का अपना कोई व्यक्तिगत प्रिय या अप्रिय नहीं होना चाहिए। प्रजा को जो प्रिय लगे वही राजा के लिए सर्वोपरि हितकर है।
1: आचार्य चाणक्य के द्वारा प्रजा के हित में दिए गए उपदेश को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करते हुए चंद्रगुप्त कहता है, आचार्य, मैं इस नीति को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाऊंगा। राजकोष और न्याय व्यवस्था के विषय में आपका क्या आदेश है आचार्य?
0: सम्राट, राजकोष पर पहला अधिकार प्रजा का है। अकाल, महामारी या संकट के समय राजा को अपने अन्न भंडार प्रजा के लिए खोल देने चाहिए। न्याय करते समय राजा को निष्पक्ष और वज्र के समान कठोर होना चाहिए, परंतु अपनी निर्धन और असहाय प्रजा के प्रति माता के सम्मान समान कोमल होना चाहिए। याद रखना, जिस राज्य की प्रजा रोती है और दुखी रहती है

0: उस राजा का साम्राज्य बिना किसी युद्ध के ही स्वतः नष्ट हो जाता है, चंद्रगुप्त नष्ट हो जाता है।
1: प्रजा के हित के बारे में महत्वपूर्ण बात सुनकर चंद्रगुप्त उसे आत्मस्वीकार करता है और गौरवान्वित होकर दृढ़ता के साथ कहता है, मैं शपथ लेता हूँ आचार्य, मेरा हर श्वास और मौर्य साम्राज्य का यह राजकोष केवल प्रजा के हित और अखंड भारत की सुरक्षा के लिए समर्पित रहेगा। आचार्य चाणक्य संतोष की मुस्कान के साथ सम्राट को आशीर्वाद देते हैं और संपूर्ण राजदरबार जयकारों से गूंज उठता है।

0: धीरे धीरे चंद्रगुप्त का शासन और प्रशासन लोगों के हृदय में चाणक्य और चंद्रगुप्त के लिए प्यार उभार देता है। लोग अपने राजा और मंत्री को बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं। उनका युग स्वर्ण युग कहलाने लगता है। उस शासन और प्रशासन में कोई प्रजा निराश नहीं है, दुखी नहीं है, और लोक हिति सबका उद्देश्य है। लेकिन धीरे धीरे चंद्रगुप्त के जाने के बाद चंद्रगुप्त का प्रिय पुत्र बिंदुसार, वह भी सम्राट है, और उसके शासनकाल में आचार्य चाणक्य मुख्य परामर्शदाता है। लेकिन सुबंधु जैसा एक विद्वान भी मौर्य साम्राज्य के नए मंत्री बने हैं। राजकोष और कूटनीतिक नीतियों को लेकर दोनों के बीच प्रायः तीखी बहस चलती रहती है। हम सभी जानते हैं कि चाणक्य ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन अब चाणक्य बूढ़े हो गए हैं तो धीरे धीरे उनके विचारों को भी चुनौतियां मिलने लगी हैं, और यही कारण है कि मौर्य साम्राज्य का नया मंत्री सुबंधु उन्हें बार बार चुनौतियां देता है। सुबंधु के चेहरे पर सत्ता का अहंकार और ईर्ष्या साफ दिखाई देता है। अहंकार और ऊंचे स्वर में सुबंधु आचार्य को संबोधित करते हुए कहता है, आचार्य, अब चंद्रगुप्त मौर्य का युग बीत चुका है। सम्राट बिंदुसार को अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए साम दाम दंड भेद के साथ साथ क्रूरता का भी सहारा लेना होगा। यदि प्रजा या पड़ोसी राज कर देने में विलंब करें तो उनके गांवों को फूंक देना ही मेरी नीति है। भय से ही शासन चलता है आचार्य, आपकी घिसी पीटी नीतियों से नहीं। सुबंधु की अहंकार भरी बात सुनकर चाणक्य शांत हैं, लेकिन अत्यंत धीर और तीक्ष्ण स्वर में भी वे अपनी बूढ़ी आवाज में कहते हैं,
1: सुबंधु, तुम जिसे नीति कह रहे हो वह नीति नहीं बल्कि विनाश का आमंत्रण है। भय से केवल कुछ समय के लिए सिर झुकाए जा सकते हैं, हृदय नहीं जीते जा सकते। राजा का कर्तव्य है कि प्रजा में भय पैदा न करे बल्कि उन्हें सुरक्षा और न्याय की अनुभूति कराना है।
0: आचार्य, आप बूढ़े हो चुके हैं आचार्य, आपकी ये पुरानी और आदर्शवादी नीतियां अब साम्राज्य को कमजोर बना रही हैं। मैं सम्राट बिंदुसार का प्रिय अमात्य हूं और मेरी कुटिल योजनाएं राजकोष को दुगना कर सकती हैं, आचार्य दुगना कर सकती हैं। सुबंधु की बात सुनकर चाणक्य अवाक है। क्या इसीलिए चाणक्य ने इतने बड़े साम्राज्य की नींव रखी थी?

0: वे सोचने लगते हैं
1: और वे क्रोधित मुद्रा में खड़े होते हैं और अपनी प्रखर बुद्धि और तेज से सुबंधों को घूरते हुए कहते हैं,
2: कुटिलता और कूटनीति में अंतर होता है सुबंधु। कूटनीति का उद्देश्य राष्ट्र का कल्याण होता है, जबकि तुम्हारी कुटिलता के पीछे केवल तुम्हारा व्यक्तिगत स्वार्थ और अहंकार है। याद रखो, जिस राजकोष में प्रजा के आंसुओं का धन जमा होता है, वह राजकोष साम्राज्य को समृद्ध नहीं बल्कि समूल नष्ट कर देता है। यदि तुमने सम्राट को कुमार्ग पर ले जाने का प्रयास किया तो चाणक्य अभी जीवित है, यह याद रखना।
1: चाणक्य की यह बात कि चाणक्य अभी जीवित है, सुबंधु भीतर ही भीतर क्रोध से जलने लगता है और स्वयं मन ही मन कहता है, यह बूढ़ा ब्राह्मण आज भी मेरे मार्ग का सबसे बड़ा रोड़ा है। सम्राट के मन में इसके प्रति विष घोलना ही होगा। जब तक चाणक्य का अंत नहीं होगा तब तक मगध पर मेरा एकाधिकार नहीं हो सकता। और यह मन ही मन सोचते हुए सुबंधु मुड़ कर पैर पटकते हुए बाहर चला जाता है और चाणक्य चिंतित मुद्रा में राष्ट्र के भविष्य को देखने लगते हैं। कुछ समय बाद मगध की सीमा पर स्थित एक एकांत शांत जंगल में वृद्ध आचार्य चाणक्य सब कुछ त्याग कर फूस की कुटिया में ध्यान मग्न है। और तभी राजा बिंदुसार रोते हुए कुटिया के द्वार पर आते हैं और उनके पीछे ईर्ष्यालु मंत्री सुबंधु भी खड़ा है, जिसने बिंदुसार के कान भरने का काम किया है। लेकिन बिंदुसार आचार्य के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं क्योंकि आचार्य उनके गुरु हैं, शिक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं, उस साम्राज्य की नींव को स्थापित करने वाले दार्शनिक हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है और उसी अर्थशास्त्र की नीतियों पर मगध साम्राज्य पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और कोई भी पड़ोसी देश उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। बिंदुसार भली भांति चाणक्य के महत्व को समझते हैं कि चाणक्य क्यों महान है। वे आंखों में पश्चाताप के आंसू लिए घुटनों के बल आचार्य के सामने बैठे हुए और उन्हें निवेदन करते हुए विनम्र हो कहते हैं, आचार्य मुझे क्षमा कर दें, आचार्य क्षमा कर दें, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है आचार्य। सुबंधु के झूठे षड्यंत्र में आकर मैंने आपकी निष्ठा पर संदेह किया आचार्य, संदेह किया। मैं पापी हूं आचार्य, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं आचार्य। मैंने महापाप किया है जिसने अपने गुरु के मार्गदर्शन पर विश्वास नहीं किया। कृपया आचार्य मेरे साथ पाटलिपुत्र लौट चलें, मुझे सुधरने का मौका दें आचार्य। मौर्य साम्राज्य को आपकी जरूरत है आचार्य, आपकी जरूरत है। आपकी छत्र छाया के बिना मौर्य साम्राज्य आगे बढ़ने में सक्षम नहीं है आचार्य, सक्षम नहीं है।
2: राजन बिंदुसार, अब मेरे लौटने का समय शेष

0: नहीं रहा, बल्कि इस नश्वर संसार से महाप्रयाण का समय आ गया है। चाणक्य का सांसारिक कार्य पूर्ण हुआ। मैंने बिखरते हुए आर्यावर्त को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का जो स्वप्न देखा था वह सत्य हो चुका है। अब इस गौरव को अक्षुण रखना तुम्हारा और आने वाली पीढ़ियों का दायित्व है।
1: आचार्य चाणक्य के द्वारा बिंदुसार का यह प्रस्ताव कि अब आचार्य आप मगध साम्राज्य की ओर लौट चलें, पाटलिपुत्र का महल आपका इंतजार कर रहा है। जब आचार्य इसे अस्वीकार कर देते हैं, बिंदुसार अंदर ही अंदर टूट जाता है और बिलखते हुए कहता है, नहीं आचार्य, नहीं, आपके बिना मैं साम्राज्य कैसे संभालूंगा? आचार्य, कैसे संभालूंगा? मेरे अपराध की यह सजा मत दीजिए आचार्य, मत दीजिए।
0: मोह का त्याग करो बिंदुसार, राजा केवल नीतियों से चलता है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। मेरी नीतियां सदैव तुम्हारे साथ रहेंगी।
1: चाणक्य के द्वारा यह उक्ति कह देने के बाद बिंदुसार को वापस लौटना पड़ता है। बिंदुसार के जाने के बाद चाणक्य कुटिया का द्वार बंद कर गहरे ध्यान में लीन हो जाते हैं। ओम ओम। तभी कुटिल सुबंधु चाणक्य को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से छिपकर कुटिया के चारों ओर आग लगा देता है और आग लगाने के बाद क्रूरता से हंसता है और स्वयं से कहता है, अगर चाणक्य जीवित रहे तो मेरा प्रभाव कभी नहीं बढ़ेगा। जल जाओ चाणक्य, जल जाओ, आज से तुम्हारी कूटनीति का भी अंत हो जाएगा। और कुटिया धू धू कर जलने लगती है, आग की गगनचुंबी लपटें उठती हैं, परंतु चाणक्य के मुख पर कोई भय नहीं है। वे पद्मासन में स्थित होकर ईश्वर का स्मरण करते हैं। आग की लपटों के बीच अंतिम ओजस्वी स्वर में चाणक्य की आवाज गूंजती है,
0: सुबंधु तुम मूर्ख हो, यह शरीर नश्वर है, मिट्टी से मिल जाएगा, परंतु चाणक्य कोई हार मांस का पुतला नहीं। चाणक्य एक विचार है, नीतियां और अच्छी विचारधाराएं हमेशा अमर रहती है। भारत अखंड रहेगा, भारत अखंड रहेगा, भारत अखंड रहेगा।
1: और इसी अनुगूंज के साथ कुटिया भस्म हो जाती है। आचार्य चाणक्य का भौतिक शरीर पंचतंत्र में विलीन हो जाता है, परंतु उनका चिंतन, चाणक्य नीति और अखंड भारत का संकल्प इतिहास के पन्नों पर सदा के लिए अमर हो जाता है, अमर हो जाता है, अमर हो जाता है।
0: प्रोफेसर राज जी, बहुत ही सुंदर कहानी रही, बहुत ही शिक्षाप्रद भी। मैं अनुरोध करूंगा आपसे कि इस कहानी का जो केंद्रीय संदेश है वे आप श्रोताओं से साझा करें।
1: जी गुरु बिस्वा, आचार्य चाणक्य की कहानी हमें यह महत्वपूर्ण संदेश देती है कि ज्ञान, धैर्य, दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प किसी भी समाज और राष्ट्र के निर्माण की सबसे बड़ी शक्तियां होती हैं।
0: जी
1: चाणक्य ने व्यक्तिगत अपमान को प्रतिशोध का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि उसे राष्ट्रहित के लिए प्रेरणा में बदल दिया।
0: जी
1: उन्होंने यह सिद्ध किया कि केवल सत्ता प्राप्त करना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि सत्ता का उपयोग जन कल्याण, न्याय और सुशासन के लिए होना चाहिए। यह कथा हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियां मनुष्य को

0: तोड़ती नहीं बल्कि उसे और अधिक मजबूत बनाती हैं। एक सच्चा शिक्षक केवल ज्ञान नहीं देता बल्कि भविष्य के नेतृत्व का निर्माण भी करता है, भविष्य के नेतृत्व का निर्माण भी करता
1: एकदम,
0: है।
1: एकदम सही।
0: तो गुरु विश्वा अब समय आ गया है हमारे लिए और हमारे श्रोताओं के लिए लोकोक्तियों का। तो इस बार की जो लोकोक्तियां हैं भोजपुरी में, खेत खाए गधा मारल जाए जोल्हा।
1: जी
0: फिर से सुन लें, खेत खाए गधा मारल जाए जोल्हा, और हिंदी में है दूर के ढोल सुहावने।
1: जी
0: तो इस पर जो है हमारे श्रोतागण आपस में विचार करेंगे और इसका अर्थ आगे हम लोग बताएंगे। पिछली बार की जो लोकोक्तियां पूछी गई थी वह हिंदी में यह थी, अपनी दही के केहू खट नाही कहेला। इस पर गुरु विश्वा इसका अर्थ बताएंगे।
1: जी हाँ, इसका अर्थ है कोई भी अपनी चीज़ या अपने परिवार की बुराई नहीं करता है।
0: और हिंदी में जो लोकोक्ति पूछी गई थी, कंगाली में आटा गीला।
1: जी इसका भावार्थ है मुसीबत के समय एक और नई मुसीबत आ जाना। श्रोताओं, इस लोकोक्ति से संबंधित एक छोटी सी कथा है, कृपया इसका आनंद उठाइए। पांडव पहले ही बहुत कठिन स्थिति में थे, जुए में सब कुछ हार कर उन्हें वनवास और अज्ञातवास झेलना पड़ा। यह उनकी कंगाली जैसी अवस्था थी जहाँ उनके पास राज्य धन और सम्मान कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन इसी कठिन समय में एक और बड़ी मुसीबत आ गई, अज्ञातवास के दौरान उन्हें अपनी पहचान छुपाकर रहना पड़ा और हर समय पकड़े जाने का खतरा बना रहा। यह स्थिति वास्तव में कंगाली में आटा गीला जैसी थी। फिर भी पांडवों ने धैर्य नहीं खोया, उन्होंने वन में रहते हुए तप संयम और अपनी तैयारी की। अंततः उन्होंने अपनी रणनीति और पराक्रम से पुनः अपना राज्य प्राप्त किया और कृष्ण जी की सहायता से धर्म की स्थापना भी की।
0: लोकोक्ति के माध्यम से लघु कथा स्वयं रचना और उसे पाठकों और दर्शकों के बीच, श्रोताओं के बीच प्रस्तुत करना गुरु विश्वा की एक खासियत है। और इस बार भी जो है आपने बहुत ही अच्छी एक लघु कहानी प्रस्तुत की, लोग आभार,
1: धन्यवाद।
0: अब आमंत्रण संदेश श्रोताओं के लिए है। प्रिय श्रोतागण, हर समाज और हर राष्ट्र को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो अपने ज्ञान, चरित्र और संकल्प से नई पीढ़ी का मार्गदर्शन कर सकें। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा शिक्षक, मार्गदर्शक या प्रेरक व्यक्ति तो रहा है जिसने आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी हो? क्या आपने कभी किसी चुनौती को अवसर में बदलकर अपने जीवन में नई दिशा प्राप्त की है? अनकही एक कहानी आपको आमंत्रित करता है अपनी ऐसी प्रेरक कहानियां हमें लिखकर भेजने के लिए जो शिक्षा, राष्ट्रप्रेम, नेतृत्व, संघर्ष और सफलता से जुड़ी हों। आपकी चुनी हुई कहानियां हमारे रेडियो कार्यक्रम में प्रसारित की जाएंगी और आगे चलकर एक पुस्तक का हिस्सा भी बनेंगी। तो आइए आचार्य चाणक्य से प्रेरणा लेते हुए हम भी यह संकल्प लें कि ज्ञान, नीति और कर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने समाज और राष्ट्र के निर्माण में योगदान देंगे। अपनी रचनाएँ भेजिए इस ईमेल पर professorrajshekhar@gmail.com। हमसे जुड़े रहिए, सुनते रहिए, लिखते रहिए और अपनी सोच को स्वर दीजिए, क्योंकि कौन जानता है आपकी एक छोटी सी कहानी किसी और के जीवन में संकल्प और सफलता की नई ज्योति जगा दे। धन्यवाद, नमस्कार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जी इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। श्रोताओं, कहा गया है विद्वान प्रशस्यते लोके, विद्वान सर्वत्र गौरवम, विद्यया लभते सर्वम, विद्या सर्वत्र पूज्यते। अर्थात विद्वान की विश्व में प्रशंसा होती है, विद्वान को सर्वत्र गौरव मिलता है, विद्या से सब कुछ प्राप्त होता है और विद्या की सर्वत्र पूजा होती है। श्रोताओं, आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से चाणक्य जी ने अपने जीवन में बुद्धिर यस्य बलम तस्य इस सिद्धांत को अपनाकर अपना पूरा जीवन वे बदल देते हैं और साथ ही साथ चंद्रगुप्त जैसे सम्राट का निर्माण करते हैं। बुद्धिर यस्य बलम तस्य, अर्थात जिसकी बुद्धि होती है उसी के पास बल भी होता है। तो प्रिय श्रोताओं, अब हम अपने कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं। अब विश्वानंद और प्रोफेसर राज को विदा दीजिए। अगले सप्ताह फिर एक ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानी लेकर हम आप लोगों के मध्य में उपस्थित होंगे। आप सभी लोगों ने हमें ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए कोटिशः धन्यवाद और नमस्कार।

0: तरसते हो।
1: और कम वर्षा के कारण देश में जलापूर्ति चिंता का विषय बन गई है। मुख्य जलाशय मोवाक्वा केवल 43% क्षमता पर है। स्थिति से निपटने के लिए CWA पानी के टैंकर, वाल्व प्रबंधन और सुदृढ़ कॉल सेंटर के माध्यम से जलापूर्ति बनाए रखने में जुटी है। लक्ष्य उपभोक्ताओं की जरूरतों को सुनते हुए उपलब्ध पानी का समान वितरण सुनिश्चित करना है। आज राष्ट्रसभा में विदेशी श्रमिकों की भर्ती पर हुई PNQ के दौरान मंत्री रिजाउद्दीन ने बताया कि EDB ने नई और पारदर्शी भर्ती प्रणाली के लिए दोबारा टेंडर जारी किया है। साथ ही इसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव के आकलन के लिए ILO से तकनीकी सहायता ली जा रही है। भोपाल में 2015 के 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में प्रवासी हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया था। इसी कड़ी में इस वर्ष के 6वें संस्करण का सम्मान पहली बार मॉरिशस के साहित्यकार डॉ. सोमदत्त काशीनाथ को उनकी पुस्तक मुझे लहरों से बातें करनी है के लिए दिया गया। और विदेश में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह 2 में वर्ष 2026 के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। पेश अब समाचार विस्तार से। सूखे की अवधि में देश के कई हिस्सों में पानी की आपूर्ति एक गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है। द्वीप का मुख्य जलाशय मोवाक्वा अपनी क्षमता का केवल 43% ही भरा हुआ है। इस नाजुक स्थिति और लंबे समय से बारिश न होने के कारण CWA जलापूर्ति बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पानी के टैंकरों की व्यवस्था हो, वाल्व का प्रबंधन हो या कॉल सेंटर को मजबूत करना, बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए टीमें हर मोर्चे पर जुटी हुई हैं। मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की बात सुनना और इस संसाधन का यथासंभव समान वितरण सुनिश्चित करना है। हमारी टीम कल प्लेन विलियम्स गई थी, जो वर्तमान प्रतिबंधों से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। अब्दुल्ला की करुणा लालू।
2: 43% ये मोवाक्वा का वर्तमान जल स्तर है। ये स्तर चिंताजनक है, जो पिछले कई महीनों से वर्षा की कमी को दर्शाता है और पेयजल वितरण नेटवर्क पर भारी दबाव डाल रहा है। प्लेन विलियम्स में स्थिति खास रूप से कठिन है। कई इलाकों में निवासियों को रोज केवल 5 से 6 घंटे ही पानी सप्लाई की जा रही है। ओकुले में हमने CWA की एक टीम का अनुसरण किया, जो निवासियों की सहायता के लिए तैनात हैं। इस पानी की टंकी के चालक के लिए कार्य दिवस लगातार लंबे होते जा रहे हैं। थोड़ा आगे उटन में CWA की तकनीकी टीमें वाल्वों का संचालन कर रही हैं, ताकि जल का यथासंभव समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

0: ma pote. Et là, c'est ça, nous pouvons faire un exercice pour les choses. Tu
1: peux pas me guider le malin?
2: इस व्यवस्था की एक और महत्वपूर्ण कड़ी CWA का कॉल सेंटर है। इस कक्ष में एजेंट लगातार शिकायतों, हस्तक्षेप मांगों और जलापूर्ति संबंधी मांगों का निपटारा कर रहे हैं। सौंद्रा शॉल ने कहा, ग्राहकों को सुनते हैं ये जानने के लिए कि उनकी शिकायत क्या है। इस असाधारण स्थिति का सामना करने के लिए CWA ने अपनी सभी टीमों को पूरी तरह सक्रिय रखा है। सुनील गोपाल ने कहा, 5 से 6 घंटे पानी देने का ये जो उपाय किया गया है, यदि इसे ठीक से प्रबंधित कर सकें, स्थिति में स्थिरता ला सकें, तो कुछ राहत होगी। वर्तमान में 43% जल स्तर में 15% कीचड़ है। ये जल भंडार सितंबर महीने तक के लिए है। अधिकारियों ने सामूहिक जिम्मेदारी की अपील की है। बचाया गया हर लीटर पानी जरूरी है, क्योंकि जब तक बारिश महोबाकवा जलाशय को फिर से नहीं भर देती, तब तक पानी का प्रबंधन मॉरिशस के हजारों परिवारों के लिए एक दैनिक चुनौती बनी रहेगी।
3: आज राष्ट्रसभा में प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन के केंद्र में विदेशी श्रमिकों की भर्ती का मुद्दा रहा। मंत्री रेजा उतिम ने घोषणा की कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा विदेशी श्रम शक्ति की भर्ती के लिए एक सरल, पारदर्शी और आधुनिक प्रणाली स्थापित करने हेतु नया टेंडर जारी किया गया है। एक पिछला प्रयास विफल रहा था। रेजा उतिम ने यह भी घोषणा की कि मॉरिशस में विदेशी श्रमिकों की भर्ती के सामाजिक आर्थिक प्रभाव का आकलन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की तकनीकी सहायता मांगी गई है। उल्लेखनीय है कि भर्ती परमिट प्राप्त करने के मुद्दे पर तीखी बहस के बाद PNQ सत्र को कुछ मिनटों के लिए स्थगित कर दिया गया था।
2: मॉरिशस कुछ सेक्टरों में श्रम शक्ति की कमी को पूरा करने के लिए विदेशी कामगारों को भर्ती करने के लिए तैयार है। देश में अभी लगभग 50,000 विदेशी कर्मचारी हैं। इस बीच अधिकारियों का कहना है कि इन कर्मचारियों की भर्ती स्थानीय कामगारों की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। कंपनियों को विदेश की ओर रुख करने से पहले मॉरिशनों की भर्ती एवं ट्रेनिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
4: Can the honorable minister inform the house whether government has a long-term?
2: विपक्ष नेता ने पूछा, क्या श्रम शक्ति में मिसमैच को पाटने के लिए एक दीर्घकालिक स्ट्रेटजी है?
5: There is a series of measures that has been identified which will take effect to
2: श्रम मंत्री ने कहा, कई उपाय देखे गए हैं जिससे स्किल्स मिसमैच की समस्या से निपटा जाए। HRDC के माध्यम से ट्रेनिंग में भारी निवेश और स्किल मिसमैच के शिनाख्त के लिए नए सॉफ्टवेयर का विकास इनमें शामिल है। अब ये नियम स्पष्ट हैं, यदि आप ये दिखाएंगे कि स्थानीय स्तर पर भर्ती करने में असमर्थ हैं, तो विदेशी कर्मचारी की अनुमति दी जाएगी। अनुमति की शर्त भी मॉरिशनों की रक्षा के लिए है। अधिकारी गैर कानूनी तरीके से रहने वालों से निपटने के लिए निरीक्षण को और मजबूत करने की भी योजना बना रही हैं। जनवरी 2026 से 428 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं।
5: My ministry has taken a policy decision that we will not
2: कोई वर्क परमिट जारी नहीं की जाएगी या रिन्यू नहीं की जाएगी यदि एम्प्लॉयर द्वारा कम से कम 90% तक नियमों का पालन न किया जाए।
5: Of the workers who is under his employment and whose work permit has been expired.
2: भर्ती परमिट पाने के निकषों पर अतिरिक्त सवालों के समय सदन में तीखी बहस हुई।
4: Can the honorable minister therefore explain to the house how this company, which has been incorporated on the 22nd October 2025, has been able to submit financial statements for the last 3 years as required in the application form to be able to obtain a recruitment license for foreign labor.
5: There were 54 recruitment licenses. So we came and we put an order. Now, how we determine the financial resources of a company who has just been set up? And how can we not discriminate against a company that has just been set up? The answer is that you provide us with a business plan. All companies which are licensed to recruit foreign workers to

0: person, but if he has a senior official who is going to do the work, what do? I discriminate against our youngster. I tell them, don't invest, don't start a business.
1: स्पीकर ने बजट पर चर्चा फिर से शुरू करने से पहले कुछ मिनट के लिए सत्र सस्पेंड भी कर दिया।
2: बजट भाषण और पेंशन सुधारों पर लगी रोक अभी भी ट्रेड यूनियनों को एकजुट किए हुए हैं। इस बुधवार नेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन और स्टेट एंड ओवन पर्स फेडरेशन ने मींस टेस्टिंग के विकल्प पेश करने और इसे पूरी तरह से समाप्त करने की मांग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पब्लिक गवर्निंग एक्ट में संशोधन के जरिए प्रस्तावित नए दंडों की भी आलोचना की गई और उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने वाला बताया गया। एमएसएम ने आज पोटवी स्थित अपने मुख्यालय में बजट 2026-2027 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। दल के नेता प्रवीण जगनाथ ने बजट के कई कदमों, विशेष रूप से वृद्धावस्था पेंशन की नई प्रणाली की आलोचना की। फाहाकुनाई, याचना मिश्रा।
3: एमएसएम के सदस्यों की मौजूदगी में पार्टी के नेता प्रवीण जगनाथ ने प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने नई पेंशन प्रणाली से संबंधित कदम का कड़ा खंडन किया। प्रवीण जगनाथ ने कहा कि यदि एमएसएम सत्ता में वापस आती हैं, तो 60 साल की उम्र में पेंशन प्रणाली वापस कायम की जाएगी। कई सवाल बिन जवाब रह गए हैं। सरकार कह रही है कि मींस टेस्ट रोकी जा रही है, लेकिन परिणामों पर कुछ नहीं कहा गया। अभी तक पता नहीं चल पाया है कि कौन सी पेंशन प्रणाली कायम की जाएगी। यदि आप 65 साल की उम्र में पेंशन प्राप्त करेंगे, तो क्या जीवन भर आपको उतनी ही रकम मिलेगी? एमएसएम ने सरकार द्वारा शागस मुद्दे के संचालन के तरीके की भी आलोचना की। अन्य विषयों में बड़ी बजट वाली परियोजनाएं जैसे हब ब्रिज, पब्लिक गैदरिंग्स एक्ट में सुधार तथा खाद्य सामानों और बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी शामिल हैं।
2: अन्य खबरों में वर्ष 2015 में भोपाल में आयोजित 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में प्रवासी भारतीयों के बीच हिंदी साहित्य और सृजनात्मक लेखन को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया था। इसी पहल के तहत प्रत्येक 2 वर्ष में उत्कृष्ट प्रवासी हिंदी साहित्यकारों को सम्मानित किया जाता है। हिंदी आज विश्व भर में भारतीय प्रवासियों की सांस्कृतिक पहचान का सशक्त माध्यम बन चुकी है। इस वर्ष इस छोटे संस्करण के अंतर्गत पहली बार के लिए मॉरिशस के साहित्यकार डॉक्टर सोमदत्त काशीनाथ को उनकी पुस्तक मुझे लहरों से बातें करनी है के लिए ये सम्मान प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में महात्मा गांधी संस्थान में एक विशेष साहित्यिक समारोह आयोजित किया गया। अशिता रघु।
4: महात्मा गांधी संस्थान में आयोजित इस समारोह में महात्मा गांधी संस्थान अप्रवासी साहित्य सृजन सम्मान के 6वें संस्करण के अंतर्गत पहली बार मॉरिशस के साहित्यकार डॉक्टर सोमदत्त काशीनाथ को उनकी पुस्तक मुझे लहरों से बातें करनी है के लिए प्रदान किया गया।
5: मुझे लहरों से बातें करनी है, यह मेरी पहली पुस्तक थी, तो उसी को मैंने इस सम्मान के लिए प्रस्तावित किया था। इसमें व्यक्ति है जिसने सब कुछ हार दिया है, उसका सब कुछ नष्ट हो गया है और वो समुद्र के पास बैठकर लहरों से बातें करता है और उसे यह अनुभव होता है कि वे अपनों से बातें कर रहा है।
4: इस अवसर पर डॉक्टर कमल किशोर गोयनका को समर्पित वसंत विशेषांक का लोकार्पण भी किया गया। वहीं रचनात्मक लेखन एवं प्रकाशन विभाग के तत्वावधान में आयोजित वसंत एवं रिमझिम साहित्यिक प्रतियोगिता 2025 में लगभग 120 प्रतिभागियों ने भाग लिया। तृतीय स्तर की कविता प्रतियोगिता में तिश्मा देवी जलू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
6: मैंने कविता प्रतियोगिता में भाग ली थी जिसका शीर्षक था भारत मॉरिशस मैत्री। भारत हमेशा से मॉरिशस का समर्थन करता आया है और हमेशा मॉरिशस इसके अंतर्गत विकसित ही होता आया है। इस तरह हम भारत से हमेशा मैत्री के संबंध ही रखते हैं।
4: माध्यमिक स्तर पर युवाओं और ड्रग विषय पर निबंध लेखन के लिए प्रिवेश सिंह अलकोई को प्रथम पुरस्कार मिला।
7: मैंने अपना निबंध ड्रग्स और आदि पर लिखा है, जो ड्रग्स हमारे युवकों को बहुत प्रभावित कर रहा है। मुझे वसंत प्रतियोगिता के लिए ये पुरस्कार मिला है।
4: वहीं कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI

0: के उपयोग पर लिखे गए निबंध के लिए गीतिका देवी प्रसाद को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: मैंने अपना निबंध AI पर लिखा था। AI के महत्व और दुरुपयोग के बारे में लिखा था, क्योंकि हम AI को अपने जीवन में यूज करते हैं।
0: रचनात्मक लेखन एवं प्रकाशन विभाग की प्रमुख ने हिंदी के विकास में साहित्यिक प्रकाशनों और प्रतिभागियों की अहम भूमिका पर जोर दिया।
2: इस वर्ष की एक मॉरिशसीय लेखक को यह आप्रवासी सम्मान प्राप्त हुआ है। यह हमारे देश के लिए बड़े ही गौरव की बात है, क्योंकि उनका जब आप कहानी संग्रह पढ़ेंगे और जिस तरह से जो हमारे निर्णायक मंडल के सदस्यों ने जब निर्णय लिया तो उसमें जो विशेषताएँ पाई, इससे दिखता है कि मॉरिशस में भी वह खूबी है। लेखकों में जो प्रतिभा होनी चाहिए वह धीरे धीरे विकसित हो रही है, तो यह हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक पहल है। और इसी के बहाने मैं दूसरों को भी संदेश देना चाहूंगी कि आप सृजनशील बने, इसी तरह सतत लिखते रहें और एक दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी।
0: समारोह के मुख्य अतिथियों में शामिल भारतीय उच्चायोग के प्रथम सचिव श्री रंजन कुमार सिंह ने कहा कि भारत और मॉरिशस का संबंध केवल द्विपक्षीय नहीं बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक है। साहित्यकारों को सम्मानित करने और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने वाले इस आयोजन ने हिंदी के उज्जवल भविष्य की एक नई तस्वीर पेश की। ये पहल न केवल हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रही है बल्कि नई पीढ़ी को अपनी भाषा और सांस्कृतिक जड़ों से भी जोड़ रही है।
3: अगर फुटबॉल की बात करते हैं, विश्व कप 2026 ग्रुप एल में क्रोएशिया के खिलाफ अपनी शानदार जीत के बाद इंग्लैंड इस बार लड़खड़ा गई। घाना के साथ 0-0 से ड्रॉ खेलने के बाद इंग्लैंड की टीम को विश्व कप के अगले दौर के लिए अपनी आधिकारिक योग्यता सुनिश्चित करने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। अरविंद बिसेसर।
4: इंग्लैंड के थ्री लायंस को लगा झटका। हार तो नहीं हुई पर घाना के सामने द थ्री लायंस को ड्रॉ मैच से संतुष्ट होना पड़ा। क्रोएशिया के खिलाफ धुआंधार शुरुआत थी पर घाना के आगे बेसुरा। घाना के खेल में अनुशासन था। द ब्लैक स्टार्स 90 मिनट और इंजरी टाइम तक भी डटकर इंग्लैंड के अनगिनत प्रयासों को नाकाम करते गए। फॉक्सबोरो में बरसात हो रही थी पर गोलों की बरसात नहीं हुई। इंग्लैंड के मैच में पकड़ मजबूत रही कुछ समय के लिए पर घाना के चट्टान जैसे डिफेंस को पार नहीं कर पाए। सेकेंड हाफ में कुछ अच्छे मौके मिले पर गोल बनाना मुश्किल था। अंतिम पलों में हैरी केन को कुछ अच्छे मौके मिले पर गेंद पोस्ट से ऊपर उड़ गई। घाना के ब्लैक स्टार्स अंत तक मजबूती से काउंटर अटैक पर काम करते रहे, जहां गोलकीपर पिकफोर्ड को पड़ा अपनी टीम को बचाने के लिए। अंतिम नतीजा घाना 0 इंग्लैंड 0। दोनों टीमों के पास 4-4 अंक हैं।
3: विश्व कप 2026 ग्रुप A, B और C के तीसरे और अंतिम दिन के साथ जारी हैं। आज की शाम बेहद निर्णायक हैं, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुकाबले होने हैं। मेजबान देश मैदान में उतरेंगे, जहां कनाडा का सामना स्विट्जरलैंड से, मेक्सिको का मुकाबला चेक गणराज्य से होगा और सबसे महत्वपूर्ण ब्राजील के लिए स्कॉटलैंड के खिलाफ ये मैच जीतना या हारना जैसा है।
4: ग्रुप स्टेज के आखिरी राउंड के मैच आज से शुरू होंगे। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के मैच। मुख्य आकर्षण होगा ग्रुप सी वाला मैच, जहां ब्राजील का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा। 2 बजे ये मैच खेला जाएगा। ब्राजील की टीम अपने पहले मैच में ड्रॉ करके दूसरे मैच में जीत हासिल की थी आईसी के खिलाफ। कार्लोस अंसेलोटी की टीम, उनकी किस्मत उनके हाथ में है। ये लोग ग्रुप का पहला स्थान लेना चाहते हैं। विनिशियस जूनियर, मैचिस कुन्हा, ये लोग हैं। नेमा बेंच पर होगा, राफिना चोट के कारण नहीं खेल पाएगा। स्कॉटलैंड से बच के रहना होगा क्योंकि इसमें भी स्टार खिलाड़ी हैं। एक जीत के साथ स्कॉटलैंड के पास 3 अंक हैं, तो ये टीम भी क्वालिफाई हो सकती है। ग्रुप ए में दक्षिण अफ्रीका का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। बफाना टीम के खाते में केवल 1 अंक है, जबकि दक्षिण कोरिया के पास है 3 अंक। एक ड्रॉ सॉन युनमिन की टीम के लिए काफी हो सकता है। ये मैच सुबह 5 बजे आप देख पाएंगे MBC TV के स्पोर्ट्स 11 पर। इसी ग्रुप में मेक्सिको की टीम, जो पहले ही अपना टिकट बुक कर चुकी है, उसके सामने है चेक रिपब्लिक। एक जीत के साथ मेक्सिको पहला स्थान ले सकता है। ग्रुप बी में

0: कनाडा और स्विट्जरलैंड के बीच टकराव, ये ग्रुप ए का न्यूमेरो इनो यानी पहला स्थान लेने के लिए। कनाडा की टीम अपनी सरजमीन पर है, अपने फैंस के सामने ये लोग जीतना चाहेंगे और आगे आत्मविश्वास के साथ बढ़ना चाहेंगे।
1: विदेश की खबरों में ईरान के संसदीय अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबाफ का कहना है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने का समझौता किसी दबाव या जबरदस्ती का परिणाम नहीं था। इसराइल के रक्षा मंत्री का कहना है कि सेना लेबनान से पीछे नहीं हटेगी, भले ही अमेरिका ऐसा करने की मांग करे। भारत सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 131 व्यक्तियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया।
2: भारतीय सिनेमा, संगीत और खेल जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियों को इस वर्ष पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में दिग्गज अभिनेता ममूटी को पद्म भूषण प्रदान किया गया। भारतीय सिनेमा में उनके दीर्घ और उल्लेखनीय योगदान को इस सम्मान के माध्यम से राष्ट्रीय मान्यता दी गई। प्रसिद्ध गायिका अलका याग्निक को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं भारतीय क्रिकेट के प्रमुख चेहरों में शामिल रोहित शर्मा को खेल जगत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री प्रदान किया गया। अभिनेता आर माधवन भी उन विशिष्ट व्यक्तियों में शामिल रहे जिन्हें इस वर्ष राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। पद्म अवार्ड्स केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों का सम्मान नहीं है, वे उन व्यक्तियों के लिए भारत की कृतज्ञता का प्रतीक है जिन्होंने अपने कार्य, प्रतिभा और समर्पण के माध्यम से समाज, संस्कृति और देश की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया है। इन सम्मानों के जरिए भारत सरकार ये संदेश देती है कि उत्कृष्टता, सार्वजनिक सेवा और राष्ट्र निर्माण में योगदान सर्वोच्च स्तर पर मान्यता दी जाती है।
1: और अब आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल याचना मिश्रा के साथ।
3: मस्करीन्स के दक्षिण दक्षिण पूर्व में पाए जाने वाले जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण से हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात को आसमान साफ रहेगा, कल सुबह देश के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों तथा सेंट्रल प्लाटू पर बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी, कहीं कहीं पर कोहरा छाया रहेगा जिस कारण से विजिबिलिटी भी कम होगी। दोपहर बाद पूर्वी इलाकों और ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे, कोहरा छाया रहेगा खासकर ऊंचाइयों पर। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी जिसके झोंके कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे दक्षिणी समंदर में 3 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर तथा लगूनों में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 15 से 17 और अधिकतम 20 से 23, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 और अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 7:45 बजे और शाम को सूर्यास्त 5:39 पर होगा।

0: तो मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम शिव को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं। थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: NBC Radio.TV.
0: लीजिए शोक समाचार सुनिए। एक्स एयरपोर्ट रोड प्लेनमानियों में 90 साल की श्रीमती देवलतिया लुकमन, पैदाइशी नाम बिरिज और जो बाबुई नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के एक बजे उनके घर एक्स एयरपोर्ट रोड प्लेनमानियों से उठाकर प्लेनमानियों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। La Chapelle Ardente et Dien-Sens-Roy Road, Bobasse, mais 97 years old, qui Shrimati Munauti de Surat, Paidaishi Nam Ramphal, aur jo Bidra Nam se zyada jani jati thi ki mrityu ho gayi hai, ve Sevier Gilline Street, Residence Rosie Lodge, 4 Bonne, rehti thi.

उनकी अर्थी कल सुबह 9 बजे ला शापेल ऑडेंटेलियन सेंसरा रोड बोबासन से उठाकर अलीब्रियन कास्टेल की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमिशन टुमारो एट 9 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।

0: नहीं सो।
1: रेडियो मनोरंजन के सभी सुनने वाले दोस्तों को जय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। ये है आप ही लोगों का नंबर वन रेडियो स्टेशन और इन फ्री रेडियो मनोरंजन। शाम के 6:26 हो रही है। इट्स अ वंडरफुल एंड लवली वेडनेसडे नाइट 24 जून 2026। अभी से लेकर रात के 11 बजे तक हमारा और आपका साथ होगा। अभी से लेकर शाम के 7 बजे नई सोच फिलोसॉफिकल सॉन्ग्स, रात के 7 बजे से रात के 9 बजे तक दिलों की आवाज़, और रात के 9 से 11 बजे तक भोजपुरी टेलीकास्ट। का सोप यू गोइंग टू गिव अस कंपनी। यस, हम आए हैं यहाँ पर आप लोगों का साथ देने के लिए। फर्स्ट पहले हिस्से में हम चलाएंगे कुछ भावगीत। जी हाँ, नई सोच प्रोग्राम है अभी से लेकर 7 बजे तक, और ये प्रोग्राम चलेगा रेडियो मनोरंजन और इन फ्री पर, साथ में चलेगा टिकटॉक पेज पर, यानी कि इस प्रोग्राम को आप देख भी पाएंगे और सुन भी पाएंगे। ज़िंदगी में हर किसी को सब कुछ तो नहीं मिलता जो वो सपना देखता है। कुछ इंसान को कुछ मिलता है पर कुछ नहीं भी मिलता है, और क्या करें, ज़िंदगी इसी का नाम है। जो भी हम चाहते हैं वो सभी कुछ तो नहीं मिल सकता, जो कुछ मिला है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए, यही जीवन का नियम है।

कहते हैं कि संसार में कोई भी अपने माँ के पेट से बुरा बनकर नहीं आता। अगर कोई बुरा बनता है तो उसे समाज बनाता है। कभी कभी परिस्थितियाँ इतनी कठिन और गंभीर होती हैं कि परिस्थितियों के कारण इंसान कभी कभी बुरा बन जाता है और बदनाम बन जाता है। इसमें इंसान का क्या दोष? जब परिस्थितियाँ कठिन हो तो परिस्थितियों के अनुसार इंसान कभी कभी बदनाम हो जाता है, बुरा हो जाता है।

जिंदगी के कुछ पल ही तो होते हैं जीने के लिए और जो भी आता है उसे जाना पड़ता है। कोई यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं आता, पर कुछ लोग सोचते हैं कि उनके पास धन दौलत है, बंगला गाड़ी है तो वो हमेशा रहेंगे। ये एक मिथ्या धारणा है। जो भी आता है उसे जाना पड़ेगा। जिंदगी के कुछ ही पल तो होते हैं, इस पल को हमें जी लेना चाहिए अच्छी तरह से, अपनों के साथ, अपने परिवार और दोस्तों के साथ, ताकि कल को पछताना ना पड़े।

वही हमारा परमपिता परमेश्वर है, वही हमारा ईश्वर है, हमारा भगवान है, वही पालनहारा है जिसने हमें संसार में भेजा है। और दुख के समय में हम उन्हीं के चरणों में जाते हैं, और जो भी भक्त सच्चे दिल से ईश्वर के चरणों में नतमस्तक होता है, भगवान उनकी मुश्किलों को दूर करता है। थोड़ा समय लगता है, पर प्रभु किसी न किसी रूप में आकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और जिसका कोई नहीं संसार में, उसका वो पालनहारा होता है, वही ईश्वर, वही जगदीश्वर होता है। सो इसी पर भरोसा रखिए, आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा।

मिथ्या है ये संसार झूठे हैं रिश्ते नाते यहां पर किससे क्या उम्मीद रखते हैं इस दुनिया में किसी का यहां पर कोई नहीं है कोई अगर अपना है तो वो है प्रभु हमारा ईश्वर हमारा भगवान है कि नहीं सो इस संसार में क्या मिलेगा कुछ भी तो नहीं मिलेगा पर हां जहां तक हो सके हमें अच्छे कर्म तो करने होंगे अपने लिए ना सही दूसरों के लिए ही सही और बेशक जैसे हमने कहा कि यह संसार मिथ्या है झूठे हैं रिश्ते नाते सच्चा रिश्ता नाता तो उस परमपिता परमेश्वर उस भगवान से है

लेडीज एंड जेंटलमैन, सांस आवाज के हमारे प्यारे प्यारे दोस्त फिल्म साउथर्न के इसी भाव गीत के साथ ही नई सोच कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होने जा रहा है। याद रहे 7 बजे प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा और हम प्रस्तुत करेंगे अगला प्रोग्राम दिलों की आवाज। फोन कर सकते हैं 4028070 या फिर टिकटॉक पेज पर अपने मैसेज भेज सकते हैं गीतों की फरमाइश के लिए।

0: चेक आउट योर टाइम इस समय मॉरिशस में रात के ठीक 7 बजे है आप सुन रहे हैं और एम फ्री रेडियो मनोरंजन
1: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio Manoranjan Radio
3: Your kind of music all day all night right here on your one and only station
4: की आवाज
5: की आवाज
4: की आवाज
0: लेडीज एंड जेंटलमैन गाइस एंड गर्ल्स डियर ऑडियंस आप सभी को अच्छे प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार जी हां अभी से लेकर रात के 9 बजे तक दिलों की आवाज 4028070 पर आप फोन कर सकते हैं या टिकटॉक पेज पर अपने मैसेजेस भेज सकते हैं सम फॉल्स बीट्स जी हां कुछ धमाकेदार गाने अभी से रात के 9 बजे तक Yes, ये पहला गाना गिरा गिरा गिरा दिल गिरा गिरा मिला मिला मिला कोई मिला मिला फिल्म का नाम है एतराज और यह गाना जो है हम चलाएंगे इन सब दोस्तों के नाम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं Yes, रोशन घुरबिन नमस्ते जी यह गीत आपके नाम विदय रामदू एंड इंदिरा खबीब हमारा साथ दे रही है फिर यही गाना शमीला चुनीलाल के नाम एंड फिर यही गीत नखेर सुरेश के नाम भी मनोज पियती यह गीत आपके नाम धर्मिन चटर्जी यस इस गाना फॉर यू एज वेल ये गाना अमृता की ओर से उनकी बहन बबीता के नाम एंड उस्मानी यह गीत आपके नाम भी हम चला रहे हैं बहुत बहुत प्यार के साथ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं नेक्स्ट गाना फॉर सम्मान सरफराज और बेटी शनाया और उनके हस्बैंड है सादिक Yes, यही प्यारा सा गीत हम आपके नाम करेंगे एंड वेब चेरी गीत आपके नाम भी जाएगा और अमृता भी हमें सुन रही है जय श्री सुब्रन बहुत प्यार के साथ हमें देख रही है और सुन रही है और जिसमें लोग रेडियो मनोरंजन मनोरंजन के साथ जुड़े हुए यह गीत आपके नाम भी चलिए साथ सुनते हैं ये गाना गिला गिला गिला दिल गिला गिला मिला मिला कोई मिला मिला

जी हाँ, चलिए नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, मस्ती भरा समा है, रंगीन मस्तानी शाम आप लोगों के साथ, दिलों की आवाज। नेक्स्ट गाना, आओ मेरे पास और आओ, न शर्माओ न घबराओ। बहुत ही प्यारा सा गीत हम चलाएंगे इन सब दोस्तों के नाम जो हमें सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन पर और टिकटॉक पर हमें देख रहे हैं। उमा ममुंदी, यस शीला, फिर यही गीत हम चलाएंगे विनीता धनु की ओर से, उनकी बेटी शैवी गुरापा, आज उनका बर्थडे है। शैवी गुरापा, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर, लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस टू यू। फिर यही गाना हम चलाएंगे नाजिया नोहर के नाम, हेलो नाजिया, पासी माँ, यह गीत आपके नाम भी जाएगा बहुत बहुत प्यार के साथ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और फिर देवी नामंगर हमारे साथ जुड़े हुई है, थैंक यू जी हमारा साथ देने के लिए। ये गाना हम चलाएंगे, जी हाँ ये गाना हम चलाएंगे माधव की ओर से, उनके चाचू साइलेंट के नाम।

और माधु, माधव अपने चाचू साइरन को बहुत प्यार करते हैं। वरुण गणेश, यह गीत आपके नाम भी जाएगा, बहुत प्यार से आप हमें सुन रहे हैं, थैंक यू जी। यही गाना हम चलाएंगे भारती के नाम, कामिनी, कामिनी जी यह गीत आपके नाम भी। अनिरुद्ध राव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, थैंक यू हमें देखने और सुनने के लिए। संजय कुनाय जी, आपका स्वागत है।

मिलन से है, संगीता मीरन नागोजा से है और यही गाना हम चलाएंगे रीता जी के नाम। रीता जी की ओर से ये गीत उनके सभी परिवार वालों के लिए। रीता जी मोहताबा रहती है। यही गाना यजना के नाम और सुरमा जी हाँ वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो चलिए साथ सुनते हैं आओ मेरे पास और स्वीट एंड लवली वॉइस ऑफ किशोर दा। उनका नाम है कौन कैसे।

जहाँ से शाम को हम हैप्पी हैप्पी बनाएंगे आपके हैप्पी हैप्पी सॉन्ग के साथ, जहाँ गीत मांगे कुछ जो गाने चलेंगे वो फर्स्ट बीट्स पर होंगे, यानी कि हैप्पी वाला सॉन्ग, सैड सॉन्ग नो, ओनली हैप्पी हैप्पी सॉन्ग, हैप्पी पैपी सॉन्ग्स। ये अगला गीत डिस्को डांसर फिल्म से लिया गया है और बहुत ही ऐसा गीत, आई एम अ डिस्को डांसर, रोशन तमंग गीत आपके नाम, फिर ये गीत मैनुएल के नाम, हाय मैनुएल, और यही प्यार सा गीत हम चलाएंगे प्रेमिला के नाम, हेलो प्रेमिला। सती जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, हाय सती, नमस्ते। लीनान शाह, यह गीत आपके नाम भी हम करेंगे बहुत बहुत प्यार के साथ। और जेनिफर भी हमारा साथ दे रही है, राजश्री एंजल, यह गीत आपके नाम भी, देवी रमाना, अरशाद महमूद और सन भी हमारे साथ दे, हेलो सन, यस। सो ये प्यार भरा गीत आपके नाम भी, और इस समय हमें सुन रही है राजमन्ना जी, जी हाँ, उनके पूरे परिवार के लिए। और किशन गुड़िया आपके वजीपत से है, उदय धनी राम वहीं से है, किशन गुड़िया, प्रीतम राजमिला, अश्विन बच्चन और सब बच्चन परिवार के नाम। तो जितने भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं टिकटॉक पेज पर और रेडियो मनोरंजन और रेडियो मनोरंजन के साथ जुड़े हुए, ऐसे गीत आपके नाम, चलिए सुनते हैं फिल्म डिस्को डांसर, डिस्को डांसर का गाना।

डिस्को डांसर मूवी याद है आपको, जिसमें नजर थे मिथुन चक्रवर्ती, साथ में थी किम एंड स्मिता पटेल, शक्ति कपूर, राजेश खन्ना साहब, ऑल इज गोल्ड। यस, आपकी यादों को हम ताजा कर रहे हैं इस गीत के साथ। अगला गाना, तेरी बनेगी ये दुल्हनिया दुल्हनिया दुल्हनिया दुल्हनिया, ये गीत हम

चलाएंगे खासम खास सीताराम पासवान के नाम, अनीजा हुसैन के नाम भी, उमा उमा जी के नाम भी हमारे साथ जो जुड़ी हुई है। और यही गाना हम चलाएंगे वीना कुबुस्वामी के नाम, आप है मेबक से, उनके पूरे परिवार के लिए, सुलमा दुखीत वहीं से है। और यही गाना हम चलाएंगे विश्वानी बाबूलाल के नाम, आप रहती है लाहौजा, बहुत बहुत प्यार के साथ। वीरापेन साहब हमारे साथ जुड़े हुए, हेलो वीरापेन जी, ये गीत आपकी पत्नी और आपके पूरे परिवार के लिए। यही गीत भाई एदू के नाम और भाई रोसाई के नाम भी। और अबाया जी हमारे साथ जुड़े हुए, मिस्टीना दीना, और ये गीत प्रतिमा के नाम, और सज्जू भाई ये गीत आपके नाम भी। मनोज साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए, और प्रेमिना फ्रांस से है, वहाँ कह रहे हैं कि वहाँ का टेम्परेचर 42 डिग्रीज, बाप रे बाप, इतनी गर्मी, रिकॉर्ड तोड़ने वाली टेम्परेचर्स वहाँ पर है। ओ ओ, और यहाँ पर तो बहुत ठंड है मॉरिशस में, देखिए ना कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ पर बहुत ठंड, वहाँ पर इतनी गर्मी। संजय को नाय की ओर से गीत उनकी प्यारी सी पत्नी के लिए हम चलाएंगे बहुत बहुत प्यार के साथ, नूरी हेलो। मन्ना गुरुदेव कैसे हैं भाई जी, एक गीत आपके नाम भी, पूजा विशाल यह गीत आपके नाम भी हम चलाएंगे। चलिए एक साथ सुनते हैं गाना, तेरे बनेंगे ये दुल्हनिया दुल्हनिया। It's a wonderful track from the movie Dosti. Here we go.

कागज कलम दवा दिला दिल तेरे नाम कर दूं क्या बात है बहुत ही प्यारी प्यारी गाने चल रही है रेडियो मनोरंजन की लहरों पे रात के 7:40 होप यू आर डूइंग वेल एंड यू एंजॉयिंग द सॉन्ग्स वी आर प्लेइंग फॉर यू टुनाइट एक जवानी तेरे एक जवानी मेरी होय होय जवानी की बातें हर कोई करना चाहता है जवानी के दिन कोई भूल सकता है कभी भी कोई जवानी के दिन कभी कोई नहीं भूल सकता जवानी के दिन ऐसे ही होते हैं जवानी के दिन कदम लड़करा जाते हैं ओए होए होए जवानी दीवानी होती है यस ये गाना कच्चे धागे फिल्म से लिया गया है सुदेवी की ओर से आप है वाकवा वाकवा के रहने वाली है सुदेवी सो दिस गाना विल बी फॉर यू माय डियर सुदेवी की ओर से ये गीत जाएगा थयोरे की दीदी ललिता कुशल परिवार आत्माराम भैया दीदी सुनीता शोभा देवीना मालंगा के सब राम रतन परिवार के नाम अभिजीत राइट और यही गाना हम चलाएंगे यस ये गाना हम चलेंगे नताशा के लिए गीता बाई फ्रॉम नोवेल फ्रांस वो उतना भी ठीक नहीं उनका स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं से दुआ करते हैं कि वो जल्द ठीक हो जाए दिया बाई विश्वी बाई और सभी परिवार के लिए एक प्यारा सा गीत हम चलाएंगे और यही गाना हम चलाएंगे यस गुड़िया गुड़िया के नाम ये गीत बहुत बहुत प्यार से एक जवानी तेरी एक जवानी मेरी संजय बिहारी भी हमारा साथ दे

थैंक यू जय, उनकी पत्नी सुरेखा, बेटा, फिर बहू, बेटी, दामाद और सब बिहारी परिवार के नाम लोंग चिबुग नानो राजा स्टीव प्रवीण भैरव श्याम मंगल और ये सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो दोस्तों, दिस गाना फॉर ऑल ऑफ यू, रिमेम्बरिंग ओल्ड टाइम्स एंड नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स, आपको याद है ना। और ये गाना सुदेश जसवा के नाम, उनकी मामा राजकुमारी और उनकी बेटी सब राजकुमारी परिवार के, सब जसवा परिवार के नाम। और यही गाना आप सभी दोस्तों के नाम जो हमें सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन पर, एक जवानी तेरी एक जवानी मेरी। फोन करने का नंबर 4028070 का जगह दे जगह से जगह पर रात के 9 बजे तक।

ये समा प्यार का समा है और दिलों की आवाज़ प्रोग्राम चल रहा है और इम्प्री रेडियो मनोरंजन पर रात के 9 बजे तक और हम हैं आप लोगों के साथ। आप फ़ोन कर सकते हैं 4028070। टिकटॉक पे जब के लिए इंटरप है वो होगा लाइव एक बार फिर रात के 9 बजे। राइट, सो अभी रेडियो पर हमारा साथ दीजिए और सुनिए आपके पसंदीदा गाने। ये समा समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, और ये समा प्यार का समा है और आप भी इस समा में बन जाए हमारे साथ। यस अनीता जी, अनीता जी, अनीता लाल जी मोदाल बे से, अनीता जी फ्री कॉम्प्लेक्स से, आफेज है सैफिया से, रोजिदा हाईलैंड से, मैं जबीन पोर्ट्रिस से, क्या बात है क्या बात है, इब्राहिम साहब पोर्ट्रिस से है और सुन रहे हैं। नेक्स्ट गाना प्रीति एंड रिश, ममता बदल के नाम, उनकी मामा इंद्रानी, पापा सुरेश और सब माता बदल परिवार के नाम, सभी रेडियो मनोरंजन फैमिली के सदस्यों के नाम। ये प्यारा सा गाना, ये समा समा है प्यार का।

0: लेडीज एंड जेंटलमैन गाइस एंड गर्ल्स डी ऑडियंस चेक आउट योर टाइम इसे में मॉरिशस में रात के ठीक 8 बजे आप सुन रहे हैं एमबीसी और एमप्री रेडियो मनोरंजन
1: कंटीन्यूअस म्यूजिक
2: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
0: जहाँ दिनों की आवाज़ में हमने शुरुआत की कुछ फास्ट म्यूज़िक के साथ और अभी से लेके 9 बजे तक कुछ कूल एंड सॉफ्ट म्यूज़िक पर ढले गाने रोमांटिक दिल को छू देने वाले तराने दिनों की आवाज़ योर डेडिकेशन 4028070 जहाँ कुछ प्यारे प्यारे हल्के गीत हम चलाएंगे जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे वाह क्या बात है क्या सिलेक्शन है किसी की चाहत में कोई पागल हुआ जा रहा है इसी का नाम तो मोहब्बत है इसी का नाम तो प्यार है डिड यू वॉच द मूवी हवस यस फिल्म का नाम हवस है बट द सॉन्ग्स आर सो गुड बाबुल सुप्रियो की आवाज़ में तेरी चाहत में और किसकी चाहत में किसने क्या कर दिया ये गीत स्वीटी और स्वीनी के लिए बहुत बहुत प्यार के साथ ये गीत हम चलाएंगे परी की ओर से उनकी मामा रानी उनके पापा साइलेन और उनके पूरे परिवार के लिए ये गीत रीता की ओर से साइलेश स्वस्ती अनुष्का और सब फैमिली के नाम यही भी ऐसा गीत हम चलाएंगे सभी स्टूडेंट्स और अध्यापक दोस्तों के नाम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं यस अगले सप्ताह से मॉक एग्जाम्स फॉर ग्रेड 9 ग्रेड 11 एंड ग्रेड 13 सो गेट रेडी गाइस फॉर द मॉक एग्जाम्स अभी के लिए सुनिए गाना बहुत ही प्यारा सा गीत है तेरी चाहत में

काश हर किसी को ऐसा प्यार करने वाला मिल जाए जिससे वो मरने लगे मिटने लगे, और किसी का साथ अगर मिल जाए तो जीवन कितना खूबसूरत बन जाता है। इसे के आने से जिंदगी में नया चांद नजर आता है, जिंदगी में अच्छा लगता है किसी के आने से, और किसी का

साथ इतना प्यारा होता है कि जी चाहता है कि हम बस उन्हीं के साथ गुजारे, रात दिन उसके साथ रहे और सुबह शाम उनका दीदार करे। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा जीवन साथी है, कोई ऐसा हमनवा, ऐसा दोस्त है तो उसे संभाल के रखिएगा, क्योंकि ऐसा प्यार करने वाला कम ही होता है इस दुनिया में। One of the best celebrity tracks of the yesteryears.

हम कैसे उन्हें बताएं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं हम कैसे उन्हें बताएं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं अगर वो इस दिल को चीर कर देख ले तो उसे बस उसी का नाम सुनाई देगा इतना प्यार करते हैं हम उनसे इतने चाहते हैं हम उन्हें फिर भी वो यकीन नहीं करती कि हम उनसे इतना प्यार करते हैं वो सोचते हैं कि हम बस यूं ही फेंक रहे हैं पर हम सच्चे दिल से कहते हैं कि हम बस उन्हीं से प्यार करते हैं अगर वो दिल चीर के देख ले तो उसे बस उसी का चेहरा नजर आएगा उस दिल में ये दिल है बस उसी के लिए

दिलों की आवाज प्रोग्राम रेडियो मनोरंजन की लहरों पे रात के 7 से 9 बजे के बीच ये प्रोग्राम रोज चलता है मंडे से लेकर संडे तक एमबीसी और इन फ्री रेडियो मनोरंजन पर। अगर आप हमें ऑनलाइन सुनना चाहते हैं तो क्लिक करें www.mbcradio.tv, फिर क्लिक करें लिसन और इन फ्री रेडियो मनोरंजन। रात के 8:26 हम जानते हैं कि आप लोग इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं और आप गुनगुना रहे, एक दिल है मेरा, दिल है एक, दिल ही तो है। और अब कोई किसी पर मरने लगा है, कौन है वो जो किसी पे मर मिटा है? ओए होए, जरा उस दीवाने का नाम तो पूछे, कौन है वो दीवाना जो अपने दीवाने के प्यार में पागल हुए जा रहा है? हम तुम पे मरते हैं टाइटल ट्रैक लता मंगेशकर साथियों की आवाजों में। ये गीत विनय की ओर से आशा के नाम, एंड विनय लव्स आशा सो सो मच। और प्यार की बातें होती हैं बड़ी प्यारी, अच्छी अच्छी बातें हैं कि नहीं? तो जरा आप भी इन प्यार की बातों में खो जाइए, हम भी खो जाते हैं। इट्स अ वंडरफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी हम तुम पे मरते हैं।

हे रांझा रोमियो जूलियट, जी हाँ, ये सब प्यार में इतने पागल थी कि क्या बताएं। और ही रांझा की प्यार कहानी, रोमियो जूलियट की प्यार कहानी सभी लोग जानते हैं। कभी कभी प्यार के हाथों इंसान मजबूर हो जाता है, कभी जो नहीं करना चाहता वो कर बैठता है और जो नहीं करना चाहता वो कर देता है। और प्यार दोनों ओर बराबर होना चाहिए, एक तरफा प्यार वन साइडेड लव नो, ये चलता नहीं है। अगर प्यार दोनों ओर बराबर रूप से हो तब ये प्यार जाकर आगे बढ़ता है, और प्यार बढ़ता रहता है। हम इंसान मर जाते हैं पर ये प्यार दिलों में हमेशा रहता है। प्यार एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म और जन्म जन्म तक यह प्यार कायम रहता है। और जिस व्यक्ति से आपकी शादी हुई है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि वही व्यक्ति है शायद जिसे आप पिछले जन्म में मिले थे और इस जन्म में वो आपका जीवन साथी है। किसी ने क्या खूब कहा, देयर इज नथिंग कोइंसिडेंस इन दिस वर्ल्ड। जिन लोगों से भी हम मिलते हैं हमारा उनसे कोई ना कोई रिश्ता अवश्य होता है। प्यार के लिए चार पल कम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे। कहाँ थे तुम, कहाँ थे हम, कौन जाने। अक्षय याग्निक की मीठी सी आवाज, फिल्म का नाम दिल क्या करे। निशान सिंह चुबाजी, यह गीत आपके नाम, आपकी प्यारी सी पत्नी के नाम भी ये गीत चाहता है।

काश हम वहां होते और काश वो भी वहां होती तो आज हम जुदा न होते आज हम एक दूसरे के साथ होते हाथों में हाथ डाले हम आगे चलते पर अफसोस ऐसा ना हो सका और हम तुम बिछड़ गए कितनी प्यारी प्यारी आंखें हैं उसकी कितनी प्यारी प्यारी आंखें हैं उसकी उन आंखों में डूब जाने को मन करता है उन आंखों में डूब जाने को मन करता है उन आंखों में समा जाने को मन करता है और वो कहती है क्या देखते हो जी इन आंखों में क्या रखा है जो तुम इन आंखों को देखते रहते हो हम बस उनसे कहते हैं जब हम तुम्हारी आंखों में देखते हैं तो बस हमारा चेहरा तुम्हारी आंखों में हमेशा के लिए समा जाता है वाह इस तरह से दीदार किया जाता है किसी का किसी की आंखों में खो जाने का मन करता है किसी को किसी के चेहरे को देखने का मन करता है ये चेहरा नहीं ये चांद का टुकड़ा है इसे देखते रहिए

वो हमसे पूछते हैं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं वो हमसे पूछते हैं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं कैसे बताएं हम हमारे पास तो वो लफ्ज़ है ही नहीं जिनसे हम प्यार का बयां कर पाएं अगर वो अपना सर हमारे दिल पर रख दे तो उसे सुनाई देगी बस उसी की आवाज़ जो इस दिल में धड़क रही है धक धक धक धक अगर आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं तो अच्छी बात है प्यार दोनों तरफा होना चाहिए तब प्यार का मज़ा कुछ और आता है नेक्स्ट गाना फिल्म कुदरत से लिया गया हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते सभी नए कपल्स के नाम जिनकी शादी हुई अभी हाल

साथ में निवेदिता और सुरेश साहब उनकी शादी हुई पिछले सप्ताह एंड दे आर नाउ ऑन हनीमून दे आर नॉट इन मॉरिशस दे आर इन दुबई और वहां से हमें सुन रहे थैंक यू जी हमारा साथ देने के लिए और कनाडा में है इस समय यस केविन दुखेत है कनाडा में दीपा तिवारी दुखेत आपके बेटे और आपके पति के नाम अगला गीत लंबा जी स्विट्जरलैंड में है यह गीत आपके नाम आपके पूरे परिवार के लिए ऑस्ट्रेलिया में है अजय और पूनम चिंताराम उनके बेटे बाल गोपाल और सब चिंताराम परिवार के लिए सो ऑस्ट्रेलिया के लोगों यह गीत आपके नाम और पेरिस फ्रांस में बहुत से लोग हमें सुन रहे और प्रेमिला है वहाँ से कह रहे प्रताप जी यहाँ पर बहुत बहुत गर्मी हो रही है 40 to 43 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर और वहाँ का जो मेट्रो स्टेशन है कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में और गर्मी होगी बाप रे बाप उतनी गर्मी फ्रांस में और यहाँ मॉरिशस में कब कभी बहुत ठंड है सो यू कैन सी द कंट्राडिक्शन अगर एक तरफ यहाँ पर साउदर्न हेमिस्फीयर में मॉरिशस में ठंड है मस्करीन आइलैंड्स में एंटीसाइक्लोन का असर है तो वहाँ पर गर्म हवाएं बह रही है और लोग कहते हैं कि रात को वहाँ पर लोग सो नहीं पा रहे दिन को तो जैसा लगता है जैसे आग है चारों ओर और रात को भी सो नहीं पा रहे तो दुआ करते हैं कि ये गर्मी कम हो प्रेमिला जी यू आर फ्रॉम पेरिस एंड यू लिसनिंग टू मी द नेक्स्ट गाना फॉर यू एंड फॉर ऑल द लवली पीपल इन पेरिस एंड फ्रांस कितना तुमसे प्यार करते हैं हम चलिए एक साथ सुनते हैं इस गीत का जो म्यूजिक है एकदम लाजवाब गीत के बोल दिल के तारों को झकझोर देने वाले हैं हर प्यार करने वाला अगर ये गीत गाए तो प्यार करने वाले हमेशा खुश रहें

लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइस एंड गर्ल्स, इस गीत के बाद हम आपको छोड़े जाएंगे और एक गीत के साथ। फिल्म का नाम होगा कल की आवाज़, किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दे। 9 बजे दिनों की आवाज़ समाप्त हो जाएगा और अगला प्रोग्राम शुरू होगा 9:01 पर रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर भोजपुरी तड़का, और ये प्रोग्राम लाइव होगा रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर। सब मिलते हैं 9:01 पर रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर और लाइव टिकटॉक पेज ऑफ रेडियो मॉरिशस पर। सुनते रहिए प्यार से MBC रेडियो मॉरिशस, MBC रेडियो मनोरंजन।

0: continuous music. RM3.
1: 819 kilohertz. This is
2: Radio Marches. Radio Marches.
3: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा
4: सब संगत चालों के और जय प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह तो हर मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस के फ्रीक्वेंस 719 किलोहर्ट्ज़ और रेडियो मनोरंजन 94.95 98.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज है बुधवार की रात, बुधवार 24 जून साल 2026 और जून महीना थोड़ा सुन दिक्कत नहीं देरी कराता जाए कि हाली हाली नहीं जाता। और बोला तो संगत यार लोग लेता हूँ कैसे अलग बात लोग लगे मौसम कैसे बात दीर्घ बता बाप भाई कहते ठंडा कराता भैया हड्डी हड्डी में ठंडा हिलाता का कर भैया सर्दी के महीना बात है मौसम ऐसे ही रही तो लोग अपन गर्मा गर्म कपड़ा पहनने रह जा और हमने के साथ दिया बहुत वही तरह का प्रोग्राम अभी से लेके रात के 9 बजे ले अभी से लेके रात के 11 बजे ले मुँह फुला गई दिख रहा ना। शाम के 6 बजे से 9 बजे ले रली सर रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर नई सोच जिनों की आवाज़ और अब हम भोजपुरी तड़का अभी से लेके रात के 11 बजे ले थोड़ा मन करता कोनो भी भोजपुरी गीत सुने के तो नंबर वा घुमैया क्या जगह दे विद जगह विद सैंक या फिर यहाँ पर टिकटॉक पेज पर हमने के दिखा था वजह तो यहाँ पर सब अपन मिसाज टाइप करे याद रखे प्रोग्राम चला था लाइव टिकटॉक पेज ऑफ रेडियो मॉरिशस पर जहाँ पर हमने के दिखा था वजह और रेडियो मॉरिशस पर सुना था वजह रेडियो मनोरंजन पर भी। तो पहल का गाना जोली छोकरी से प्यार करीरा कुणाल हिरीलाल ये भोजपुरी के राजा हवन है। गीत चली वनीस वनीषा खातिर साथ में नीटू बुटू खातिर फिर वीर बहादुर रवि सुकना और है गीत चली प्रतिमा खातिर लकी वुमन साथ में रू आदर्श बिहारी गंगा दीन मनीष वर्षा दुर्गा श्रेष्ठ दशरथ पटेल तेज सुनातन सुभावती हीर बबीता अंबर लामा सिल्वाना और भी आप संगत लोग कादेर भगालू गीत हो खातिर जोहो सुमन करिश्मा और गीत चली सुनीति सहाय बीना भी बीना की प्रोग्राम बड़ी अच्छा लगता है वो खूब नाचता से कमरवा डुलावता रेखा रामा नमस्ते जी है गीत और नाम सुनील अमृत है गीत और नाम चलाओ अबजा अंजेलिया अंजेलिया 123 है गीत और खतीर वाह रे वाह अक्षय कनाई जी है गीत और नाम

सब परिवार खातिर शशि जी गीत हो खातिर मदीला विशाल मंडप इतली से अवन हेलो विशाल भाई ये तय गीत हो खातिर सूरज बिमल सलमान शबनीज वीर और रित रितीश उजीर फाउसी चलो सब रेडियो मोशन सर रेडियो मनोरंजन के संगतिया आलू के नाम पहल का गाना और बोलते हैं कि प्रोग्राम में केवल गीत नहीं चली बॉलीवुड न्यूज़ कहानी नाटक चुटकुला ढेर कुछ चलने से ये प्रोग्राम में अभी से लेके रात के 11 बजे ली तो दुलार दुलार परिवार के नाम भी अगला गीत चली साथ में एक लोकांचो गीत हरो नाम सिंधी रमेश सुबोनी रोशनी तो जितना कोई अभी उनके टिकटॉक पेज पर दिखा था रेडियो मोशस के और रेडियो मोशस रेडियो मनोरंजन पर सुनाता था गीत लोग के नाम जोली छोकरी से प्यार करीला जिकर खातिर हम रोज जीला कैसे बदला बोके गीतवा गेले हवन कुणाल हिरीलाल

बॉलीवुड सिंगर ढेर फिल्म में गीत गए लेवन पर गला सोते आजकल उतना अच्छा नहीं बा और थोड़ा बीमार रहलन धीरे धीरे थोड़ा रिकवर हुआ था और कल नई दिल्ली में उगा रहल ओकरा मिलल बा पद्म भूषण अवार्ड यस ये मिला लो कि प्रेसिडेंट के हाथ जन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कर हाथ द्वारा कर कर कमलों द्वारा आका यज्ञ के ई पद्म भूषण अवार्ड देवल गल बा और बोलल जा रहा मानल जा रहा कि जन

Yagnik receiving Padma Bhushan Award in the, by the President of India, Draupadi Murmu ji. Draupadi Murmu aaran Mauritius sang ke yaad ba. और बेशक उक्रिकर कमलों द्वारा अर्का याग्निक के पद्म भूषण अवार्ड प्राप्त होलवा। रात के 9:12 और अगला गीत सजनिया आजेश ठाकुर प्रसाद गीत वा गेले वो ने गीत चाहती सा योगेश राम प्रसाद के नाम फिर सरबर देवयानी सुका सलीमा और ये गीतवा चुन है प्रवीण बुधन के नाम वैष्णा रामबर क्लोदेल जाक भी उनके साथ उतन शंकर थापा मीता राम खिलावन और प्रतिमा तीना दीना गीत और खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ और रीता भी रीता सितालू साधे उतन गीत कर बेटा शैलेश बेटा शैलेन बहुरानी बहुरेश्मा फिर पोती अनुष्का परी और सब कर परिवार के नाम और वीर बुधू जी हमने के साथ देवतन सलोनी गया दिन गीत और नाम बहुत बहुत प्यार के साथ और जितना कोई खुशी रहे गीत सुने के सजन न्याय गीत तलो के नाम आदेश ठाकुर प्रसाद की जुबानी

प्रयोग करके अपन श्वास पर ध्यान दिया और ग्लासे उसे नहीं पिया, अभी खातिर का एक बार ये ठंडा करा था आजकल। और रात के 9:17 हुआ था और बेशक हमी तुल के साथ देवते ही सर रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर रात के 11 रही। और अगला गीत है ललिता पुनीत की गावल हमर हमरो ससुरवा और एक गीत चली रूपचंद मिर्जा खातिर आसिया बुधू और दंगली दाही थे तो और नाम भी संजय बिहारी गीत और कथे तो और पत्नी तो सब परिवार के नाम सत्यम सुबोल इमानुएल ऑंगचिल एसएसएस मे बैग सेवन है गीत और कथे तो सब परिवार के नाम। और जयान कैसे वा भाई जी जयान है गीत और कथे तो सब परिवार के लिए रिहाना हवन फिनिक्स से नोटरडेम से रिहाना और सब रिहाना के ऊपर परिवार के नाम है गीत चली नंदिता है गीत और नाम बहुत बहुत प्यार के साथ हमरो ससुरवा आपके कर ससुर के कौन सी बोल चले एक साथ सुने ललिता पुनीत की आवाज़ में।

आजकल देखा जैसे ढेर कोई की सर्दी खांसी जुकाम हुआ था तो ये सब बच्चे खातिर चैनल तोरा ढेर मना विटामिन सी खाई के जैसे कि मौदागिन बा बंगसाई बा व्यागामुद बा ये सब के

0: बचपन गीत तलो के मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर अगला गीत सुमन के गमत गीत चलाते विषम गंगा दिन खातिर चांदो दादी खातिर श्रियान खातिर गीत चली बहुत बहुत प्यार के साथ कृष्णा थारू गीत और नाम रूपचंद मिर्धा गीत और खातिर और दादी चांदो बड़ा जोर नाचता अपनी के संगे संगे पामेला खातिर भी गीत चली बाबूला शीला राम बिचन लो दे गीत हो नाम राम तुलसा एलबीसा एलबीसा बारीमत गीत हो खातिर जानी क्यूटी गर्ल हेमा दया प्रीतिशा अमीशा धन बहादुर और जी के नाम भी बहुत बहुत प्यार से गीत चलावती सर साधना भी हमने के देखा था और सुना था बहुत बहुत प्यार से बतन प्रताप जी प्रोग्राम एकदम चकाचकबा मंगल सुरेंद्र जी है गीत और खातिर करिश्मा रामचाल मंगल सुरेंद्र देव है गीत और नाम एसएसबीएम के साथ देवतावन ना प्यार से सुना था वंजा बहुत बहुत धन्यवाद अंजल बीना गीत और नाम राजमन्ना जी हमने के साथ देवतावन राजमन्ना जी है गीत और खातिर चिबुग लोंग राजा और प्रवीण भैरव स्टीव और सब परिवार लोग हमने के साथ देवतावन सरोज बूबन जी है गीत और नाम बहुत बहुत प्यार के साथ और हाँ रूपचंद मिर्धा बर्तने को नेपाली सॉन्ग नहीं भोजपुरी प्रोग्राम है ये के नाम बा भोजपुरी तड़का ध्यान से सुनिए जा प्रोग्राम कैसे है प्रोग्राम ये है कि थोड़ा सा भोजपुरी गीत मांगे कि नेपाली सॉन्ग कैसे चली बोले था एगो संगतिया बा लाइन पे कैसे मिल जा हेलो जी नमस्ते के हवा जा थोड़ा स्वागत बा कल्याणी कैसे समाचार ठीक ठाक
1: धन्यवाद कितना तेल उतना आचार
0: अब कौन कौन सी के आचार पीमा के आचार आम के आचार
1: अब कैसे हो ठीक
0: हम
1: हो?
0: हम ठीक हैं तू कैसे हो हर अगला
1: एक गाना मांग
0: हाँ बोला
1: मांगना चाहती हूँ बरकी मसाला पिसेला
0: था सुन गा दम नहीं खातिर
1: नहीं जाने लाके गाय का
0: अरे पफन है बरकी मसाला पीसेला ना
1: बरकी मसाला पीसेला
0: और छोटकी
1: छोटकी राह देखेला
0: हम तो छोटकी नाचेला
1: नहीं मैं छोटकी हूँ वो बरकी है
0: अब अरे बोला गीत के कर खातिर
1: ये गाना मेरे लिए मेरे दोस्त के लिए और सभी सुनने वालों को भी आपको भी
0: अभी कितना बज रहे रात के 11 बज रहे उनके साथ दिया जा
1: जी जी और मेरी भगिनी गायत्री के लिए सब हदम ये
0: कहाँ रह रहा गायत्री कहाँ रह
1: गायत्री जो नुवेर फ्रांस रहती है उसके बेटे अजय के लिए
0: ओके जी तो जरूर चलाओ अब जा
1: अच्छा जी
0: ओके
1: बहुत शुभ रात्रि
0: शुभ रात्रि तो और बोलती जा और बेशक दमन अपिगादू हमने के देखा था वन लाइव टिकटॉक पर कैसे भैया प्रोग्राम अच्छा बुझाता ना मन करता नाचे के तो सुमन के गमट और बरकी मसाला पिसेला बैक टू बैक डू गाना चला अब सर हाई की चली सुरेंद्र मंगल देव कुमार के नाम साथ में अमीर खान जो नवन गीत सुने को था तो चल एक साथ सुनेगी तो दो गीत बैक टू बैक एगो रही सुमन के गमट और दूसरा रही बरकी मसाला पिसेला

बड़की मसाला पीसेला छोटकी भी काम करेला और ढेर कोई हमनी के साथ दिवत अभी रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर और हमनी के टिकटॉक पेज और रेडियो मॉरिशस पर भी ढेर कोई हमनी के साथ दिवत तब हमनी तलो के सुनाओ जा एगो कहानी सापेरों रोज है गी सुन ले हो ना हां ता आगे के जमाना में रह लेगी जो कहानी देखो छोकरी रहल को नाम रहल सापेरों रोज तो अपन दादी के बड़ी खुशी रहे तो एक दिन ओकर दादी बीमार पड़ गल तो माँ सापे अंगूज के बोले था बेटी एगो एगो पैया में गातू तू दलग बा और बोलक भाई दादी के जाके दिए दादी बीमार बा तो सापे अंगूज जन है एगो लाल लुगा पहन लगे थे जोली रखेला तो जंगल के सीमा में जाता तो जब जंगल के सीमा में जाता तो वहाँ एकाएक लेलू चला तब लेलू के देख के छोकरिया डर गल तो छोकरिया बोला था लेलू बोला था कहाँ जाता हुई तो साफे अंगूज बोले जाते हैं मर दादी लगी बोले चल दादी कहाँ बोले हाउ देख हाउ जो घरवा बना वहाँ पर जो बरत है पीछे नाली में वहाँ पर ही मर दादी रहेला हम जाते हैं बीमार बा हम जाते हैं एक बार खातिर गाते छोरे तो साफे बोले जा जा मर लेका ए तब मर लेका बस लेलू का कर लग लेलू वहाँ से इतना जोर भागल वो कहाँ गल वो गल दादी लगे वहाँ जाके का कर लग वहाँ जाके वो दादी के खा ले लग अब दादी के कपड़ा पहन के लीली में अलोंसे और बार तो सापे अंगूज गते गते चुकरिया जाता गते गते गते गते गल वहाँ पर ही तो लापो तापे करता तब बोला था लावा जो लेलू पर लावा समझे करके बोला था के हे बोलता हम सापे अंगूज हैं हो तो हर नातीन तो बोले आओ आओ भीतर और जब सापे अंगूज भीतर गए तो देखा था दादी के लीली में तो दादी के थोड़ा थोड़ा धोल लौकता बड़ा बड़ा आँख लंबा लंबा दांत लंबा लंबा नाखून तो बोला था दादी दादी तुहरों तो कहे इतना बड़ा बड़ा बा बोले तो के देखे खातिर बेटी तो बोला दादी दादी तुहर तो कान कहे इतना बड़ा बा बोले तो के सुने खातिर बेटी तब बोले दादी दादी तुहर तो दांत कहे इतना बड़ा बा जैसे उसे बोलक तो बोले तोरा खाई खातिर तब लेलू तो झपटलक सापे अंगूस पर और सापे अंगूस के खा लेलक खाली लग मतलब वो के आवाले कर दिलक सवालू कर दिलक अब का होल तो वहाँ पर ही एगो शास्य रहल एगो हंटर तो उधर से गुजरत हल तो वही सब तमाशा सुनलक जब तमाशा सुनलक तो आल वहाँ पर ही घरवा में हिलल तो का कहल लेलू के पेट काट के निकालेला सापे वहाँ घुस के और दादी के तब पेटवा में घोस डाल के सी देवेला और लेलू जब उठेला तो के बुझा कर पेट ढेर भारी बा

कहते जाला, और जैसे जाला को नदी के पास और नदी में गिर जाला तो लीलू मर जाला, और सापे वहाँ रोज अपन दादी संगे जो है वहाँ पर कहानी वहीं खत्म होला। तो है जो कहानी है सापे वहाँ रोज ये छोटा सा हमने सुन लें सर, और आजकल के लड़का लोग के भी हमने इच्छा बताया कि एगो बहुत ही सुंदर कहानी है। कैसे गो एगो लड़का अपन दादी की जाला दिखे और उकर खातिर अपन जान जोखिम में डाल के जाला। तो कहानी के बाद अब सुनब चाहे एगो गाना गिरीश रूपचंद गीत अकेले वन तो हर जवानी और गीत श्रवण बुजैल के नाम ज्ञान श्याम गीत और नाम फिनाज विनोद भंडारी गीत और खातिर अशिता गीत और नाम तेजू इम्तियाज प्रभु सिंह संतोष राय है गीत और खातिर शंभू और दाविस गीत और खातिर बेफिक्र बॉयज लुकमान खान और जितना कोई अभी हमने के देखा था और सुना था रेडियो मनोरंजन रेडियो मोशस पर गीत लोग के नाम तो हर जवानी

जिंदगी में सब समय एक समान नहीं रह रहा, कभी कभी तो समय अच्छा रहे रहा तो दिखे रहा सब कुछ अच्छा जा रहा, पर कभी कभी समय जब बुरा जा रहा तो सब कुछ बुरा लगे रहा, हाँ कि नहीं। अगला गीत पूर्णिमा फकीरा खातिर चरावप्स गीत गीता मंगले वन करुणा

और एक संगत्या मंगले वन गीत भी भाई भाग गल कस्या लबाका रसितूर की बसंत सुपोल के आवाज में चला वो क्रिएशन खतीरे गीत संध्या कैसे बस समाचार श्रवण वुजैल गीत हो खातिर लक्ष्मण बिस्ता नजीर बिहारी बहुत बहुत प्यार से गीत और खातिर चली भागल खसिया लबकार सितुर की इंदिरा खातिर वे गीत इंदिरा लौतन गीत थोड़ो खातिर ओके स्वस्ति की ओर से गीत चली कर सब परिवार के लिए भागल खसिया लबकार सितुर के भागल खसिया लबकार सितुर के लबकार सितुर के खांसी कहाँ भागत है बाबा स्वस्ति देखिए खांसिया थोड़ा गए था क्योंकि बांध के रखिए प्रताप अभी आवा तो के लिए जाए उमा दर्शन भी बड़ा जोर नाचा था के संगे हाय शिनी है गीत और नाम चली बहुत बहुत प्यार के साथ और जितना को ये भी सुना था रेडियो मोशन रेडियो मनोरंजन है गीत तो लोग के नाम बसंत सुपोल की आवाज़ में भागल खसिया लबकर सितूर के

वर्ल्ड कप फीफा 2026 के आज कल को नशा सबके ऊपर चढ़ रहा है, छोटा से लेके जवान ले, जवान से लेके बुढ़ाले सब कोई लेके खोज तक कौन भी क्वालिफाई हुई और फिनाल में जाई। और कल 26 जून के कौन कौन मैच खेला जाए फीफा वर्ल्ड कप 2026, कल गुरुवार कल फीफा की मैच खेला जाए, नॉर्वे अगेन फ्रांस, फिर सेनेगल इराक के खिलाफ खेली, उरुग्वे स्पेन, फिर कप वर्ड राउडी सऊदी अरब, न्यूजीलैंड बेल्जियम और मिस्र ईरान। और कई बजे सब मैच खेला जाएगा, नॉर्वे अगेंस्ट फ्रांस कल दिन के 11, कल दिन के नहीं रात के 11 बजे कल, और सेनेगल और इराक रात के 11 बजे खेली मैच, उरुग्वे और स्पेन फजर के चार बजे, कुवैत और सऊदी अरेबिया फजर के 4 बजे, न्यूजीलैंड और बेल्जियम फजर के 7 बजे, और नहीं 26 जून के दो मैच रही, एक नॉर्वे अगेंस्ट फ्रांस रात के 11 बजे, फिर 26 जून के सेनेगल और इराक रात के 11 बजे, 26 जून के रही उरुग्वे और स्पेन फजर के 4 बजे, कुवैत और सऊदी अरेबिया 26 जून के फजर के 4 बजे, न्यूजीलैंड और बेल्जियम 26 जून फजर के 7 बजे, और मिस्र और ईरान खेली 26 जून के फजर के 7 बजे। और अब ज़रा बचाव अब जाके ये सब जो मैच हुआ था और इतना पे भाग ले हुआ था तो जो है एक में ढेर पैसा है बेसी और बा और दुनिया भर से जो है एक में स्पोर्ट एथलेट फुटबॉल लोग भाग ले हुआ था तो जो है बहुत खुशी की बात है कि दुनिया भर से सब कोई

0: देश वन लोग भाग ले हुआ था और है जो वर्ल्ड कप है ये कर जो नशा है ये सब कोई पर छाल रहेला और बेशक जैसे बोल दी सके है जो वर्ल्ड कप है तय कर में देर कोई कुछ नहीं रहा देखे कि स्वीप करेगी देर कोई की मौका मिलेगा तो लोग जालन से देखे भी जहाँ पर ही हुआ था हों की नहीं है और बेशक है जो मैच है जब ढेर बना पे ही भाग नहीं मिला और ढेर कोई सब मैच स्वीप कर रहा था पर लेता हूँ चेहरा अब ढेर कोई काम करे जालन से था लेता नहीं मिलेगा पर जब शांत के आवलन से तो लोग दिखे लन सा और सब कोई बबी यही बात बोला था कि पे ही पुगाई सा खूब जी मोन ला जो फीफा डिबिल बैंसी सा जो स्वर्ण थी है के मिली था कोई बोला था लाफ्रांस कोई बोला था ऑस्ट्रेली कोई बोला था अंग्लैंड कोई बोला था कनाडा तो अभी कोई नहीं जन लगभग कहे कि अभी 11 जून के शुरू बाद जिसने ज्वेत लेक चली तो जिसने ज्वेत के पता चल जाए कि कौन पे ही शॉम्पियन निकाली तो सबको अपन पे ही के वोटिंग करा था तो हम नहीं चल अगला गीत सुनब जा राजकुमार चिंता में नहीं गई लेवन की तू ही हमार दिल तू ही हमार जिगर हुआ है गीत तो हम चला होती सर सोनिया के और से कर माता जी खातिर है गीत चली अश्वन के और से कर पत्नी कर दुगो बेटी और सब परिवार के नाम और है गीत तो हमने चला होती सर रोशन की ओर से कर पत्नी कर डुगो बेटा और सब आगा बहन परिवार के नाम और अभी को संगता बाल लाइन पे ओकर से मिले जा हेलो नमस्ते हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते
1: नमस्ते प्रताप जी
0: के हवा जा
1: दीदी माती
0: सुयाक से
1: हाँ
0: कैसे समाचार दादी
1: समाचार सब ठीक है
0: तूने देखा तो फुटबॉल
1: बड़ी
0: ठंडा दादी इससे ठंडा
1: बहुत ठंडा पालतू दाल के कोला दाल के पुलू डाल के सब सही के पुएट लेके होड़ के
0: बड़ी ठंडा
1: बहुत ठंडा
0: और अगला गीत चाची के घर खाते
1: डाल दिया अच्छी के गीत भोजपुरी गाना अच्छी के अवल गीत आयो भुला जाते है ना नमुआ अच्छी
0: बाप दादा लोग के बोली है भोजपुरी भाषा
1: देखा तो है ना बतियाला
0: ना ये चाची हम तो हमेशा याद रखी ला
1: डाल दिया है गीत हमन खातिर सब परिवार लोग खातिर संजमुनी परिवार और सुजा के कालिये के मोहित परिवार सब खातिर डाल दिया और आपके लिए भी और आपके टीम के लिए भी गीत चला देना
0: अरे बहुत बहुत धन्यवाद दादी
1: धन्यवाद आपको भी
0: ओके शुभ रात्रि
1: शुभरात्रि आपको
0: अरे बाय चाची ललिता कुशल हुवन त्रियोले से चाचा आत्माराम सब कलकतिया परिवार के नाम सब हरकु परिवार के नाम जो नहलन त्रियोले और लाफ्लोगा से शालिनी हीरू हमने के साथ होते हैं पति बा विशाल कद्दू को बेटी और सब हीरू परिवार के नाम अगला गीत चली और रही गीत हमने चलाते सब बैन की ओर से वनीसा के नाम और गीत चली साइलेंट और हिरीश के नाम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स अवन सर और हमेशा एक दूसरे के साथ देवलन सर जिगरी दोस्त साइलेंट की ओर से कर दोस्त जिगरी दोस्त लंगोटिया यार हिरीश के नाम बाप दादा लोग के बोली

0: बाप दादा लोग की बोली है भोजपुरी भाषा बेशक। और रात के 10:09 होता तू सुना तो रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन तो लोग के पसंदीदा प्रोग्राम चल रहा था भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमच, जलसा, हंगामा।
1: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर। गमच, धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर।
2: भोजपुरी तड़का प्रोग्राम चलाता है रात के 10:10 पर, अभी 11 बजे रितलों के साथ रही और ये प्रोग्राम जारी बा, जहाँ पर एक से एक चकाचक भोजपुरी गीत चलाए जैसे तलों के पसंद पर पर फोन कॉल्स या फिर हमने के टिकटॉक पेज पर अपन तेजिका सक बजा भेजे। जोश में आके आगे पीछे बहुत ही प्यारा सन गाना गीत चलाए से पहले बता दे रहा कि आजकल हमने की जो अभिनेत्री है रेखा जी, वो फिल्म में आजकल नज़र नहीं आवाता, पर हाल ही में सुना बा कि आमिर खान के प्रोडक्शन बानर थली वेंसैंक इमरानी भी ऐसे रखल था वहाँ घर रहल और आमिर खान से बोलन कि ओकरा मन बा आमिर खान संग एगो फिल्म करे कि बहुत जल्द। तोरा बता दे रहा जाए कि रेखा जो है ओकरा 71 हो बा, पर ओके देखबा तो पार्ट करा जैसे 18 के छोकरी का है कि वो अपन लाइफ स्टाइल, अपन डाइट फॉलो करेला, मेडिटेशन, प्राणायाम ये सब और ढेर मना आर्टिस्ट लोग देखे दिखब तब बुझाला लाजमे चलन सब, रेखा के दिखब अभी ये लाजमे तब बोलबा जैसे कि वो अभी जवान में बा। तो रेखा जी अपन ब्यूटी पर ध्यान देवेला, अपन ब्यूटी पार्लर जाला, स्किन थेरापी सब फॉलो करेला, ये खातिर जुन है वो इतना जरूरी लोग गिरा। तो जितना भी रेखा के फैंस हमने के अभी रात के देखा था सुना था तो बता दे जाए रेखा के मन बा

आमिर खान संगे को फिल्म करके और बहुत जल्द ये फिल्म जो है बनी, ये फिल्म के डायरेक्शन करियन स्वयं आमिर खान साहब। जब कब से जो फिल्म निकली आमिर खान और रेखा तक सेंचुरी का है कि

और जिन दुनिया जलीजील हो रहा है जिया मैं कोदो में हो रहा और हमनी के देश नंबर वन निकल रहा सब इप्रेव में क्या बात है अली मोरिस ये पर एक गीता निकल रहा हूँ कि नहीं अब बोलब से कि समय की जो न धारा है उसका साथ यहाँ चले कि क्या कि समय आगे बढ़ते जाता टिक टिक टिक टिक घड़ी की सुइयां इशारा करता कभी मॉरिशस में रात के 10:19 होलबा अभी 11 बजे हमने चलो के संगे संगे नाचब सा ये अगला की टिक टिक टिक सुनबावती बिजमावती गीतवा के गेलक बा बिजमावती संपत गए गीतवा माफ करिए गीता चाहते से विनय गणपत खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ जाजी खातिर कोदादीन सलमा गीतोरो नाम फिरोजा और ही गीत चलाब से संगीता दसोई देवन नदी वाला आप होवन कनाडा में हमने के साथ देवत होवन बहुत बहुत प्यार से अंतवानेट वेल है गीत और खातिर अजीता सितोहल है गीत और नाम हाय फरजाना सलाम अलैकुम संजीवनी है गीत और खातिर जोवानी मिनेव वो भी हमने के साथ देवत होवन हमने की टिकटॉक पेज पर सो नेक्स्ट गाना फॉर यू अंजू मीता रोडियो है गीत और खातिर लोहा रोज फिर सर्वर और चेता कोई के लाइन नाम ही रहता तो बस हमने के टिकटॉक पर देखा था वह तक गीत हो नाम संध्या बुद्धराम जी है गीत हो नाम चली बहुत बहुत प्यार से टिक टिक बोला था घड़ी की सुइयां अब घड़ी की सुइयां कौन सी बोला था टिक टिक टिक टिक चल एक साथ सुने

समय चुना के चला चला फिर से नहीं आवेला भैया समय बड़ा बलवान टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन कर्मन इंसान हुआ जो समय के साथ चलेगा तो समय जाया नहीं करिए अनिता पर तो अगला गीत तोहर खातिर और तोहर सब परिवार खातिर लखन अश्मित हवन मेबक से जी हाँ अपन मामा की याद करत हवन अगर मामा रहन और जे मधु और बहुत बरिस ले और जे मधु काम कर लन के रेडियो पर संगी हिलरी से काम के याद बा हम और जे मधु और बेशक एकदम जो जो प्रोग्राम करे पर अफसोस वो भगवान के प्यारा हो गल तो लखन अश्मित अपन मामा के याद करता और मामा के हमेशा याद करियन कह के एगो माँ जो है वो हमेशा अपन लेका के दिल में रहे रहो कि नहीं तो अश्मित लखन बहुत ख्वाश हो रहा बोला तई का सका बोले बेटा दुनिया में सब कोई आ रही से सब कोई एक दिन परी जाए के दुनिया से का कब सस बारी बारी से हमियों के तू आए पर चेहरा ढेर को आवाज़ है कि आज की दुनिया में और जो लड़का के माँ नहीं रहे हमने जानी ना सर बहुत कठिन बुझाला पर काश सकब्जा करे भगवान की मर्जी के आगे कुछ नहीं सकब सक करे अश्मित बों को आश मामू थोड़ा ढेर मना प्यार भेजता हमारे और से ढेर मना प्यार और आशीर्वाद भगवान करी तो अपनी व्यस्ते में निमन से पास हो कि निमन काम करब और तू बड़ा आदमी बनब ई मामू थोड़ा दिल से आशीर्वाद देवता इंदिरा हवन हेलो नमस्ते दामिनी मिमी गीत और खातिर अभिसन जी नमस्ते अगला गीत और खातिर हमार दोस्त मच्छी मार और ये गीत चाहते इस जी हाँ वंदना खातिर वंदना बहुत प्यार से अपनी के देखा था उन्होंने सुना था वन ईसा पोलो भी हवन शाया फिर इरफान खान गियोम और स्वेनाल स्वेनाल तिलक कैसे समाचार गीत तोहरो नाम तोहर सब स्टूडेंट्स तोहर तू एगो अध्यापिका हो कॉलेज में पढ़ावे ला तो गीत तोहर खातिर तोहर कॉलेज लोग के नाम तो लोग तोहर स्टूडेंट्स के नाम भी अर्जुन शंकर गीत तोहर खातिर रेशमा भी हमने के साथ देव थवन और जहाँ ले हमने की आवाज़ पहुँचा था और जहाँ ले हमने की टिकटॉक पेज पर सब कोई हमने की फॉलो करा था तो गीत तोहर खातिर राजेश उगर है गीत तोहरो नाम चली हमार दोस्त मच्छी मार ये मच्छी मार जो है ये मच्छी मरवा लोग फजीर के ढेर बुनेरे जा रहे कहते हम लीवे है बा कहते हम कौन सी फजीर के बुनेरे एक बजे दो बजे बातों लेके चल जा रहा सर लामेर में मच्छी खोजे और दिन भर मच्छी बेचे रहन सा अपन पेट पाले रहन सा अपन परिवार के देखभाल करे रहन सा अकेले शरंगी है गीत तोरों खातिर अनिता प्रताप है गीत तोरों नाम और जितना कोई अभी रात के काम करता बोलते सबों को आज अभी लेकर लोग रिविजन करता होमवर्क करते वन सा रिविजन करते वन सा देखो यूनिवर्सिटी के काम करता या स्कूल कॉलेज के काम तो बस बोंकुआज बोला था ही और चला है गीत सब कोई खातिर मेरे दोस्त मच्छी मार गीत गेले वन सुना नोयन

रात के 10 बज के आधा हुआ था तू सुना तो चकाचक प्रोग्राम पहुँच हुई तड़का रेडियो मोशस रेडियो मनोरंजन पर अगला गीत नया सिरी लखन अश्मीत थोड़ा गीत बड़ी पसंद पड़ा था थोड़ा मन करता था सुने के तो बेटा गीत बहुत बहुत प्यार मामू की ओर से तोहर खातिर कितना हम निको सिर अली सा देख ले आज छोटा छोटी हुआ बा और बेशक गीता तौर खातिर सब लखन परिवार के नाम अश्मित और नीमी बीएम की शादी हुआ था काजी संदेश ओके और साथ में गीतो हमने चलाओ सा ओवन खातिर फिर रिवियर डिजांगी एसएसएस कॉलेज के स्टूडेंट्स लोग के नाम फिर आयान प्रवेश जीतन और

0: आशा खाती। तो चले एक साथ सुने है गीत जुन है कितना हम निको सीरली सा है द्विका एक गीत और खाती पूर्णिमा नत्यु है गीत तो नाम भूमि जय गोविंद है गीत तो नाम चलावती सर को संगत या लाइन पे कल से मिलब जा हाँ तो जब लाइन में तो बच्चे यह है नहीं कि टेलीफोन का टेलीफोन काट दे बजा बी केयरफुल। हेलो हेलो जी प्रेमिला जी नमस्ते। प्रेमिला काठमांडू से
1: जी हाँ
0: कैसे समाचार?
1: समाचार थोड़ा ठीक थोड़ा
0: हाँ इतना चलते रहे रहा इतना दुनिया के काम है ना और आज के दिन कैसे बीतल?
1: आज के दिन
0: घर ही रहा गाँव घर घूमे
1: नहीं घर ही रह जहाँ गंगा दशहरा रहा ना
0: आज पानी पानी रहल
1: हाँ पानी पानी रह थोड़ा
0: आज पूजा रहल मंदिर में करल मंदिर में पूजा करे
1: मंदिर के मालूम नहीं
0: होने गेली हो घरे हाँ तो जहाँ भी जब भगवान तो चारों ओर बा माता जी कहूँ भी सब बैठ के पूजा करे। बोलो अगला गीत के कर खातिर फट गई मोरे साजन की देवल साड़ी फट गई थी
1: छः साल
0: तो याद हो गए तो इसे मांगते हैं। अरे अरे चला दो अब से
1: गीत तारीख के धर लग रहा तो इसे याद सब उनकर बेटा बेटी
0: और आजकल नहीं जाला कहूँ घूमे परिवार लोग गन लगे नहीं जाला सर नहीं
1: हाँ जाइला जाइला परिवार मोताबा नहीं आवा था ही परिवार बना
0: मैंने और सीनियर सिटीजन बगल से जाला सब पिकनिक के सब जाते हो जा
1: नहीं नहीं जाइला
0: उतना लोग आज नहीं मिली था कोई बात नहीं कोई बात नहीं अगला गीत और खाती तो सब परिवार के लिए ओके
1: परिवार एगो जितना लोग बीमार हो जाए अस्पताल में के लिए और सब कैसे बोली जितना लोग काम करत
0: सब की बंकुआज बोलत हो जी हाँ बहुत धन्यवाद और शास्त्री बन माली है उनके साथ देवदन बहुत बहुत प्यार के साथ सुनीता राम फल जी सुनीता राम तोहल जी गीत और खतीर और कृष्णा गीत तोरो नाम चली बहुत बहुत प्यार के साथ तो जैसे लखन अश्मित गीत मंगले रहा नया सिरे के तो गीतवा चला दे जा

आज स्वास्थ्य के लिए के सबको ये जुनहर ढेर प्रकोशन लेवेला काहे कि चिकनगुनिया बा डेंग बा लाफी बा ते सब बीमारी से बचे खातिर चहला अपन स्वास्थ्य पर ध्यान दे के और खान पान पर टू ईट ए बैलेंस डाइट चार रोज के एक्सरसाइज करे के चहला समय खोजे कि नहीं बोलिए कि ठंडा करता तो एक्सरसाइज नहीं करवा ये बात झूठा है। अक्षय कुमार एक खड़ा शो में टीवी शो में बोले रहे कि व्यक्ति अगर थाउट मिनट या एक घंटा नहीं सके निकाले अपन लासौती खातिर तो कौन से अच्छी आदमियाँ जिया था तो सकब से लंबी आयु तक जिए जब हम की लासौती हमने की स्वास्थ्य अच्छा रही तब स्वास्थ्य अच्छा खातिर चेहरा हमने की बैलेंस डाइट खाए के एगो मुँह से गिरी भाई देशे में हल एग्जैसिस कसरत करे के ख्वाजा में स्ट्रेस से दूर रह के चौथा है कि हमने की शरीर की चेहरा हमेशा एक्शन में रह के मूवमों में रह के तब हमने सकब से लंबी आयु की लंबी आयु हो। अब खाली खाइब पीब एक्सरसाइज नहीं करब कैलोरी नहीं जरेब तो स्वास्थ्य कैसे अच्छा रही है ये बोला जाता अगला गीतवा में स्वास्थ्य जेकर अच्छा बा है गीतवा गैले हवन साहिल जगारू स्वास्थ्य जेकर अच्छा बा है गीत सूरज जद्दू खातिर बिना भैरव कद्दू को बेटा और हबी खातिर भी गीत चली है गीतवा चलाई सब मनीषा खातिर हाय मनीषा या है गीत और खातिर जोसेफ भी उनके साथ देव क्लोविस लोगों गीत और नाम कैलाश था गीत और खातिर पर्तोब संगीत दालिदा गीत और नाम आदर्श दयाल गास्पो जेसन नमन के साथ देव थोन गीत और नाम केमशा हेलो के केमशा गीत और नाम प्रकाश डांगी है गीत और खातिर चली स्वास्थ्य जिक्र अच्छा न न न न न न न किशन और केवा कृष्णा है गीत और नाम चले साथ सुने स्वास्थ्य जिक्र अच्छा बा

अब शादी की बात करें, अब सर कहे कि आजकल जगह से ढेर कोई शादी नहीं खोजता करे कि शादी चाहे ना करे कि भैया शादी करवा तब ना परिवार आगे बढ़ी और परिवार में नया सदस्य लोग आए और जब शादी की बात से सुख के रहा गीत गवाए सामदी के हरदी दिवास की शादी लेंदी के चौथारी है गीत बात चौथारी पर तो चौथारी में कौन चोला छोकरा जो छोकरा दुल्हा है वो अपन परिवार के लेके संगत्या करके जाला छोकर के चौथारी करे और छोकर के दिन के चौथारी होला खाना पीना मौज मस्ती और फिर में सांझ के छोकरा छोकरी के लेके अपन लगे आवला था सांझ के छोकरा लगे रिसेप्शन होला था ये बोला था माचे चौथारी की कहानी तू कौन सी में जाला जस्ती हल्दी में शादी में कि चौथारी में बोला था तो गीतवा चौथारी वाला है गीतवा चली यादव खातिर बिन मुदा खातिर मोहम्मद खातिर दालिदा है गीतवा तोरो नाम विक सिपासन है गीत तोरो खातिर रजनी है गीत तोरो नाम मनीषा है गीत तोरो नाम कविता झरी ये गाना आपके नाम भी राजू अहमद है गीत तोरो खातिर दालिदा डीजे दान भी हमने के साथ होता है डीजे दान रायन साहब जीआरके है गीत और नाम सुभाष कांजा

मनोज और नुहवीन भानु आदर्श दयाल है गीत और नाम और ही गाना कुमार बसर के नाम भी चलो सबसे चौथारी की कहानी

अब जरा बात कर आपसे पैसा के बारे में। आजकल दुनिया में पैसा के बड़ा मोल बा, कोनो भी देश में जी बट पैसा पैसा पैसा। अच्छा ना देव जुबोधन प्यार से गीत गए दे वन पैसा के बारे में। और ही पैसा नहीं रही तो कुछ नहीं भैया, थोड़ा मन करता है कुछ जोड़ी कपड़ा खरीदे के, थोड़ा मन करता है यूनिवर्सिटी जाए कि दूसर

पेई ता पैसा चेहरा पूजा पाठ के सामान के उबी पैसा चेहरा ता पैसा जुन है ओके हमने लक्ष्मी बोला सर अब ढेर को बोला हाथ के मेल है कोई बोला लक्ष्मी है कोई बोलेला पैसा चेहरा चाहिए कि कोई बोला पैसा से का हुई नहीं पैसा जरूरी है ऐ काल के कोई बीमार पड़ जाए परिवार में तब पैसा नहीं रही था कैसे इलाज करबो बोला था तो पैसा के ओकर आदर करिया है पैसा इस्तेमाल करिया जहाँ चेहरा करे के पैसा गास्वी नहीं करिया मान नबूती गैरा वो कौन है आशों बा तो कौन सी लेबे महीना के ऊ लिया नहीं कि जहाँ देख रहा जोड़ी चीज था लेके अपन काजी में डाल दे रहा नहीं ई नहीं अच्छा है जब तू जाता वो कहूँ पर शॉपिंग चेहरा करे कि हर महीना सब कुछ ज़्यादा शॉपिंग करे आजकल महंगाई के ज़माना बाय फ्लाशों बाय दुनिया भर में पी सब मोटी होता है हम जाने ना सर पर जब तू शॉपिंग करता हुआ तो एगो लालिस करिए जैसे दिमाग की ज़्यादा बाजार ले गिम किने तो एगो लालिस में लिख दिया कि दूरी भर पुल डामून एक तिबर जारी कोतान दूरी भर पियाज आधा कार पीमा कुछ चेहरा तो जब लालिशा कर बस तब पैसा जाया नहीं नहीं कर अब कौन कौन पैसा निमन से इस्तेमाल कर तब बुरा समय में पैसा के काम आवेरा हाँ कि नहीं तो चलो बगला गीत सुनब जब पैसा के पीछे न भाग हो गीत रेशमा खातिर रहल अंतयाक भीम साहा भवन गीत और नाम माम्बा गीत और खातिर शशिका राम सहाय दिनेश हरी फिर रेशमा हवन और स्कॉट साहब फिर बिराही मगर मिंता हवन कौच मेरी तैसे सोनम गौर और हई गीत हमने चलावत इस बिंदिया के नाम चल एक साथ सुने पैसा के कौन मोल बा

संगतिया लोग चंद्रदेव जी बोधन की गावल है गीत के संगे पैसा के पीछे ना भागो हो है गीत के संगे भोजपुरी तरह का प्रोग्राम यह बड़ी समाप्त हो जाए रात के 11 बजे सुन बजा सुनने पर प्रोग्राम सांझ के 6 बजे से अभी भी हमके साथ रह जा रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर हमने के तलों के मुलाकात हुई कल गुरुवार के कल बीफे के सांझ के 4 बजे से 5 बजे तो और से मिल जा रेडियो मनोरंजन पर प्रोग्राम रही दिल से मिले दिल रोमांटिक गीतों की पेशकश तो कल तक हमने की इजाजत दे और जय प्रताप सिंह सितालू की ओर से सब कोई की प्यार भरा नमस्ते सलाम शुभ रात्रि बाय बाय

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: जिंदगी के सफर में कुछ पल ऐसे होते हैं जो कभी पुराने नहीं होते, और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हर दौर में दिल को छू जाते हैं। नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम, मैं हूँ आपका दोस्त जो साथ देने आ गई है इस खूबसूरत से शो में जिसका नाम है सुनहरे पल, जहाँ हर सुर के साथ जुड़ी है एक याद, एक एहसास, एक कहानी। तो चलिए लौट चलते हैं उस हसीन दौर में जहाँ बॉलीवुड के गीत दिलों पर राज करते थे।

चांदनी रात हो हल्की सी हवा हो और साथ हो पुराने बॉलीवुड गानों का जादू तो फिर क्या बात है दोस्तों। स्वागत है आप सभी के म्यूजिक लवर्स का इस खूबसूरत से शो में और अगले कुछ एक घंटे के इस सफ़र में हम आपका हम सफ़र तो बन ही गए हैं, तब तक आप बस हमारा साथ दीजिए और एंजॉय कीजिए इन खूबसूरत नगमों को।

हर गीत एक अफसाना है, हर सुर एक नया नजराना है, जो दिल में उतर जाए वही तो असली तराना है मेरी जान। बिल्कुल जी, शुरू तो हो चुकी है ये खूबसूरत सा शो, और जहां हर गाना आपको ले जाएगा यादों के खूबसूरत सफर पर। तो बस हमारे साथ ट्रैवल करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स गेट बैक टू सम लवली मेमोरीज।

पुरानी यादों की खुशबू आज फिर हवाओं में घुलने वाली है, क्योंकि ये सुनहरे पल में हम ऐसे गिने चुने नगमे लेकर आए हैं जो सीधे आपके दिल पर राज करे। बिल्कुल जी, बॉलीवुड के वो अनमोल गीत जो वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो गया है। तो चलिए आराम से बैठ जाइए और अगले नगमे को आप दिल से एंजॉय कीजिए।

सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। ना मोबाइल था, ना सोशल मीडिया का जमाना था दोस्त, फिर भी मोहब्बत के पैगाम दिल तक पहुंच जाते थे। उन्हीं हसीन लम्हों को फिर से महसूस करने के लिए आपके लिए सुनहरे पल में हम कुछ बहुत ही प्यारे गिने चुने नगमे लेकर आए हैं। तो ये अगला नगमा खास कर आपके लिए, और आप उस इंसान को याद कर लीजिए जिनको आपने जिंदगी में सबसे पहला खत लिखा था, वो भी प्रेम पत्र।

फूलों की महक हो या बारिश की बूंदे, पुराने गीत हर मौसम को और भी हसीन बना देते हैं। हम हैं गिरिशा जो बड़े शिद्दत से आपका साथ दे रहे हैं सुनहरे पल में ऑन रेडियो मॉरिशस, जहां हर गाना एक खूबसूरत तोहफा लगता है।

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गणेशा टू से गुडबाय टू यू. उम्मीद करते हैं कि आपने हर एक गाने को दिल से एंजॉय किया. मिलेंगे फिर से एक और खूबसूरत से शो में सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस रात के 11 बजे से लेकर 12 बजे तक. आप हमें इजाजत दीजिए, आराम थोड़ा सा कर लीजिए. शुभ रात्रि, शब्बा खैर.

Hey, hey.

0: सी रेडियो हर पल आपके साथ।
1: बारिश की चंद बूंदे पड़ी तो मची इस तरह धूम, सभी जवां दिल सभी हसी दिल।